हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 अगस्त सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा। स्वागत आप सभी श्रोताओं का।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी

संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 6:05 हुए हैं, सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। सबसे पहले समूह स्वर में मातृवंदना, रचना है डॉक्टर ललित मोहन की।

समूह स्वर में मातृवंदना आप सुन रहे थे रचना थी डॉक्टर ललित मोहन की। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुधाकर की रचना अनुप चरोजा और साथियों के स्वर में।

गणेश वंदना के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं ये हनुमान भजन। विजय शंकर और साथियों के स्वर हैं, रचना डॉक्टर प्रसून जोशी की।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से। आइए अब आपको सुनवाते हैं रविंद्र पठानिया की ये रचना जगजीत सिंह के स्वर में।

जगजीत सिंह और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे रविंद्र पठानिया की ये रचना। इसके साथ ही कार्यक्रम अर्चना संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है। 6:25 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। अब से बस कुछ ही पलों में यानी 6:30 से आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। भूल पवित्र गीत लेकर आएंगे 6:40 से। सुबह हमारा दैनिक वैचारिक क्रम आप सुनते हैं 7:00 और कृषि चर्चा पर आधारित कार्यक्रम कृषि संकेत होता है 7:05 से। आपकी फरमाइश के कुछ फिल्मी गीत लेकर आएंगे। कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत, समय सुबह 7:20। संगीत सरिता कार्यक्रम में गैर फिल्मी संगीत आपको सुनवाएंगे 7:45 पर और 8:50 पर। 8:15 से लोक संगीत कार्यक्रम होगा और 8:30 पर आप सुनेंगे पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। आज का हमारा विषय होगा डॉक्यूमेंट्री निर्माण प्रक्रिया और इस विषय पर बातचीत करेंगे पंकज तिवारी जिसे जय शेखर। तो सुनना ना भूलें पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर सुबह 8:30 से। 9:00 से हम विविध भारती सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे और 10:05 पर स्टूडियो लौटेंगे और सुनवाएंगे आपको शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। फिल्मी गीत तो होंगे कार्यक्रम आपकी पसंद में और आपकी फरमाइशें इसमें शामिल होंगी 10:30 पर। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा 11:00 से। दोपहर 2:00 फिल्म संगीत और शाम 5:30 से संगीत सरिता हमारे स्टूडियो से रिले होगी और फिल्म संगीत दोपहर 2:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से हम रिले करेंगे। शाम 6:00 से विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे और 6:30 से सदाबहार गीत हमारे स्टूडियो से आप सुन सकेंगे। लोकरंग कार्यक्रम होगा 6:45 पर और 7:20 से। किसानवाणी कार्यक्रम हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले करेंगे 7:30 से। संसद समीक्षा रिले होगी 8:00 दिल्ली केंद्र से और 8:15 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। संगीत सरिता कार्यक्रम रात्रि 8:30 से और मन चाहे गीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 9:00। 9:30 से हम रिले करेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से और संसद में

0: प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण होगा रात्रि 10 बजे। ये कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297। आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।
0: और श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में अब समाचारों का विवरण। संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे सुबह 6:55 पर दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार सुबह और शाम 7:10 पर और दोपहर 2:10 से हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले करते हैं। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, रात्रि 8:45 से समाचार संध्या का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा। कार्यक्रम विवरण आप सुन रहे थे आकाशवाणी सागर से। 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ, गायक स्वर महेंद्र कपूर और साथियों का।

महाबली रावण ने अपने भुजबल से सारे विश्व को अपने अधीन कर लिया था। बढ़ते अनाचार और धर्म के प्रति अनास्था देखकर पृथ्वी भयभीत और व्याकुल हो गई। अंत में और कोई उपाय न देख पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और वहां पहुंची जहां रावण से त्रस्त और उत्पीड़ित देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रो रो कर उन्हें अपना हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने धरती को धीरज धारण करके श्रीहरि के चरणों का स्मरण करने का उपदेश दिया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ, गायक स्वर्थी महेंद्र कपूर और साथियों की। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 6:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में बात होगी आभास कुमार गांगुली जी के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, आभास कुमार गांगुली जी यानी भारतीय सिनेमा के महान पार्श्वगायक, कलाकार, निर्देशक, लेखक, संगीत निर्देशक किशोर कुमार जी के बारे में, जिनका आज यानी 4 अगस्त को जयंती दिवस है। श्रोताओं, 1929 में खंडवा मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। कार्यक्रम में सबसे पहले उन्हीं के द्वारा निर्देशित फिल्म दूर गगन की छाँव में से ये गीत आपको सुनवाते हैं। आपको बता दें, ये गीत लिखा भी था उन्होंने, संगीतबद्ध भी किया था, फिल्म को निर्देशित भी किया था, और आवाज़ और अभिनय तो था ही किशोर कुमार जी का। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म दूर गगन की छाँव में से।

श्रद्धा किशोर कुमार जी ने 4 दशक लंबे करियर में लगभग 25,000 से ज़्यादा गीत गाए और 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उनकी पहली फिल्म बतौर अभिनेता थी शिकारी, जो 1946 में रिलीज हुई, और गायन में पदार्पण किया फिल्म जिद्दी से, जो 1948 में बनी और जिसमें उन्हें पहली बार पार्श्व गायन का मौका मिला। फिलहाल सुनेंगे उनकी ऐसी फिल्म जिसमें मधुबाला जी उनकी हीरोइन थी और तीनों भाई एक साथ एक ही फिल्म में नजर आए, चलती का नाम गाड़ी। हाँ जी श्रोताओं, इस फिल्म से ये गीत आपको सुना रहे हैं। किशोर कुमार, आशा भोंसले ने साथ दिया है इसमें, और मसरूर सुल्तानपुरी की शब्द रचना थी और इस गीत को संगीत से संवारा था SD वर्मन ने।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: श्रोताओं, भूले बिस्तरे गीत कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार जी के बारे में, जिनका आज जन्मदिवस है। हिंदी के साथ साथ उन्होंने बंगाली, उड़िया, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम आदि भाषाओं में भी गीत गाए। उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार भी प्रदान किया गया और हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए किशोर कुमार पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने लगा। श्रोता, उनके जन्मदिवस पर शत शत नमन। और आइए सुनते हैं फिल्म पड़ोसन से ये गीत, उन्हीं के स्वर में। शब्दकार थे राजेंद्र कृष्ण और इस गीत को स्वरबद्ध किया था आर डी वर्मन ने।
5: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फूल विश्व गीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है। 6:55 होने को है। अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7 बजे हैं, सुनिए हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। श्रोताओ, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की इन पंक्तियों के साथ स्वीकारें चंचल का नमस्कार। श्रोताओ, ये पंक्तियां हमें बचपन से ही याद करवाई जाती हैं और हम सबको बड़े अच्छे से याद भी हो जाती हैं, क्योंकि वो छोटा सा सबक था और याद करने का संघर्ष भी छोटा। पर जब जिंदगी में बड़े बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ता है तब हम निराश हो जाते हैं और फिर से कोई आसपास का सकारात्मक व्यक्ति हमें याद करवाता है इन पंक्तियों का मतलब। ये हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियों का ज्ञान हमें करवाता है, तब हम पुनः संघर्ष के मैदान में डटकर कोशिशें जारी रखते हैं। संघर्ष के बारे में एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं कि संघर्ष क्यों जरूरी है। श्रोताओ, एक शख्स बगीचे में बैठा था, अचानक पेड़ के नीचे एक कोकून आ गिरा। नन्ही तितली उससे बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वह व्यक्ति घंटों बैठा उसे देखता रहा, उससे रहा नहीं गया और उसने तितली की मदद करने का फैसला कर लिया। पास रखी छोटी कैंची से उसने कोकून के एक हिस्से को काट दिया ताकि तितली आसानी से बाहर आ सके। श्रोताओ, तितली तो बाहर आ गई लेकिन अविकसित, बिना एक पंख के। अब वह कभी उड़ नहीं सकती थी। दरअसल उस व्यक्ति ने यह नहीं सोचा कि संघर्ष भी जीवन की एक प्रक्रिया है। उस इंसान ने तितली के संघर्ष को ही समाप्त कर दिया और ऐसा करके उसने तितली का जीवन हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। श्रोताओ, कहानी को साझा करने का मतलब यही है कि संघर्ष हमारी ताकत को बढ़ाता है। हमारे बच्चे भी तितली की तरह होते हैं। उनके जीवन में आए संघर्षों को आप सिर्फ देखें लेकिन उन संघर्षों को समाप्त ना करें, वरना यह आपके बच्चों के संघर्ष की क्षमता को ही खत्म कर देगा। क्योंकि संघर्ष भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वही हमें संपूर्णता देता है। इसीलिए याद रखिए श्रोताओं, परिस्थितियां हमारी परीक्षा नहीं लेती, वे हमें हमारी शक्ति का परिचय कराती हैं। यदि हम हर चुनौती को शिकायत के बजाय सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करें तो हर संघर्ष हमारे व्यक्तित्व को ऊंचा उठा देता है। इसीलिए श्रोताओ, संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी मत भागिए। यह हमें कमजोर से मजबूत बनाता है, भय से निर्भय की ओर ले जाता है। अंत में श्रोताओ, इन्हीं शुभ इच्छाओं के साथ कि आप हमेशा

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है सुबह 11 से 11:30 बजे तक।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह। ये आकाशवाणी सागर है। 7:05 हुए हैं। सुनते हैं कृषि संकेत कार्यक्रम में कार्बनिक खाद एवं संतुलित उर्वरकों का करें प्रयोग, इस विषय पर जानकारी देंगे हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर एमपी दुबे।
3: जब भी हम खेती की बात करते हैं किसी भी फसल की, ये कहा जाता है और ये साहित्य में भी उपलब्ध है कि हमको कम से कम 3 वर्ष में एक बार प्रत्येक खेत में कार्बनिक खाद देना आवश्यक होता है। ये कार्बनिक खाद है ना केवल सूक्ष्म मात्रा में किंतु सभी आवश्यक पोषक तत्वों को उपलब्ध कराती हैं फसलों के लिए। वहीं दूसरी ओर अगर हमने कुछ रसायनों का प्रयोग किया है, जैसे नींदानाशक, कीटनाशक या फफूंदनाशक, इन दवाइयों का इस्तेमाल रोग कीट या खरपतवारों को दूर करने के लिए अगर इस्तेमाल किया है, तो इनका जो घातक प्रभाव होता है काफ़ी हद तक देसी खादें या गोबर की खाद डालने से इनका जो घातक प्रभाव है ज़मीन में वो काफ़ी कम हो जाता है। और इसकी जो आँच है घातक प्रभाव की, इसका जो विषैलापन है वो कम होता है, फसलों में इसके अवशेष कम आते हैं और वातावरण सभी लोग काफ़ी हद तक इनके दुष्प्रभाव से बचे रहते हैं। तो ये बहुत अहम पहलू है कि आपकी जितनी भी खेती है आवश्यक रूप से आपको हर तीसरे वर्ष कम से कम प्रत्येक खेत में खाद डालना है। अगर आप खाद्यान्न फसलें बोते हैं जैसे धान हैं, गेहूं हैं, तो हम अनुशंसा करते हैं कि 1 हेक्टेयर में 25 से 30 टन अर्थात 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमारी अनुशंसा होती है। अगर आप दलहनी और तेलहनी फसलों की खेती करते हैं तो आप 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर के मान से इन खादों का प्रयोग जरूर करें ताकि आपका उत्पादन बढ़े और सभी पोषक तत्व जो जीवन काल के लिए फसलों के आवश्यक होते हैं वो मिलते रहें। जहाँ तक अच्छा उत्पादन लेने का सवाल है, तो इतनी बड़ी मात्रा में हम इन कार्बनिक खादों की आपूर्ति प्रत्येक खेत में नहीं करा पाते हैं, क्योंकि इतनी मात्रा में जब 1 हेक्टेयर में हमको 30 टन की आवश्यकता होती है, कल्पना कीजिए कि आप पूरी धरती में इस मान से देसी खाद नहीं दे पाएंगे। उसके अन्य विकल्प हैं आपका नाडेप निर्मित खाद, इसमें पोषक तत्वों की सांद्रता बढ़ जाती है, और अच्छा खाद है केंचुआ खाद, जिसमें और ज़्यादा मात्रा होती है, सांद्रता ज़्यादा होती है, कम खाद में ज़्यादा आपको पोषक तत्व मिल जाते हैं, अभी सभी आवश्यक तत्व होते हैं। लेकिन जो अधिकतम उत्पादन लेने के लिए हम बहुत अच्छी अच्छी नई नई प्रजातियों का इस्तेमाल करते हैं, जिनका उत्पादन उदाहरण के लिए गेहूं में 50 से 55 या 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक मिलता है। अच्छे किसान 5.5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन ले रहे हैं हमारे ज़िले में भी, लेकिन इतना उत्पादन लेने के लिए उनको भरपूर पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे गेहूं की बात करें, सिंचित गेहूं की, तो 100 से 120 किलो नत्रजन, मिट्टी कैसी है, मिट्टी का टेस्ट कैसा आया है, उपलब्ध नत्रजन कितनी है, उस पर निर्भर करेगा कि 1 हेक्टेयर में 100 किलो चाहिए कि 125 किलो चाहिए, ठीक है ना। दूसरा है स्फोर, इसको हम कम से कम 60 किलो प्रति हेक्टेयर कि इसकी आवश्यकता होती है सिंचित गेहूं के लिए, और पोटाश 40 किलो प्रति हेक्टेयर रिक्वायर्ड होता है, आवश्यक होता है। जस्ता कम से कम 5 किलो 6 फसलों के लिए, और गंधक 20 किलो प्रति हेक्टेयर हर वर्ष हर फसल के लिए, ये हमारी अनुशंसा होती है तत्वों की। तो देसी खादों से ये इन तत्वों की इतनी बड़ी मात्रा में आपूर्ति कराना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए उर्वरक के रूप में आपको ये साधन दिए गए हैं, तो इनसे हम लोग आपूर्ति कम मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति कराते हैं। लेकिन इनके दुष्प्रभाव ना हो उसके लिए आवश्यक है, जैसा मैंने पूर्व में कहा, कि प्रत्येक 3 वर्ष में 2 वर्ष में आपको देसी

0: खादें खेतों में डालना है। जैसे आपका 12-32-16 है, हमारी गेहूं की फसल में पोटास सबसे कम लगता है 40 किलो सिंचित गेहूं में, तो सबसे पहले हम 16 को आधार मानते हुए 40 किलो आपका पोटास कितने एनपीके में लगेगा उसकी गणना करते हैं, और उस निर्धारित मात्रा में जो 40 किलो की आपूर्ति वो खाद करवाता है उस मात्रा में कितना एन और पी चला गया है उसको 100 और 60 में से हम घटा देते हैं, और बाकी बची हुई जो मात्राएं हैं नत्रजन की और स्फुर की वो हम यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट से उसकी आपूर्ति कराते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है गणना में कि जो कम जिसकी आवश्यकता होती है उस तत्व को आधार मानते हुए उस कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की हम गणना करते हैं, तब हमारा कैलकुलेशन सही आता है।
1: कार्बनिक खाद एवं संतुलित उर्वरकों का करें उपयोग, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर एमपी दुबे। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी सागर से। 7:10 होने को है अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कुछ ही पलों में।

0: महात्मा गांधी एक नाम नहीं, एक विचारधारा है जिसके बिना हमारा जीवन, हमारी नैतिकता और हमारे मूल्य शून्य है।
1: सबको सन्मति दे भगवान।
0: आइए चलें उस राह जो राह दिखाई बापू ने।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, सांदीपनी विद्यालयों में बनेंगे खेल परिसर। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलेगा। मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्टर और बस एसोसिएशन की समस्याओं का किया जाएगा निराकरण, मंत्रिमंडल समूह ने दिया आश्वासन। और प्रदेश में भोपाल सहित कई जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। भोपाल स्थित नाथूखेड़ा बरखेड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अत्याधुनिक खेल सुविधाओं से सुसज्जित है। यहां भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिभाओं का प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में मलखम्ब और जिम्नास्टिक अकादमी जल्द शुरू करने और प्रदेश के सभी सांदीपनी विद्यालयों की उपलब्ध भूमि पर खेल परिसर विकसित करने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
1: बाकी लग रहा कि हाँ, हमारा भोपाल अपने खेल के उस गौरवशाली गर्वित करने वाले इतिहास में कदम रख रहा जिसकी उसको वर्षों से दरकार थी। और ये वर्ष और हमारे लिए उल्लेखनीय रहेगा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला हॉकी एशिया कप की स्पर्धा हमारे राज्य में होने वाली है। ऐसे में जब हमारे यहाँ के खिलाड़ी राज्य से निकल कर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, आज गर्व है इस बात का कि हर क्षेत्र में हमारे अपने मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अपनी अपनी पहचान बना रहे हैं और खेल जगत में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
0: मध्य प्रदेश में जन सहभागिता से हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलाया जाएगा। इस अभियान में जन सामान्य को विगत वर्षों की तरह उत्साह और देशभक्ति के साथ स्वाधीनता दिवस मनाने और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के लिए सहभागिता सुनिश्चित करने के सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान देशभक्ति से उत्प्रोत शासकीय कार्यक्रम, चर्चाएं जैसे आयोजन किए जाएंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के जश्न को हर घर तिरंगा अभियान 2026 के साथ जोड़ा गया है। अभियान में केंद्रित तिरंगा मेला, तिरंगा कॉन्सर्ट, तिरंगा बाइक रैली, मानव श्रृंखला, तिरंगा एंथम जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह विजय हुए हैं। उन्होंने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6000 से अधिक वोटों से पराजित किया है। पूर्व कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती की अयोग्य घोषित होने के बाद ये सीट खाली हुई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मंजालपुर विधानसभा सीट जीत ली है। भाजपा उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। वरिष्ठ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर विजयी हुए हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश प्रक्रिया में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान स्नातक, स्नातकोत्तर और शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में अब तक 5,29,484 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। इनमें 3,34,454 छात्राएं और 1,95,030 छात्र हैं। इस प्रकार कुल प्रवेशित विद्यार्थियों में लगभग 2/3 भागीदारी छात्राओं की रही है। प्रवेश आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार प्रदेश का प्रवेश आधारित जेंडर पैरिटी इंडेक्स 1.71 दर्ज किया गया है, यानी प्रत्येक 100 छात्रों पर 171 छात्राओं ने प्रवेश प्राप्त किया है। यह आंकड़ा उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, सामाजिक विश्वास, शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की प्रगतिशील सोच का सशक्त प्रमाण है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्नातक, स्नातकोत्तर और शिक्षक शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर छात्राओं की उल्लेखनीय भागीदारी ये सिद्ध करती है कि प्रदेश की बेटियां उच्च शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता के नए प्रतिमान स्थापित कर रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र पुलिस मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे कल नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेना दिवस के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यालय असैन्य सैन्य तालमेल को उत्कृष्ट करने में एक महत्वपूर्ण सेतु की तरह कार्य करता है। श्री सिंह ने कहा,
2: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल समूह ने मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्टर और बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों की समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया है। कल भोपाल में की गई बैठक में बताया गया कि परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए कमेटी बनाई गई है। इससे राज्य शासन की तरफ से 3 अधिकारी, 4 ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारी और मुख्यमंत्री से अधिकृत एक प्रतिनिधि होगा। कमेटी जो निर्णय करेगी उस पर सरकार विचार विमर्श करने के बाद आगे बढ़ेगी। बैठक में बस को लेकर भी चर्चा हुई। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है, जल्द ही उस पर निर्णय हो जाएगा। बैठक में बताया गया कि रजिस्ट्रेशन ओडिशा और केरल के मॉडल पर होगा। विधिवत बॉडी मेकर से बॉडी बनवाने के बाद भी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा। डेडलाइन से पहले क्रय किए गए चेचिस पर भी सहमति बनी है। अंतर्राज्यीय बस परमिट के जो मामले लंबित थे उन पर नियमों के प्रावधानों के तहत उस पर भी निर्णय लिया गया। प्रदेश में 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाएगा। इस दिन भोपाल में नागरिकों और युवाओं के सहयोग से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ये तिरंगा यात्रा समाज में अपनी आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रेरणा सहित देशभक्ति की भावना के प्रसार का माध्यम बनेगी। सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक स्वर्गीय किशोर कुमार का जन्मदिन आज खंडवा में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। सुबह उनकी समाधि पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं शाम 7:30 बजे पुरानी कृषि उपज मंडी में किशोर नाइट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ख्याति प्राप्त गायक पी गणेश और प्रीति जोशी किशोर कुमार की लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति देंगे। मौसम केंद्र भोपाल ने आज भोपाल और नर्मदापुरम सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। वहीं ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक औसत 15.9 इंच बारिश दर्ज हुई है। पूर्वी हिस्सा जैसे जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग में 20% कम बारिश हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी में श्रावण मास के अवसर पर नगर निगम प्रशासन द्वारा नगर के मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। झाबुआ जिले में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम और मिजल्स की रोकथाम को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विशेषज्ञों ने 3 दिवसीय निरीक्षण किया। आगर मालवा में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई। नर्मदापुरम में ई विकास पोर्टल को और अधिक सरल और प्रभावी बनाने के लिए कल कलेक्टर कार्यालय में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। अशोकनगर के जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल जुलाई 2026 के दौरान आयोजित युवा संगम कार्यक्रम के प्रदर्शन में जिले को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। झाबुआ जिले में आगामी 7 अगस्त से 8 जनवरी 2027 तक संचालित होने वाले मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के संचालन के लिए जिला प्रशासन ने जिला और विकासखंड स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। इंदौर में आयोजित 1 दिवसीय रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा 531 अभ्यर्थियों का प्रारंभिक रूप से चयन किया गया। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में कल स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की पूर्व तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कल समय सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:20 हुए हैं, ये सुनते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता स्वीकार करें चंचल का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में ये पहला अनुरोध आप सभी श्रोताओं का, कवर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन MP से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, जबलपुर MP से अशोक सिंह, सुनीता गुड़िया और वेदा सिंह, तामसा रोड हद गांव महाराष्ट्र से ओम गायकवाड़, आम्रपाली आविष्कार गायकवाड़, अनामिका प्रणीता गायकवाड़, आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं मन चली फिल्म से ये गीत। इस गीत को आवाज़ें दी हैं किशोर कुमार और लीना चंद्रवरकर ने।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी?
2: एक बहाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा?

0: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
1: तो मिलेगी ना।
0: पर कैसे?
2: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: मन जय गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से। अगला गीत आपको सुनवाती हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में। आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित बायाड, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख और कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी हर्षिता देशमुख। सांगली जिले से जत शहर से ये हमें संदेश लिख भेजा व्हाट्सएप पर अल्ताफ हुजरे, शैफुल्ला शबाहत, कीरत हुजरे और रेहान शेख ने। आप सभी की फरमाइश पर अनुराग फिल्म से ये गीत।

0: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
1: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
2: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
0: बात बन जाए,
2: 287 मेरी चाय।
3: मन चाहे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से। अगला गीत सुनते हैं इन श्रोताओं के अनुरोध पर, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया साईंराज और विशाल सपकाल। आप सभी ने सुनना चाहा हरियाली और रास्ता फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में

अगली फरमाइश इन श्रोताओं की, मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह और ऋषभ सिंह, नया पारा भिरई जिला से बालोद छत्तीसगढ़ से ये संदेश हमें मिला है, बसंत कुमार ठाकुर, सरोज भाई ठाकुर और ईश्वर राज पप्पू ठाकुर का। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में आग गले लग जा फिल्म से ये गीत।

मंच या गीत कार्यक्रम की अगली फरमाइश मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश के इन श्रोताओं की, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, इसरार और नरगिस खातून जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर जवाहरनगर दुर्ग से, आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े, आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं मेरा साया फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मन चाहेगी तब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है, 7:45 हुए हैं। संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनते हैं गैर फिल्मी गजलें। सबसे पहले आपको सुनवाएंगे मुमताज राशिद का ये गलाम, पंकज उदास के स्वर में।

बढ़ेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297। आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात

आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के स्वर में जफर गोरखपुरी का ये गुलाम। इसके साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है, 8 बजने को है अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी की मांग की है।
3: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी।
2: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट, नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
4: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय सैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
3: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
4: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन क्या है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
5: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
6: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियां में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुद बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहाँ लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलिथिन सीट और अन्य मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
7: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कछार, डिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट कर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारुन मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और रितिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
8: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा, उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं, छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजरें अहमदाबाद पर। भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट। डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: ये आकाशवाणी सागर है। 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत में बुंदेली लोकगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं द्रौपदी यादव से ये सैरा।

0: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
1: तो मिलेगी ना।
0: पर कैसे?
1: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
2: लोक संगीत कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं बद्री प्रसाद खरे से ये झूला गीत।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

लोक संगीत कार्यक्रम में आज हमने आपको सुनवाए द्रौपदी यादव, बद्री प्रसाद खरे, मगनलाल प्रजापति और उनके संगी साथियों के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी सागर से। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। इस कार्यक्रम में हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर पंकज तिवारी, इनसे बातचीत करेंगे जय शिखर और हमारा आज का विषय है डॉक्यूमेंट्री निर्माण प्रक्रिया। आइए सुनते हैं पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर।

0: नमस्कार दोस्तों, हम हाजिर हैं पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर के साथ। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर। वृत्तचित्र या डॉक्यूमेंट्री फिल्म, अब इसके ऊपर हम बात करने के लिए हमने अपनी स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर हरि सिंह गौर, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के EMRC के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज तिवारी जी को। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्टूडियो में।
1: धन्यवाद, आपने बहुत ही उम्दा विषय चुना है और इसमें खासतौर पर मैं बताऊं कि ये एक ऐसा कठिन समय है जब हर आदमी के हाथ में एक कैमरा है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और हर आदमी कैमरे की निगरानी में है।
0: हाँ।
1: तो ऐसे समय में कहते हैं कि ये दृश्य माध्यमों की अति का समय है।
0: हाँ।
1: इस समय दृश्य माध्यमों की अति, आप हमेशा कुछ ना कुछ विजुअल कंटेंट यानी कि दृश्य सामग्री देखते हुए अपना जीवन यापन इस समय कर रहे हैं।
0: तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि डॉक्यूमेंट्री है क्या, जिसे हिंदी में वृत्तचित्र भी कहते हैं।
1: बिल्कुल सही आपने कहा कि दरअसल डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के की बात हम जब करते हैं उसको हिंदी में वृत्तचित्र कहते हैं। और आपने बहुत पहले देखा हो तो फिल्म्स डिवीजन ऑफ इंडिया की भेंट ऐसे करके जब हम सिनेमा देखने जाते थे तो आता था, और न्यूज़ रील का एक जमाना था। ऐसे कहीं ना कहीं हमारी जो जनमानस है वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म से परिचित होता रहा है। लेकिन दरअसल उसको समग्र रूप से समझने के लिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा उसके इतिहास पर भी नज़र डालें। हाँ। और ये देखें कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को हम किसको कहेंगे।
0: हाँ।
1: तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म का मतलब होता है कि जो यथार्थ है, जो घटना है, जो स्थान है, जो व्यक्ति है, उसके ऊपर जब छायांकन किया जाता है और उसे एक खास शैली में प्रस्तुत किया जाता है, तब उसे हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहते हैं। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप कहेंगे कि न्यूज भी ऐसे ही हो सकती है, फीचर भी ऐसे हो सकता है, तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म में खास क्या है? खास है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर की अपनी शैली। जो आदमी डॉक्यूमेंट्री बना रहा है उसकी शैली, उसका अपना इंटरप्रिटेशन,
0: बहुत
1: वही स्थान है, वही लोग हैं, वही घटना है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं लोग, उनके मंतव्य, उनका दृष्टिकोण अलग हो सकता है। और यही जो उसका विशेषता है डॉक्यूमेंट्री फिल्म की, ये उसे खूबसूरत बनाती है, चैलेंजिंग बनाती है, उसे एक लाइव जीवंत माध्यम की तरह भी देखने के लिए मजबूर करती है।
0: अच्छा, कई बार देखा कि इसमें नाटकीयता भी डाल दी जाती है, कोई कैरेक्टर जो पहले रहे हैं अब वो हमारे सामने नहीं, तो सरलता से समझाने के लिए कुछ नाटकीय दृश्य भी डाल दिए जाते हैं, कुछ कलाकारों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, ऐसा भी होता है क्या?
1: ये देखिए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म की जब हम चर्चा करते हैं तो उसको देखें तो जैसे मैंने कहा कि यथार्थ जीवन का चित्रण, लेकिन यथार्थ जीवन के चित्रण में कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे व्यक्ति के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे होते हैं कि जो अब वो दिवंगत हो चुके हैं।
0: हाँ।
1: तो उसके लिए हम कुछ कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं और अपनी बात कहने के लिए कुछ ड्रामा का, कुछ डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे तरीके अख्तियार किए गए हैं जिनसे हम अपनी कहानी को कहने में सक्षम होते हैं, उस व्यक्ति के बारे में बताने के लिए वो जो चीजें हैं उनका उपयोग करते हैं
0: और दर्शकों तक वो चीज सरलता से पहुंच जाती है,
1: तो उसको हम बोलते हैं डॉक्यो ड्रामा।
0: अच्छा,
1: डॉक्यो ड्रामा।
0: हाँ हाँ।
1: और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मशहूर फिल्म मेकर जिनको सभी जानते हैं, जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हैं, और उनको श्याम बेनेगल।
0: जी बिल्कुल,
1: श्याम बेनेगल ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर रहे हैं और उन्होंने भी फिल्मों जो मुख्य धारा के सिनेमा के अलावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स पर भी लंबा काम किया है, कॉरपोरेट फिल्म्स पर भी काम किया
0: जी।
1: है तो आप सभी जानते हैं गुजरात में एक जो सहकारी मूवमेंट हुआ, तो एक जो सफेद क्रांति गुजरात में आई सभी परिचित हैं और एक बड़ा ब्रांड उससे निकल कर आया।
0: हाँ।
1: और उस पर एक फिल्म बनी थी, उसका नाम था मंथन।
0: हाँ बिल्कुल,
1: मंथन को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। हाँ। और कई तरह के उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया, बहुत ही उसकी प्रशंसा हुई फिल्म जगत में। दरअसल वह जो फिल्म थी वह डॉक्यूड्रामा थी और उसके मूल में कहीं ना कहीं एक डॉक्यूमेंट्री थी, और पहले श्याम बेनेगल साहब को डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए ही वहां बुलाया गया था।
0: अच्छा,
1: लेकिन उन्होंने उसे एक तरह की कहानी का रूप दिया और उसको एक ड्रामेटिक अंदाज में प्रस्तुत किया
0: और काफी रुचिकर हो गई वो
1: और वो फिल्म बनी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे।
0: अच्छा, इसके इतिहास के बारे में जाएं तो कहां से आपको देखते हैं इसको?
1: एक बड़ी शानदार बात है जो कि जो फिल्म जो सिनेमा हमारी दुनिया में जब अस्तित्व में आया तो वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म के रूप में ही आया।
0: अच्छा अच्छा।
1: सबसे पहले जो फिल्में बनी वो 30 सेकंड की 15 सेकंड की फिल्में थी, 45 सेकंड 1 मिनट की फिल्में थी, छोटी छोटी फिल्में थी क्योंकि उस समय इस तरह की तकनीक विकसित नहीं थी। और जो लूमियर ब्रदर्स की फिल्में वो कहलाती हैं, आप गूगल करेंगे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो उन फिल्मों में जो यथार्थ घटनाएं हैं उनका चित्रण होता था। और एक बहुत ही मशहूर उस जमाने की फिल्म है द ट्रेन, जो मुश्किल से 1 मिनट की फिल्म है। और उसमें सिर्फ इतना है कि वो ट्रेन स्टेशन पर आ रही है और वो इतना खूबसूरत फिल्माया गया है कि जो एंगल उस समय लगाया गया कैमरे का आज भी बहुत सारे दुनिया के फिल्म मेकर्स उसी एंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उस समय, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ 1892 की, 1892 में 1890 में जो फिल्में बनाई गई वो सब डॉक्यूमेंट्री फिल्में ही थी क्योंकि उसमें कैमरा रख दिया जाता था और सामने जो घटना हो रही है उसका चित्रण होता था। और इस तरह तो वो उनका जो नेचर है या उसका जो स्वभाव है उस फिल्मांकन का वो डॉक्यूमेंट्री ही है।
0: अच्छा अच्छा, पंकज जी हमें ये बताएं कि जब एक डॉक्यूमेंट्री का आपके दिमाग में विचार आता है या कोई ऐसी आवश्यकता महसूस होती है तो फिर उसके बाद किन किन तैयारियों के दौर से गुजरती है ये डॉक्यूमेंट्री?
1: देखिए, जब भी कोई भी आप फिल्म से रिलेटेड बात करेंगे तो दो चीजें सामने आती हैं, एक होता है जिसको हम बोलते हैं फिक्शन और एक होता है नॉन फिक्शन।
0: बिल्कुल।
1: तो जब हम डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं तो वो नॉन फिक्शन है, मतलब एक कथात्मक और एक गैर कथात्मक।
0: बिल्कुल।
1: मतलब एक वो जिसमें कहानी है उसकी रीढ़ जो है वो कहानी है और एक वो जिसमें कहानी नहीं है।
0: जी।
1: तो जो कहानी नहीं है वो डॉक्यूमेंट्री है।
0: अच्छा,
1: मतलब उसमें फिक्शन नहीं है, कहानी तो है लेकिन वो सत्य कहानी है,
0: सत्य पे आधारित है।
1: कहानी तो है
0: जी जी बिल्कुल,
1: लेकिन वो सत्य है और वो कोई फिक्शन नहीं, कोई कल्पना नहीं है।
0: हाँ हाँ।
1: तो इसीलिए उसको कहते हैं नॉन फिक्शन। तो उसमें सबसे पहले आइडिया एक विचार से यात्रा शुरू होती है
0: जी।
1: विचार से फिर धीरे धीरे उस पर एक अवधारणा बनती है कि ये एक वस्तु है, एक ये
0: प्लॉट
1: है, प्लॉट है, ये एक स्थान है, एक चरित्र है, एक घटना है जिस पर ये काम हो सकता है। और फिल्म मेकर की फिर अप्रोच है, उसकी खुद का दृष्टिकोण है कि वो कैसे आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले यही होता है कि उस पर सबसे बुनियादी जो बात मैं कहूँ बेसिक, सबसे पहले रिसर्च
0: बिल्कुल
1: होती है
0: जी।
1: सभी आजकल कहीं भी देखेंगे आप बिना शोध के नहीं काम होता है। तो उस विचार को आगे बढ़ाकर एक रिसर्च, एक शोध तैयार होता है, उस पर एक आलेख होता है, स्क्रिप्ट फिर आगे चल के बनती है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो बड़े फिल्म मेकर्स हैं, जैसे भारत में बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, जो जैसे माइक पांडे का नाम आपने सुना हो, जो उनकी फिल्म द व्हेल
0: जी
1: को

0: पुरस्कृत किया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, और भी बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं, वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती।
1: अच्छा,
0: वो कहते हैं कि चीजें ऑटोमेटिक
1: बनती जाती हैं
0: और स्क्रिप्ट जो है आगे के स्तरों पर इवॉल्व होती है, मतलब वहां
1: स्वतः
0: उसमें से निकल कर आती है।
1: बहुत ही बढ़िया।
0: और इसीलिए जो बड़े फिल्म मेकर्स हैं,
1: हाँ,
0: वो अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म की रूपरेखा तो तैयार करते हैं,
1: हाँ, लेकिन स्क्रिप्ट,
0: लेकिन स्क्रिप्ट तैयार नहीं करते।
1: क्या बात, बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने,
0: क्योंकि वो एक कहना चाहिए कि वह बड़ी ही रचनात्मक प्रक्रिया है डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, इसीलिए वो चैलेंजिंग है, इसीलिए वो आज की स्थिति में ये कहा जाए तो रेयर आर्ट फॉर्म है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वो आज कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो रही है।
1: हाँ, अच्छा पंकज जी, आपको रोक के अब से जानना चाहेंगे कि देखिए, आपका नाम भी वृत्तचित्र या डॉक्यूमेंट्री की बात होती है तो बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, तो आप अपनी यात्रा के बारे में बताएं कि आपने अभी तक कितनी डॉक्यूमेंट्री बनाई और ऐसी कौन सी उल्लेखनीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं जिनमें आपको पुरस्कार भी मिला, और कुछ ऐसी भी होंगी जो आपके दिल के बहुत ही करीब होंगी, तो हमें आप अपने बारे में बताइए थोड़ी सी।
0: देखिए, हम लोगों का काम ही है, हम लोग पहले जो कार्य करते थे उसमें शैक्षणिक फिल्में बनाते थे, और शैक्षणिक फिल्में कहीं ना कहीं वृत्तचित्र या डॉक्यूमेंट्री
1: इनका प्रसारण
0: जो है दूरदर्शन पर होता था।
1: अच्छा, अच्छा।
0: और भी भारत सरकार के जो कई चैनल्स हैं उन पर अभी भी होता है, अभी भी ब्यास चैनल है, हायर एजुकेशन चैनल है, उस पर प्रसारण होता है। भारत सरकार के स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल्स हैं,
1: अच्छा,
0: उन पर इसका प्रसारण,
1: तो ये हमारे श्रोता देख सकते हैं,
0: इसमें swayamprabha.gov.in एक पोर्टल है, उस पर भी ये
1: उपलब्ध होते
0: हैं, उपलब्ध हैं, इस पर आप उनके चैनल्स को देख सकते हैं, स्टूडेंट्स देख सकते हैं, छात्र देख सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। तो उस दौरान हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई और काफी सारी, कि लगभग 100 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स मैं तैयार की है।
1: अच्छा, 100 से ज्यादा,
0: और लगभग इतने से ज्यादा स्क्रिप्ट्स भी मैंने लिखी होंगी,
1: और
0: डॉक्यूमेंट्रीज के लिए। और जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं वो बहुत सारे विषयों पर, उसका जो भूगोल है विषयों का वो बहुत बड़ा है, उसमें तमाम तरह के चीज़ों पर, विज्ञान पर है, वनस्पतियों पर है, पानी से संबंधित, आपको याद होगा कि हमारे सागर में एक समय जल संकट का एक बहुत ही खतरनाक दौर रहा है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उस पर मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई हैं और उनको पुरस्कृत भी किया गया है।
1: अच्छा, सबसे ज्यादा नजदीक जो मैंने बताया कि अभी भी आपको लगता है यार ये कितनी अच्छी बन गई डॉक्यूमेंट्री, तो ऐसी कोई है जो आपको अभी भी याद आती है?
0: दो तीन ऐसी फिल्में हैं जिन्हें मुझे लगता है कि मुझे बहुत, मतलब काफी ठीक लगा उसको। जैसे एक फिल्म जो है हमारे यहाँ पानी की समस्या रही, उस पर मैंने एक इमरत मंथन एक फिल्म बनाई थी, और जिसमें सागर नगर की पानी की समस्या और फिर उसके समाधान के लिए जो कार्य हो रहे थे उनको चित्रित भी किया गया था।
1: बहुत ही बढ़िया।
0: तो एक वो फिल्म है, और जो एक नई कविता एक लिटरेचर में हिंदी साहित्य में एक मूवमेंट हुआ था, उस पर मैंने एक फिल्म बनाई, उसको भी पुरस्कृत किया गया और उसका भी कहीं ना कहीं जिक्र होता है, और उसमें तमाम तरह के बड़े बड़े साहित्यकार उसमें शामिल थे। और राग समय सिद्धांत, इस फिल्म को बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर जो यूजीसी सीईसी के राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं उसमें मिला था।
1: अच्छा,
0: ये क्लासिकल म्यूजिक पर आधारित एक फिल्म थी जिसमें पंडित भीमसेन जोशी और जो हमारे गुंदेचा बंधु हैं इनके इंटरव्यूज हैं, और एक बड़ी लेवल पर एक फिल्म बनाई गई थी।
1: बहुत ही बढ़िया।
0: और इसमें ये था कि कौन सा राग किस समय गाना चाहिए, इसके पीछे क्या है, और ये पूरी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी वो इस पर केंद्रित थी।
1: जी,
0: तो इस तरह से काफी सारे फिल्म्स हैं।
1: अच्छा, इसका कोई कहीं पे ऐसा प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है या दिया जाता है कि कोई एक सामान्य व्यक्ति है, रोजगार की तलाश में है युवा, तो इस क्षेत्र में जाकर कुछ जीवन यापन के लिए कुछ कर सकते हैं क्या?
0: बिल्कुल, ये जो आजकल मैंने जैसे बताया कि ये एक दुर्लभ कला माध्यम है डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, जबकि यदि चाहें तो बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। वाइल्ड लाइफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाते हैं लोग, वहाँ जाते हैं, और भी समाज से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी
1: समस्याएं
0: हो सकती हैं, उन पर हो रहा है काम। समाज की एक बहुत सारी ऐसी है जो सफलता की कहानियां हैं, उन पर भी पॉजिटिव एंगल से या आप अच्छे दृष्टिकोण से भी फिल्में बना सकते हैं, और उनको जो फिल्म समारोह है उनमें वो फिल्में जाती हैं, वहाँ पुरस्कृत होती हैं, सराही जाती हैं। इस तरह से काम कर सकते हैं। और प्रशिक्षण के लिए तो बहुत सारे संस्थान हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म एज सच कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाता
1: जी।
0: लेकिन वो जब आप फिल्म मेकिंग या सिनेमा की पद्धति को समझेंगे बनाने की, तो उसमें ये कहीं ना कहीं
1: स्वतः
0: ही आ जाता
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसका सेटअप क्या होता है? जैसे आपके यहाँ EMRC की बात की जाए विश्वविद्यालय में, तो किस प्रकार का सेटअप किया जाता है डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के निर्माण के लिए?
0: डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स निर्माण के लिए तो बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। कैमरा है, ट्राइपॉड है, माइक्रोफोन है और एडिटिंग के लिए संसाधन है। लेकिन आजकल चीजें बढ़ रही हैं और इक्विपमेंट्स भी बढ़ रहे हैं
1: जी, जी।
0: तो आजकल जैसे ड्रोन का इस्तेमाल आजकल हो रहा है, और भी छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं जिनसे आजकल छायांकन करना सरल हो गया है। इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल पर बहुत अच्छी फिल्में बना रहे
1: हैं।
0: तो अब संसाधन धीरे धीरे लो कॉस्ट में भी
1: जी,
0: मतलब
1: जी।
0: कम कीमतों पर अच्छे संसाधन उपलब्ध हैं और लोग उनसे एक अच्छा, बेहतर और प्रोफेशनल व्यावसायिक स्तर का काम कर पा रहे हैं।
1: अच्छा पंकज जी, AI के आने के बाद कई व्यवसाय हैं उनको या तो सीमित हो गए हैं वो, या जो जहां पर 150 लोग काम करते थे वहां एक व्यक्ति बैठ के काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं AI आपकी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में AI का कितना उपयोग कर रहे हैं आप?
0: देखिए, जहां तक मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म की बात कहूंगा, तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म वही अच्छी मानी जाती है, या जिसको कहें कि उसको एक मान्यता प्राप्त होती है जहां पर यथार्थ का चित्रण हो। मतलब डॉक्यूमेंट्री फिल्म का मतलब है रियल,
1: बिल्कुल
0: यथार्थ। जो सही है, जो सामने दिख रहा है उसको दिखाना, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो मुझे लगता है AI की पहुंच वहां हो सकती है, कुछ ड्रामेटिक सीन
1: क्रिएट करने के लिए,
0: कुछ उसमें एक सहारा लेने के लिए तो आप उपयोग कर सकते हैं।
1: सही।
0: लेकिन लगभग 80-90% आपको जो यथार्थ में जो चीजें हैं उन्हीं का फिल्मांकन करना होगा और उसे दिखाना होगा
1: जी।
0: मुझे लगता है डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, मैं हमेशा ये कहता भी हूं कि जब AI कितना भी आ जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के लिए, क्योंकि वो फेक होगा यदि हम जो AI से बनाएंगे तो उसका 10-15% तो इस्तेमाल हो सकता है,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: लेकिन 80% आप उससे फिल्म नहीं बना सकते। आप सिनेमा बना सकते हैं, फिक्शन बना सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं बना सकते। उसके लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, शूट करना पड़ेगा, उसको लाके एडिट करना पड़ेगा और उसको ओरिजिनल वास्तविक रूप में दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना होगा।
1: भविष्य की क्या योजना है आपकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को लेकर?
0: डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को लेकर मुझे लगता है कि बुंदेलखंड में अभी बहुत संभावनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं आजकल, जैसे पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनकी ऊपर वृत्तचित्र बनाए जा सकते हैं और इसका प्रचार प्रसार किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर अब धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे बन रही है और उन पर भी संभावनाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं, और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर और फोटोग्राफर अब धीरे धीरे इस क्षेत्र की तरफ आकर्षित हो रहे हैं
1: जी। जी, पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर, इस कार्यक्रम में आज आप मिल रहे थे डॉक्टर पंकज तिवारी से, जो डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में EMRC में निदेशक पद पर पदस्थ हैं। ये मुलाकात आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। और पंकज जी, आप हमारे स्टूडियो आए और आपने डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी हुई बहुत ही रोचक जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। हमारी आज की मेहमान थी डॉक्टर पंकज तिवारी। इनसे बातचीत कर रहे थे जय शेखर और हमारी आज के पॉडकास्ट का विषय था डॉक्यूमेंट्री निर्माण प्रक्रिया। कार्यक्रम आपने सुना आकाशवाणी सागर से।

0: का व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770442297।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी सागर का प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:50 हुए हैं। आइए सुनते हैं संगीत सरिता कार्यक्रम में गैर फिल्मी गीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम के स्वर में ये गीत। श्रोताओं आपको बता दें कि ये गीत लिखा है फैज अनवर ने और इसे संगीत से संवारा है साजिद वाजिद ने।

आकाशवाणी सागर से संगीत सरिता कार्यक्रम में गैर फिल्मी गीत आपको सुनवा रहे हैं। आइए अब सुनते हैं महेंद्र कपूर के स्वर में हसन गमाल का लिखा हुआ ये गीत।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है। 9 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

गाने के पहले जो गाना आपने सुना था उसे हमने लिया था फिल्म किसी का भाई किसी की जान से। कमल खान और पलक मुछाल की आवाज़ों में वो गीत आपने सुना था, शब्बीर अहमद के बोल थे। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में अब वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, तो लिया जाए एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपको सुनवाएंगे गाने।

सब कुशल मंगल। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें सोनू कक्कड़ और वंदना सक्सेना की थी, समीर अंजान के बोल थे और

ब्रेक के बाद फिर स्वागत है। अब आपको चित्रलोक कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं अरमान खान की आवाज में हक फिल्म का ये गाना।

0: अरमान खान और साथियों की आवाज़ों में हक फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, जिसे गाया कौशल किशोर ने और विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आज पार्श्व गायक किशोर कुमार की जन्मतिथि है। महान गायक, अभिनेता, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। किशोर कुमार ने हिंदी के साथ साथ बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी और कई भाषाओं में गीत गाए। अपनी अनूठी गायकी, चंचल अंदाज और बहुमुखी प्रतिभा से करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हुए हैं। आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक किशोर कुमार पर। आज के फनकार कार्यक्रम सुनिएगा रात 9:30 और सुबह 9:30।
1: मिलती हैं धाराएं 3, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

0: रेखा भारद्वाज की आवाज में गुलजार का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था डेढ़ इश्किया और इस गीत को संगीत से संवारा था विशाल भारद्वाज ने।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की।

पटाखा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे रेखा भारद्वाज की आवाज थी। गुलजार के बोल थे, विशाल भारद्वाज का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में एक और बहुत छोटा सा ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं। साथियों, आज भारतीय सिनेमा के ऐसे बहुमुखी रचनाकार का जन्मदिन है जिन्होंने निर्देशन, पटकथा लेखन, संगीत निर्देशन और फिल्म निर्माण हर क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई। विशाल भारद्वाज का जन्म 4 अगस्त उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के शिकारपुर ग्राम में हुआ था। विशाल भारद्वाज ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत संगीतकार के रूप में की थी, लेकिन एक निर्देशक के रूप में एक अलग पहचान बनाई। मकबूल, ओमकारा, कमीने, हैदर और पटाखा जैसी फिल्मों ने उन्हें देश विदेश में विशेष सम्मान दिलाया। उन्हें गॉडमदर और इश्किया के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनके स्वस्थ, सफल और सृजनशील जीवन की मंगल कामना करते हैं। विविध भारती परिवार की ओर से फिल्मकार, संगीतकार विशाल भारद्वाज को जन्मदिन की अनेकों अनेक शुभकामनाएं देते हैं। एक और गाना आपको सुनवा रहे हैं रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजें, ओमकारा फिल्म का ये गीत सुनिए।
1: निकल गए दुनिया रे।
0: गुलजार के बोल हैं विशाल भारद्वाज का, संगीत है

विशाल भारद्वाज के संगीत निर्देशन में रेखा भारद्वाज और साथियों का गाया ये गीत अभी आपने सुना। गुलजार ने इस गीत को लिखा था, ओंकारा फिल्म का गीत आपने अभी सुना। और अब लीजिए सुनिए शशि डीजे खुशी की आवाज़ में लक्ष्मी फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं गगन आहूजा और संगीतकार हैं शशि डीजे खुशी।

इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। आपका हर दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ सकुशल और समृद्ध रहें। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है भारतीय सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक और संगीतकार किशोर कुमार को।

0: लाया हूँ।
1: सन 1929 के अगस्त महीने की 4 तारीख को जन्मे किशोरदा ने तारीख यानी इतिहास में अपना वो स्थान बनाया कि उस ऊंचाई को किसी और कलाकार के लिए छू पाना लगभग नामुमकिन सा है। उनकी टाइमिंग, नाटकीयता, भूमिका की समझ और अदायगी, सब कुछ

मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जन्मे किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। उन दिनों आभास कुमार गांगुली के बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा का एक स्थापित नाम बन चुके थे। परिवार के सदस्य अब नियमित रूप से मुंबई आने जाने लगे थे। मुंबई में किशोरदा की नई पाली की शुरुआत हुई किशोर कुमार के नाम से। 1946 में आई फिल्म शिकारी में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। इसके दो बरस बाद सन 1948 में आई फिल्म जिद्दी में उन्हें पार्श्व गायन का मौका मिला।

सन 1951 में किशोर दा ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन में नायक की भूमिका निभाई। इसे निर्देशित किया था फणी मजूमदार ने। इसके बाद सन 1957 में किशोर दा ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया। ये फिल्म ऋषि दा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। लगभग उसी दौर में फिल्म नौकरी में किशोर दा ने एक गीत गाया जिसे पहले हेमंत कुमार गाने वाले थे, लेकिन बाद में सलील दा ने

0: बंसुरी बजा।
1: किशोर दा की अभिनय यात्रा जारी थी। अभिनय के साथ साथ फिल्मों के लिए गायन भी जारी था। अपने आप पर फिल्माए गए गीत तो उन्होंने गाए ही, वहीं देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए भी गीत गाए। उस दौर में संगीतकार सचिन देव बर्मन ने उनसे कई फिल्मों में गीत गवाए। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटूश, 9 2 11 और पेइंग गेस्ट।

किशोरदा की प्रतिभा अनूठी थी। उनकी फिल्में आज हिंदी सिनेमा की अमूल्य निधि हैं। अपने गीतों में भी स्वरों से वो अभिनय किया करते थे।

0: 생가
1: 으담
2: 아요
1: 으담
3: 나
1: 아래 담 록 음브름 야에

0: बात अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार।
1: हास्य व्यंग पर किशोरदा की गहरी पकड़ थी, लेकिन गंभीर भूमिकाओं को भी किशोरदा ने बखूबी निभाया। सुनिए उन्हीं पर फिल्माया गया

0: प्रभु।
1: किशोरदा खुद एक मंजे हुए शानदार अभिनेता थे, इसलिए जिन अभिनेताओं के लिए उन्होंने पार्श्व गायन किया उन अभिनेताओं के अंदाज को अपनी गायकी में बड़े असरदार तरीके से उतारा और दिलकश अंदाज में पेश किया। फिर चाहे वो धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन।

अपने करियर के शुरुआती दौर में किशोर दा ने गायन को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया। सन 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना। फिल्म आराधना से भारतीय सिनेमा के आकाश में उदित हुए पहले सुपरस्टार के रूप में

फिल्म आराधना, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और गायक किशोर कुमार के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। इस फिल्म से किशोरदा के करियर में एक रचनात्मक बदलाव की भी शुरुआत हुई और बाद के दशकों में फिल्म संगीत की दुनिया में किशोरदा ने गायन की बुलंदियों को छुआ। किशोरदा ने कई दिलचस्प फिल्मों का भी निर्माण किया, इनमें से कुछ के नाम हैं, दूर गगन की छाव में, दूर का राही, दूर वादियों में कहीं, झुमरू, जिंदगी, चलती का नाम गाड़ी, शाबाश डैडी और बढ़ती का नाम दाढ़ी। आज किशोरदा की बनाई फिल्में अभिनय के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। किशोरदा की फिल्मों में जहां हास्य का अपना रंग था, वहीं उतनी ही गहरी संवेदना भी। उनकी फिल्म का ये गीत जितना अर्थपूर्ण है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी।

0: शानदार कलाकार समाहित था, जिसने अपने अभिनय और गीतों से हमें जाने कितनी बार हंसाया और गुदगुदाया।
1: हाँ, कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए। हाँ, कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।
2: 13 अक्टूबर सन 1987 को किशोर दा ने सांसों की सरगम पर अपना अंतिम गीत छेड़ा और फिर चले गए महायात्रा पर।

किशोर दा को अनेक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फिल्मी गैर फिल्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किशोर दा भारतीय संगीत के अनमोल रत्न थे और रत्न रहेंगे। एक अभिनेता, गायक, संगीतकार और फिल्मकार के रूप में किशोर दा ने भारतीय सिनेमा में जो अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए फिल्म जगत, फिल्मों के दर्शक और उनके गीतों के श्रोता सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

0: श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत के महान कलाकार किशोर कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

भोपाल से प्रस्तुत है सीहोर जिले की चिट्ठी। आलेख प्रदीप सिंह चौहान, वाचन स्वर दीपा सिंह। सीहोर जिले में बोनी का कार्य किसानों द्वारा शत प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। इस खरीफ सीजन में जिले में लगभग 4,08,000 हेक्टेयर रकबे में बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें 3,30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सोयाबीन, लगभग 40,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान और 31,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मक्के की फसल बोई गई है। जिले में इस बार अलनीनो के प्रभाव के चलते बारिश काफी कम हुई है। मॉनसून सत्र में अब तक औसतन 19.92 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि इसी अवधि के दौरान पिछले साल 25.44 इंच औसत बारिश दर्ज की गई थी। बीते दिनों अमर शहीद कुंवर चैन सिंह की 202वीं पुण्यतिथि पर सीहोर के दशहरा मैदान स्थित उनकी समाधि पर मध्य प्रदेश शासन की ओर से

0: से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह, विधायक सुधीश राय, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, भारत छोड़ो समिति के बलवीर सिंह तोमर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने अमर शहीद कुंवर चैन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कलेक्टर बाला गुरु के ने जिले के ग्राम नापलाखेड़ी, सतपिपलिया, धमंदा के आयुष्मान आरोग्य केंद्रों और आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की स्थिति देखी। जिले में एनएचआरसी दिल्ली की टीम द्वारा बमुलिया, मुगाली, पांगरा, बागेर और नौगांव के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को NQAS प्रमाणित किया गया है। जिले के आष्टा स्थित देवांचल धाम देवबड़ला बिलपान में प्रदेश के पुरातत्व विभाग ने रुके हुए विकास कार्य शुरू किए हैं। विभाग की इस पहल से क्षेत्र के धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पिछले दिनों सीहोर जिले में वर्षा ऋतु में पेयजल से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए जिला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंपों में क्लोरिनेशन शुरू किया। इसके तहत विकासखंड सीहोर के 1397, इच्छावर के 827, आष्टा के 1068, बुधनी के 69, भैरुंदा के 256 हैंडपंपों में क्लोरिनेशन का काम पूरा किया गया। जिले में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयासों से चल रहे उमंग हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण के 3 सत्र हुए। प्रशिक्षण का मकसद शिक्षकों को आरोग्य दूत के रूप में तैयार करना रहा। पिछले दिनों सीहोर जिले में जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत भैरुंदा स्थित शासकीय गर्ल्स स्कूल में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान SDOP रोशन कुमार जैन ने बढ़ते साइबर अपराध से बचाव के लिए सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने पर जोर दिया। सीहोर जिले में इन दिनों नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान उत्साह के साथ मनाया गया। इस अभियान के अंतर्गत जिले में रैली, मानव श्रृंखला, नशा मुक्ति शपथ, निबंध, पोस्टर, पेंटिंग और स्लोगन, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साइकिल रैली और युवा संवाद जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीते दिनों सीहोर के बुधनी स्थित प्रसिद्ध देवी धाम सलकनपुर में गुप्त नवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। प्रदेश और देश के लाखों श्रद्धालुओं ने मां विजयासन देवी के दर्शन किए। सीहोर जिले में ग्रामीण परिवारों को अधिक रोजगार, बेहतर आय और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत सरकार द्वारा लागू की गई विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण भारत BBG रामजी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। इस योजना के तहत अब पात्र ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी मिल रही है। सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा मनाया गया। इस दौरान शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ। बीते दिनों सीहोर में शिक्षा का नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हुआ। जिले के 13 सरकारी कॉलेजों सहित 40 निजी कॉलेजों में ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया पूरी हुई। सभी शासकीय कॉलेजों में BCom, BA, BSc, MA, MCom, MSc की सीट फुल हो गई है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर सीहोर जिले में मूंग उपार्जन का कार्य चल रहा है। इस बार जिले में किसानों से 60% मूंग की खरीदी की जाएगी। सीहोर जिले के आष्टा विकासखंड के समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 5 विद्यालयों के नए भवन बनेंगे। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने 2,39,52,000 रुपए की राशि स्वीकृत की है। वहीं जिले में भगवान शिव की आराधना का पवित्र सावन मास आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, साथ ही शिव मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर भी तेज हो गया है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे सीहोर जिले की चिट्ठी। आलेख प्रदीप सिंह चौहान का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रागिनी। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं पंडित अजय बोहनकर से गायन। ठुमरी सुनवा रहे हैं हम आपको सिंध भैरवी में। आइए सुनते हैं।

0: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
1: तो मिलेगी ना।
0: पर कैसे?
2: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
3: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
0: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
1: तो मिलेगी ना।
0: पर कैसे?
2: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट।

0: पाउडर, कपड़ों की चमक लौटाए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
1: आकाशवाणी सागर से आप सुन रहे हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रागिनी। श्रोताओ, अगली प्रस्तुति के पहले सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। आपको बता दें, आपका पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने की रिकॉर्डिंग आज 11 बजे से की जाएगी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 240-845 और हमारा एसटीडी कोड है 07582। तो हमें फ़ोन करना ना भूलें 11 बजे। सूचना समाप्त हुई और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंग में आइए, अब आपको सुनवाते हैं सरोद पर राग विलास खानी तोड़ी। कलाकार अमजद अली खां तबले पर इनकी संगत कर रहे हैं शफाकत अमानत अली खां। आइए सुनते हैं।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रागिनी। इस कार्यक्रम में आज हमने आपको सुनवाई ठुमरी, जो थी सिंध भैरवी में। कलाकार थे पंडित अजय पोहनकर और सरोद पर सुन रहे थे आप राग विलास खानी दोड़ी। कलाकार थे अमजद अली खान और तबले पर इनकी संगत कर रहे थे शफाकत अमजद खान। राग रागिनी कार्यक्रम संपन्न होता है, ये आकाशवाणी सागर है। 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

आपके पसंद कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता स्वीकारें चंचल का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में कुछ व्हाट्सएप फरमाइशें। सबसे पहले शामिल कर रहे हैं इन श्रोताओं को टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर हम सुनवाते हैं चालाक फिल्म से ये गीत। इस गीत को आवाज़ दी किशोर कुमार ने। और श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं पहले कार्यक्रम में हम आपको बता चुके हैं कि आज किशोर दा का जन्मदिवस है, तो सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं के अनुरोध पर किशोर कुमार के स्वर में ये गीत।

0: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
1: तो मिलेगी ना।
0: पर कैसे?
2: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तन मन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तन मन डिटर्जेंट पाउडर।
3: आपके पसंद कार्यक्रम की अगली फरमाइश हम पूरी करेंगे, पर उसके पहले सुनिए ये सूचना। श्रोताओं, आपका पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम फोन करें, गीत सुनने की रिकॉर्डिंग अब से बस कुछ ही पलों में यानी 11 बजे से की जाएगी। आप सभी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमें फोन लगा सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 240-845, हमारा एसटीडी कोड है 07582। तो फोन करना ना भूलें 11 बजे से। सूचना समाप्त हुई और आइए अब सुनते हैं इन श्रोताओं का अनुरोध। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से इसी गीत को सुनने के लिए हमें संदेश लिख भेजा प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने। आप सभी ने सुनना चाहा चुपके चुपके फिल्म से ये गीत, और इस गीत को आवाज़ दी लता मंगेशकर ने।

0: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
1: तो मिलेगी ना।
0: पर कैसे?
1: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
2: अगले गीत सुनते हैं श्रोताओं के अनुरोध पर। शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी इस गीत को सुनना चाहा है। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी ने घर, परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजानवान और समस्त परिवार। और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, हेमलता डिम्पल और कौशल्या देवांगन। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करते हैं, सुनते हैं देश परदेश फिल्म से ये गीत किशोर कुमार के स्वर में।

श्रोताओ, अगला गीत सुनने से पहले आपको याद दिला दें, बस कुछ ही पलों में यानी 11 बजे से रिकॉर्डिंग की जाएगी आपके पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुनेगी, तो हमें फोन लगाना ना भूलें। हमारा फोन नंबर है

40845 और कोड है हमारा 075 82। और अगली फरमाइश है हमारे इन श्रोताओं की, कोल सिटी बरका काना से अफजल ताज शाहीन सुल्ताना सोनू तस्लीम निपी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक, ग्राम पनारी पोस्ट महाराजपुर तहसील देवरी जिला सागर से परमलाल विश्वकर्मा दशरथ विश्वकर्मा मनोज श्रीमती पूना श्रीमती आरती दीपेश जागृति मानवी हर्षिता तनु मनु विश्वकर्मा। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं राजपूत फिल्म से ये गीत किशोर कुमार के स्वर में।

बग बुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन्नी ताम कुसुम नीताम अडार नादगांव छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा आप सभी की श्रोताओं की फरमाइश पर गमन फिल्म से ये गीत सुनवाते हैं सुरेश वाडकर के स्वर में।

इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी पसंद संपन्न करने की चंचल को दीजिए अनुमति। नमस्कार, ये आकाशवाणी सागर है। 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
1: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सुविचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका जी ने। लिखते हैं,
2: कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है लेकिन झुकने के बाद भर कर ही बाहर निकलती है। जीवन का गणित भी कुछ ऐसा ही है, जो विनम्रता से झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर और प्रेरणादायी विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर का।
2: और अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़ता बाजार से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलो।

0: दास जयदास देवेशदास धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। वो लिखते हैं,
1: जय गुरुदेव जय गुरुकुल, उमंग टीम को पल पल बंदगी, विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी जय जोहार बंदगी जी। उमंग कार्यक्रम है लाखों में एक, आप हमारे गुरु के समान हो, हर सप्ताह नई नई जानकारी हमें सिखलाते हो, अहो भाग्य हमारा। उमंग कार्यक्रम एक पाठशाला है जिसे सुनकर जीने की कला हमें आ जाती है। इस सप्ताह बहुत ही खूबसूरत गीत, कविता, फूलों से नित हंसना सीखो, खेल गीत, भारत प्यारा, टिम टिम तारा आपने सुनाया, ये सभी गीत हमें बहुत पसंद आए। धन्यवाद साहेब जी।
0: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेरणादायक संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है माँ बम्बलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू।
0: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
1: और कंडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी।
0: और राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं आज भी करेंगे कि उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए लगातार।
0: जी
1: एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी क्या है हमारी आज की चर्चा का विषय?
0: अजी जी आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित कर रहा है। चलिए मैं श्रोताओं को कुछ संकेत देती हूँ।
1: जी
0: अंदाजा लगाना है कि हम किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं।
1: जी तो विमलेश जी आपने कहा मैं संकेत देती हूँ तो संकेत दीजिए।
0: मेरे संकेत कुछ प्रश्नों में छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न है, श्रोताओं क्या आपने कभी अपने मोबाइल से कोई प्रश्न पूछा है और देखा है कि तुरंत उत्तर मिल गया? क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर को कोई पोस्टर बनाने की कमांड दी और देखा कि तुरंत आपके लिए पोस्टर बनकर तैयार हो गया? यदि हाँ तो बताइए कैसे संभव हो पाया।
1: या फिर श्रोताओं क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भाषा का अनुवाद कुछ ही सेकंड्स में होते देखा है? भला ये कैसे संभव हो जाता है?
0: अजीत जी यदि हमारे श्रोता मित्रों का ये अंदाजा है कि AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संभव हो पाता है तो वो एकदम सही है। जी हाँ हमारी आज की चर्चा का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बता दें कि इसका आविष्कार अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने 1955 में किया था। लेकिन अजीत जी एक ये प्रश्न उठता है कि कृत्रिम इंटेलिजेंस क्या है?
1: विमलेश जी यदि सरल शब्दों में कहें तो AI या कृत्रिम इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर या मशीनों को इस प्रकार से काम करने में सक्षम बनाती है कि वे कुछ हद तक मनुष्यों की तरह सीख सकें,
0: जी
1: समझ सकें और निर्णय लेकर समस्याओं का समाधान भी कर सकें।
0: जी अजीत जी आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। आज AI शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, चिकित्सा, विज्ञान और उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में बड़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकती है।
1: और तो और विमलेश जी इतने ही नहीं ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकती है।
0: शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकता है।
1: और विमलेश जी इतना ही नहीं ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकता है
0: जी।
1: अभ्यास प्रश्न तैयार कर सकता है और नई भाषा सीखने में भी सहायता कर सकता है
0: जी।
1: इससे सीखना अधिक रोचक और व्यक्तिगत बन जाता है।
0: ये सब बहुत आकर्षक लगता है लेकिन श्रोताओं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं
1: जी।
0: हर नई तकनीक की तरह AI के साथ भी कुछ चुनौतियाँ जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी चुनौती है गलत या भ्रामक जानकारी
1: जी।
0: AI कभी कभी ऐसा उत्तर दे सकता है जो सुनने में तो सही लगे लेकिन पूरी तरह से सही न हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की विश्वसनीय स्रोतों से अवश्य जांच कर लेनी चाहिए
1: जी। बिल्कुल सही श्रोताओ। दूसरी एक और बहुत बड़ी चुनौती
0: जी
1: वो चुनौती नकल करने की प्रवृत्ति
0: जी।
1: विद्यार्थी भी कई बार अपना गृह कार्य, प्रोजेक्ट या निबंध पूरी तरह AI से बनवा लेते हैं लेकिन ऐसा करना बहुत हानिकारक है
0: जी।
1: क्योंकि इससे उनकी अपनी सोचने, लिखने और समस्या समाधान की क्षमता प्रभावित हो सकती है और आजकल ऐसा होने भी लगा है।
0: तो श्रोता मित्रों हमें याद रखना चाहिए कि AI सीखने का साधन है, सीखने का विकल्प नहीं
1: जी।
0: तो अब बात करते हैं कि AI का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे करें। सबसे पहली बात AI का उपयोग सीखने के लिए करें, केवल उत्तर पाने के लिए नहीं। यदि कोई विषय समझ में ना आए तो आप AI से कहें कि वो सरल भाषा में विषय को समझाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समझने के बाद आप उसे अपने शब्दों में लिखें
1: जी। ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें एक और बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि AI से मिली जानकारी का मिलान विश्वसनीय पुस्तकों, शिक्षकों या प्रामाणिक स्रोतों से जरूर करें
0: जी।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात, एआई पर आश्रित ना हो जाएं।
0: बिल्कुल,
1: अपनी रचनात्मकता को बनाए रखें। चित्र बनाना, कविता लिखना, कहानी गढ़ना और नए विचार सोचना, ये सब मानव की विशेष क्षमताएं हैं।
0: जी हाँ श्रोता मित्रों, एआई का उद्देश्य आपकी जगह सोचना नहीं, लेकिन आपको एक बेहतर ढंग से सोचने में सहायता प्रदान करना है
1: जी।
0: एआई हमारी सहायता कर सकता है, लेकिन हमारी कल्पना शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। ये सच है कि हर नई तकनीक अपने साथ अवसर भी लाती है और जिम्मेदारी भी।
1: जी हाँ, जैसे एक उदाहरण लीजिए, जिस प्रकार बिजली का सही उपयोग हमारे जीवन को आसान बनाता है,
0: बिल्कुल,
1: और गलत उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है
0: जी।
1: इसी प्रकार एआई भी एक बेहद शक्तिशाली साधन है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब हम इसका उपयोग समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आइए हम इस तकनीक से डरे नहीं, बल्कि उसे समझें, उससे सीखें, उसका उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करें।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो श्रोताओ, आज का हमारा प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे आईवीआरएस नंबर यानी 8800440559 पर। आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCRT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: और एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है पेड़ की बात।
0: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम महान भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बसु के एक विज्ञान लेख पर आधारित है, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बड़ी रोचक जानकारी दी है।
1: पेड़ की बात।
2: साथियों नमस्कार, हम सब प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानते हैं। उनका बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। जीव विज्ञान, भौतिकी और वनस्पति विज्ञान में उनकी महारत थी। उन्होंने बांग्ला भाषा में बच्चों के लिए बहुत सी विज्ञान कथाएं और लेख भी लिखे। जगदीश चंद्र बसु ने कई विज्ञान कथाएं लिखी हैं, जिनमें से निरुद्देशेर गोल्पो यानी लापता की कहानी 1896 में लिखी गई और बाद में 1921 में पलटक तूफान यानी भगोड़ा समुद्री तूफान के रूप में प्रकाशित की गई, जो बांग्ला विज्ञान कथा साहित्य की शुरुआती कृतियों में से एक है। उन्हीं विज्ञान लेखों में से एक रोचक लेख है पेड़ की बात। जगदीश चंद्र बसु को बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने घर में भी प्रयोगशाला बना रखी थी। छुट्टियों के दिनों में उनके पास बहुत से बच्चे विज्ञान के प्रश्नों के साथ आते रहते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने सोचा कि क्यों ना उनके पास चलें? तो आइए दोस्तों, हम भी चलते हैं बच्चों के साथ सर जगदीश चंद्र बसु के पास और सुनते हैं ये विज्ञान वार्तालाप।
3: चलो चलो सर के पास, सर के पास चलते हैं।
4: सर से हम पेड़ पौधों के बारे में पूछेंगे।
5: नमस्कार सर।
6: नमस्कार, और इतने सारे बच्चे। आजा आजा आजा, तो अब जरा अपना इंट्रोडक्शन दो।
7: सर मैं इशिता, मैं हूँ चेताली।
8: मैं शुभेंदु।
9: और मेरा नाम है इंदु।
10: और मैं सोमेश।
6: बहुत अच्छा। तो बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों का आना कैसे हुआ?
7: सर हम आपसे पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहते हैं।
6: देखो, पेड़ बनने की कहानी सबसे पहले शुरू होती है बीज से।
8: जी सर, मैंने अपने खेत में बीज को बोते हुए देखा है।
11: सर
10: फिर क्या होता है?
6: फिर होता यह है बच्चों कि बीज मिट्टी में पड़ा रहता है लंबे समय तक। जैसे ही वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है ना, बीज मानो सोचता है।
10: बीज सोचता है? क्या सोचता है?
6: वो सोचता है अब मिट्टी में पड़े रहने का समय नहीं है। उसे लगता है मानो प्रकृति उसे बड़े प्यार से पुकार रही हो। जैसे
11: उठो, उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है, बाहर निकलो, सूर्य को देखो, अपने आसपास देखो, सब कुछ कितना सुंदर है।
7: वाह, कितनी सुंदर बात है।
6: अच्छा, एक बहुत मजेदार बात तुम लोगों को बताता हूँ बच्चों। देखो, जब अंकुर फूटेगा और डालियां निकलेंगी तो जड़ हमेशा नीचे की ओर ही जाएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। जानते हो, एक बार मैंने एक प्रयोग किया था। एक गमले में क्या था बताओ?
5: पौधा।
6: शाबाश। परीक्षण करने के लिए मैंने कुछ दिनों तक पौधे को उल्टा लटकाए रखा।
5: उल्टा?
6: हाँ, उल्टा। और जानते हो क्या हुआ? पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर।
10: फिर क्या हुआ?
6: फिर दो तीन दिनों के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उसकी सारी पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। ऐसा लगा जैसे पौधे को भी प्रकृति का ये भेद मालूम हो गया हो। है ना रोचक बात?
10: ये तो बड़ी रोचक बात है सर। सर, एक बात बताइए, क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं?
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, हमें जिस प्रकार भोजन की जरूरत होती है ना, हमारे दांत होते हैं, है ना?
7: जी सर।
6: इसलिए हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव्य या वायु से ही भोजन ग्रहण करते हैं। वो जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं।
7: रसपान कैसे करते?
6: एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी में चीनी डालने पर चीनी घुल जाती है ना?
7: जी सर।
6: वैसे ही मिट्टी में पानी डालने पर उसमें मिट्टी के बहुत से पोषक तत्व घुल जाते हैं। पेड़ पौधे उसी पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
7: अच्छा, अब समझ आया।
6: तो अब इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए चलो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में।
5: जी सर। हाँ,
7: यहाँ तो कितने सारे पत्ते, बीज, पौधे के तने रखे हुए हैं। अरे, कितनी बड़ी प्रयोगशाला है।
12: यहाँ पे तो बहुत तरह के पत्ते हैं।
10: ये तो बहुत सुंदर पत्ते हैं, बिल्कुल हरे हरे।
13: देखो, इतना बड़ा पेड़।
14: अरे, उधर देखो, सूखे पत्ते भी हैं।
15: अरे, यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।
7: और ये मशीन क्या है? चलो चलो सर से पूछते हैं।
6: कहते हैं, अब इसका कमाल देखो। इशिता, तुम इधर आओ बेटा। हाँ, देखो।
12: जी सर।
6: हाँ, देखो, अब मैंने क्या किया कि इस माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर पौधे के इस तने को रखा। हाँ, आओ देखो, देखो बेटा, देखो इसमें, देखो क्या दिखाई दे रहा है।
10: अरे वाह, मुझे तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नलियां दिखाई पड़ रही है।
6: शाबाश।
10: हाँ, नलियां तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है इसमें।
7: मुझे भी देखना है। सर, मैं भी देखूं?
6: हाँ, आओ।
10: मुझे भी देखना है।
6: देखो क्या दिखाई दिया?
10: इसमें तो बहुत सारी नलियां हैं।
6: शाबाश, बिल्कुल सही, लाखों पाइप हैं।
5: पाइप?
6: हाँ, यानी जड़ मिट्टी से जिस पोषक तत्व को सोखती है ना, वो पोषक तत्व इन्हीं पाइपों के द्वारा पूरे पेड़ तक पहुँचते हैं।
7: अच्छा, तो ये बात है।
6: अब देखो, जैसे हमारी नसें होती है ना, बिल्कुल यही बात है।
14: सर, पौधे वायु और सूर्य के प्रकाश से भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो कैसे?
6: वृक्ष के पत्ते हवा से आहार यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कभी तुम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से पत्तों को देखा है?
5: नहीं सर।
6: और अब देखते हैं पत्ते को। कौन सा पत्ता लें? ये वाला पत्ता लेते हैं और इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर। हाँ, अब देखो कौन देखेगा सबसे पहले। शुभेंद्र, तुम देखो, क्या दिखाई दिया?
10: अरे वाह, कितना अद्भुत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पत्ते में अनगिनत छोटे छोटे मुंह हैं।
6: बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, पत्तों के इन्हीं छोटे छोटे मुखों और जड़ों से पेड़ पौधे हवा से नमी ग्रहण करते हैं और सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और जानते हो इसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अच्छा चलो बच्चों, अब एक और प्रयोग करते हैं। तैयार हो तुम लोग सब लोग?
5: जी सर।
6: तो अब सभी लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ, ऐसे। हाँ, शाबाश। और अब सब लोग एक लंबी सांस लो और अब छोड़ो। अब बच्चों ये बताओ कि तुमने सांस लेते समय क्या लिया और सांस छोड़ते समय क्या छोड़ा। इशिता तुम बताओ।
7: सर, टीचर बताती है कि हम सांस लेते समय मुख्य रूप से ऑक्सीजन लेते हैं।
6: शाबाश। और शुभेंदु तुम बताओ, हम सांस छोड़ते समय क्या छोड़ते हैं?
8: सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
6: हाँ।
8: लेकिन सर, ये तो जहरीली होती है।
6: बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। देखो बेटा, मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी के सभी सांस लेने वाले जीव जंतु ऐसा ही करते हैं। अच्छा जरा सोचो, अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो क्या होगा?
7: पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा।
6: सही कहा तुमने, शाबाश। लेकिन बेटा जरा विधाता की करुणा और चमत्कार तो देखो। जो गैस हम जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है।
9: यानी यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो
5: हम भी नहीं होते।
6: शाबाश। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी आज की बातचीत?
5: बहुत बढ़िया।
6: अब से एक काम जरूर करना।
5: क्या सर?
6: जब भी किसी पेड़ पौधे को देखना ना, तो उसे बोलना
5: थैंक यू।
6: शाबाश।
2: तो साथियों, अब हम किसी भी पेड़ या पौधे को देखकर धन्यवाद तो जरूर कहेंगे, लेकिन सिर्फ धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा। बात तो तब है जब हम सिर्फ धन्यवाद ही ना कहें, बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं।
1: पेड़ की बात। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए? तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

0: पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया। फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

साथी की सहायता। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्ता लूदरा और सत्येंद्र वर्मा। कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर। कलाकार नीरज यादव, अर्जुमन अली खां और मिताली। ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साथी की सहायता। CIET NCERT presents English rhymes and songs.
1: Friends, we present to you the song Five Little Ducks.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
0: चेतना
1: और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 11:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और
3: ललन मिया, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
0: विविध भारती से रंग तरंग। गुलजार के बोल उस्ताद अमजद अली खां की तर्ज है वादा एल्बम का नाम, साधना सरगम की आवाज़।

पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आँखें हैरान सी रह जाती।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय।
0: पर्वती खान की आवाज एल्बम का नाम है मिसिंग यू। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की बैठक दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा दिया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
1: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही, चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर ने ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री

0: निर्मला सीतारामन ने कल ये विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बहीखातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। इस बीच राज्यसभा में आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीतिक आग्रह के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण और ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किए जाने को दूसरा चरण बताया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओकावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। महिला डबल्स में प्रिया कोनजेंगबांग और श्रुति मिश्रा तथा पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय आज कोर्ट में उतरेंगे। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

शैलेंद्र के बोल, किशोर कुमार की आवाज, उन्हीं का संगीत, फिल्म का नाम दूर गगन की छांव में, किशोर कुमार की उदास कहानी, यादों की महफिल।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदान एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

इंदीवर की आवासी श्यामल मित्रा का संगीत, अमानुष फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन, फिल्म अमर प्रेम।

0: अमर प्रेम फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में था। आनंद बख्शी की बोल थी आर डी बर्मन की तर्ज। एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। मजबूर फिल्म का ये गाना था किशोर कुमार के उदास नगमे विविध भारती के कार्यक्रम में यादों की महफिल। इस बार मदन मोहन की तर्ज किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम एक मुट्ठी आसमान।

किशोर कुमार के उदास नगमे अलग अलग संगीतकारों के साथ। फिल्म का नाम निशान, राजेश रोशन का संगीत।

कितने रंग हैं, किशोर कुमार की आवाज के एक रंग उदासी का भी है। किशोर कुमार को हमेशा मस्ती से, ऊधम से, शरारत से और कॉमिक अंदाज से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जिंदगी का एक जरूरी रंग उदासी है और यहां किशोर कुमार खूब खिलते हैं। अनजान और प्रकाश मेहरा के बोल।

इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुरीला सफर।

0: आइए सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। किशोर कुमार का जन्मदिन फिल्म संगीत के चाहने वालों के लिए एक बहुत ही अनमोल दिन होता है, और आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का मिजाज हमने बिल्कुल अलग रखा है, इसीलिए आज की इबारत बिल्कुल अलग तरह की है। ये इबारत, अरे सुनो सुनो गुणी जनो, मेरा मतलब है सुनिए सुनिए, जरा सी हुई चूक और आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, अपनी तो बच गई बीन, जाना था जापान पहुंच गए चीन। अरे भाई किसी ने कहा था निकलो घर से दुनिया की रौनक देखो, तो बस निकल पड़े टिम्बकटू काठमांडू, रह गए हक्का बक्का, देश छुड़ाए भेष छुड़ाए, क्या क्या न करे ये प्रीत रे, कहीं मिला निराला सुरमा, कहीं प्यारी बिंदु और कहीं भीगी भागी लड़की, पर फिर याद आई गुरुजी की सीख, कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना। तो हमने दिया चकमा ईना मीना डीका को, भले हमें गाना ना आया बचाना ना आया, पर एक रोज हमारी भी दाल गलेगी, तो बढ़ के बोल बेटा बम बम, एक बजे मिलेंगे हम। ये है आज की इबारत, और लीजिए एक बजे मिल भी गए हम, लेकर आए हैं किशोर कुमार की फुल मस्ती।
1: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाइयों बहनों,

0: gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele bam bam ma bam bam ma bam bam ma bam bam ma dil haku paku jaan haku paku jaan haku paku dil haku paku ram ram siya ram salam alaikum pyar karo chup chup chup priyo chup chup khan khan khut khut khut khut khut khut khan khan khut khut how do you do bam chik chik cham chik chik bam chik chik cham chik chik bam chik bub chik bam chik bub chik bam chik bub chik bam chik bub chik bad ke baul beta bam bam
1: भाई बढ़ के बोल बेटा बम बम वाला ये गाना, ये सोचकर हैरत होती है कि इसमें गीतकार का कितना योगदान है और किशोर का कितना योगदान।
0: बाबा लोग सुनो, काका लोग सुनो, दादा लोग सुनो, जल्दी जल्दी कुड़िये ये पुत्र देख भाई इधर आ, खाली है पिंजरा, ए देख भाई इधर आ, अरे खाली है पिंजरा, पिंजरे के अंदर।
1: कौन कौन बता सकता है कि ये किस फिल्म का गाना है?
0: अंदर निकलेगा बंदर, यही परिचय है राजा जानी का, बोलो मसाल जवानी दीवानी का।
1: क्या बात है किशोर कुमार की। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनके लाइव कॉन्सर्ट्स देखे हैं सचमुच में या फिर वीडियो पर, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मस्ती किस तरह की होती थी। लेकिन किशोर कुमार एक बहुत संजीदा आदमी भी थे। किशोर कुमार को सेलिब्रेट करना इसलिए मुश्किल है कि आप किस तरह से उन्हें सेलिब्रेट करेंगे। इतना बड़ा, इतना ज्यादा विस्तृत करियर क्या सुनाएं और क्या नहीं सुनाएं, इसीलिए हमने आज चुना है किशोर कुमार की मस्ती को। लेकिन सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि किशोर कुमार के किस अंदाज के गाने आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। उनके रूमानी गाने, उनके उदास गाने, ऐसे गाने जिनमें जिंदगी का दर्शन है, या ऐसे गाने जो हमने आज चुने हैं बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, बहुत ही ज्यादा मस्ती भरे, बल्कि कहें कि ऊधम भरे गाने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए जरा चलते हैं टिम्बकटू और काठमांडू।
2: गौरी जरा बती या सुनो जी मोरी मोरी।
1: आप सभी को किशोर कुमार के अपने पसंदीदा तीन गानों की लिस्ट बनाकर हमें भेजनी है।
2: चोरी चोरी चोरी।
1: जरा देखते हैं कि आपकी पसंद के किशोर के तीन फेवरेट्स कौन से हैं।
2: काकरी माकरी आकरी माकरी काकरी माकरी आकरी माकरी हे हे हे हे।

0: नहीं हूँ दीवाना, पलक न गिराना तू जरा सा उठाना आँखों का पर्दा दादा।
1: चुंबक तू, मैं भी भला बच्चे बच्चे तेरा हूँ।

0: क्या आपको ये अंदाजा लग सकता है कि ये गाना 65 बरस पुराना है, 65 साल पुराना? और किशोर के गानों को सुनते हुए ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गीतकारों के लिए वो कितनी बड़ी चुनौती बन जाते थे, उनके लिए गाना कैसे लिखा जाता होगा। गिगे गिगेली जरा टिम्बकटू मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और मैं चाहता हूं कि कुछ कमेंट्स यहां पर मैं पढ़ दूं। तीन पसंदीदा गानों की जो बात हमने कही थी, तो एक श्रोता है, उनके तीन पसंदीदा गाने खिलते हैं गुल यहां, फूलों के रंग से और मेरे महबूब कयामत होगी। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स और इतनी तेजी से स्क्रॉल हो रहा है हमारा ये कंप्यूटर स्क्रीन के इन गानों को पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। जिंदगी के सफर में गुजर जाती है, मंजिलें अपनी जगह हैं। और तीसरा गाना उड़ गया, कहाँ गया ये, आ चल के तुझे लेके चलूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत ही कठिन प्रश्न है क्योंकि किशोर कुमार के कौन कौन से रंग पसंद है, हमें तो सारे रंग पसंद हैं। एक और श्रोता, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, रुक जाना ओ जाना और फूलों के रंग से, ये उनके फेवरेट हैं। जिंदगी के सफर में मंजिलें अपनी जगह हैं और सलाम इश्क, ये किसी और श्रोता के फेवरेट से। और इसके अलावा और भी चीज़ों के जवाब हमारे श्रोताओं ने दिए हैं। एक श्रोता ने कहा है कि भाई कहते हैं मुझको राजा फिल्म का गाना था, बढ़ के बोल बेटा बम बम, मजरू सुल्तानपुरी ने वो गाना लिखा था। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा कि कहानी किस्मत की फिल्म के गाने से आपने कार्यक्रम को शुरू किया था। और इसके अलावा एक श्रोता है जिनकी पसंद के तीन गाने, कुछ तो लोग कहेंगे पायल वाली देखना और जीवन से भरी तेरी आंखें। बहुत सारे श्रोताओं की बातें और किशोर कुमार के बारे में जब लोग अपने जज्बात शेयर करते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं तो ये लगता है कि कितना प्यार इस कलाकार से हम सभी को है जो हम फिल्म संगीत को प्यार करते हैं। अब एक गाना आ रहा है जो बिल्कुल बीच से आ रहा है, यानी इस गाने का सबसे ज्यादा फनी पोर्शन हम आपको सुनवा रहे हैं। आपको दो बातें बतानी है, एक तो फिल्म का नाम और दूसरा गीतकार का नाम। ऐसा हुड़दंगा गाना आखिर किसने लिखा?
1: जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल।

राजेंद्र जय जय जय हो जय राजेंद्र जगत नारायण के छोड़ के संतो नगद नारायण के

0: पीछे पड़ गया इनकम टैक्स हम। अरे बम बम नाचे किशोर कुमार बम बम मको बम बम मको बम बम मको बम बम मको बम बम मको बम बम।
1: जरा सोचिए कि जब गानों की लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती होगी तो कैसे म्यूजिशियंस और कोरस और किशोरदा के साथ के सिंगर सारा तालमेल बैठाते होंगे और इस हुड़दंग के बीच अपने हिस्से की अदाकारी करते होंगे। क्या कमाल है। एक और श्रोता है जिन्होंने अपने तीन पसंदीदा गाने लिखे, मेरे दुख सुख का संसार, तेरे दो नैनन में, लहरों से पूछ लो और हरे कृष्ण, नया दिन नई रात, काफिला और फरेब फिल्म के गाने, बहुत ही अनमोल गाने इन्होंने बताए। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर कुमार के गानों में बहुत सारी मस्ती सुनने को मिलती है, उनकी यूडलिंग कमाल की है और इसीलिए उन्हें सारी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी, वो शाम कुछ अजीब थी और कश्ती का खामोश सफर, ये हमारे एक श्रोता के तीन पसंदीदा गाने। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि जिस तरह से वो संजीदा गीत गाते थे, लगभग उसी सुरूर में वो शोख गीतों की कलियां चटकाते रहे हैं। आंसू और मुस्कान फिल्म का गाना भी हमने आपको सुनवाया, कमर जलालाबादी ने इस गाने को लिखा, जय गोविंदम जय गोपालम, पीछे पड़ गया इनकम टैक्सम। ये जो बोल है कमाल, मतलब आप ये जरा ये सोचिए कि सामान्य गीतकारी में इनकी गुंजाइश कहाँ है, लेकिन किशोर कुमार गानों में जो गुंजाइश निकालते हैं वो अद्भुत है। जैसे कि ये गाना, आज अगर किशोर कुमार होते तो पहली बात आप उनसे क्या कहते, बताइए।
2: योगा

0: पकड़ी पकड़ी कॉलेज पहुंची, सुन लिया लेक्चर राधा, पढ़ते पढ़ते याद आ गया किसी से लंच का वादा। खिसक के पहुंची रेस्टोरां, जान में आई जो
1: हाय हीरो, हाय हीरो, हाय हीरो,
2: हाय बेबी, हाय बेबी, हाय बेबी,
1: हाय
2: हनी, मैं तो बोर हो गया।
1: Really?

तरह की छिड़ गई कप छप जोटले का मिले नमे कप कदम कदम पर धोती वाले मोटी तोंदों वाले लाले क्रिसमस में जापान चलेंगे।

0: एक श्रोता ये लिखते हैं कि अगर आज किशोर कुमार होते तो उनके सामने बैठकर उनके गाए हुए उनके कुछ गाने सुनती। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि फिल्म जगत में जो योगदान है उसके लिए हम हमेशा किशोर कुमार के ऋणी रहेंगे। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज अगर किशोर कुमार होते तो हम उनसे एक चतुरनार, पांच रुपया, बारह आना जैसे गाने सुनते। और इसके अलावा एक और श्रोता ने जो बात कही है कि आज के तमाम हीरोज के गाने वही गा रहे होते और सबसे ज्यादा गाने उनके नाम पर होते आज अगर किशोर कुमार होते। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये कहा है कि बहुत ही अनसुना गीत आपने बजाया। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि अगर आज किशोर कुमार होते तो ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार के सभी गाने वही गा रहे होते। और एक और श्रोता कहते हैं कि हम तो भाई उन्हें साष्टांग प्रणाम करते आज अगर होते। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि हम उनसे कहते हैं कि आप अपनी यूडिलिंग हमें सुनवा सिखा दीजिए। और फिर एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज अगर किशोर कुमार हमारे सामने होते तो हम सैल्यूट करते, चरण स्पर्श करते। कितने लोगों के कितने जज्बात। एक श्रोता लिखते हैं कि किशोर मरते नहीं, किशोर सबके दिलों में जिंदा हैं। किशोर कुमार को समर्पित ये आज का कार्यक्रम सुरीला सफर सीधे रास्ते पर नहीं जा रहा है। आज का जो कार्यक्रम है ये बिल्कुल वैसा है जैसी किशोर कुमार की मस्ती, जैसे किशोर कुमार का हुड़दंग।
1: और ये भी हक्का,
0: यानी ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप रह जाएं हक्का बक्का।
1: और ये भी हक्का। ये भी हक्का, हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता। अरे डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का। ए भी हक्का, हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता। अरे डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का। ए भी हक्का।
0: किस फिल्म का है ये गाना ये बताइए।

0: मुझे ये हवा मिली ऐसी नजर किसको
1: धूम धाम बड़ा बड़ा बूम
0: आई आधी टूटा पत्ता डाली टूटी फल है कच्चा बाग लगाया पक्का ये भी हक्का हक्का पक्का दुनिया पागल

चूमे। अरे दूर फिटे मुँह चलते जाना, देखे धक्का आई आधी, टूटा पत्ता डाली टूटी, फल है कच्चा, भाग लगाया पक्का, ए भी हक्का, हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता, है डाली टूटी, फल है कच्चा, भाग लगाया पक्का, ए भी हक्का। बच मैं हूँ इंसान, वो है कुत्ता, कहता हूँ पते की सुन, वो सोनिया मैं हूँ इंसान, वो है कुत्ता, कहता हूँ पते की सुन, वो भी काटे मैं भी काटूं, यहाँ सबको है अपनी धुन। अरे भागो बम्बई से कलकत्ता, चलते जाना देखे धक्का आई आधी, टूटा पत्ता डाली टूटी, फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का। ए भी हक्का, हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता, अरे डाली टूटी।

0: हल है कच्चा बाग लगाया पक्का ए भी हक्का हक्का बक्का दुनिया पागल है अलबत्ता डाली टूटी फल है कच्चा बाग लगाया पक्का ए भी हक्का और बाग लगाया पक्का ए भी हक्का और बाग लगाया पक्का ए भी हक्का।
1: भाई इस गाने को सुनकर क्या कहेंगे आप, मजरूह सुल्तानपुरी के ये बोले कितने सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है और अपने जज्बात का इशार भी किया है। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि उनके फेवरेट गाने हैं एक लड़की भीगी भागी सी अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते और कश्ती का खामोश सफर। एक श्रोता और हैं जिन्हें बिंदु रे बिंदु गाना बहुत पसंद है, ये जो गाना हमने आपको सुनवाया इसके बारे में भी कई श्रोताओं ने अपनी बात कही है। और इसके अलावा किशोर कुमार के गाय नगमे मनोरंजन ही नहीं करते, अपनी आवाज़ के जादू से हम सबके दिलों में जगह बना लेते हैं, ये किसी ने कहा है। वो दुनिया से ज़रूर विदा हो गए मगर उनके गीतों को क्या हम अपने दिल से विदा कर सकते हैं, ये भी एक बात। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखती हैं कि किशोर दा के सामने मौजूद होना ये किसी भी कला प्रेमी के लिए जीवन का सबसे बड़ा और जादुई पल हो सकता है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं लहरों की तरह यादें मेरा जीवन कुछ काम ना आया मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, ये तमाम गाने। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि खंडवा में हम उनके घर उनके समाधि स्थल तक गए और इन जगहों के दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर दा अगर आज होते तो खंडवा में दूध जलेबी का आनंद जरूर लेते। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अपने घर को लेकर उनका अपना एक अलग सपना था जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने घर में एक आर्किटेक्ट को बुलाया और कहा कि मेरा एक ऐसा घर बनाओ जिसके हर कमरे में पानी हो और पूरे घर में नाव चलाकर एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाएं। आर्किटेक्ट भाग खड़ा हुआ। ये घटना जो है ये बहुत ही दिलचस्प है पर आज के इस कार्यक्रम में ना जगह है ना सही समय है इसे बताने का। दरअसल उन्होंने उस आर्किटेक्ट से एक तरह का बदला लिया था, उसे सताया था। चलिए छोड़िए आगे बढ़ते हैं। और किशोर दा एक सलाह दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुएं में कूद के मर जाना यार तुम शादी मत करना। अब आप लोग विविध भारतीय फेसबुक पेज पर जाकर बताइए कि ये सलाह सही है या नहीं है।
2: कुएं में ठंडा जल में नहाने से गला ठोचरा बैठ गया। कुएं में कूद

0: अंदर अंदर आग सी भड़की। उसका नाम घराना पूछा, उसका ठौर ठिकाना पूछा, अपने दिल की उमंगे लेकर पहुंचा मैं उसके बंगले पर। अपने दिल की उमंगे लेकर पहुंचा मैं उसके बंगले पर, जाते ही झुके सलाम बजाया, डैडी को दिल का बयान सुनाया, भोले भाले डैडी बोले।
1: हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, अच्छा ख्याल है आपका दीजिए, ये मुझको पता अपने बाप का, आपके बाप को चिट्ठी के जरिए बता दूंगा, अच्छा ख्याल है आपका।
2: चाय पिलाओ के ठंडा मंगाओ, अरे चाय पिलाओ के ठंडा मंगाओ, के मुर्गी के अंडे

0: कोई बता सकता है कि ये किस फिल्म का गाना है?
1: कहने लगा
2: ये मुंह और मसूर की दाल पे, निकल जा निकल जा निकल जा यहाँ से चंडाल के बच्चे। उसका भाई था बॉक्सर भारी, उसका भाई था बॉक्सर भारी, उसने की हमले की तैयारी, मैं तो तुमको दबा कर भागा, मैं तो तुमको दबा कर भागा, रास्ते में बोला मन का कागा।
3: क्या क्या
1: कुएं में
0: इस गाने के संगीतकार कौन हैं ये भी बताएं।

0: ना कुछ मेल हुआ, दिल फेल हुआ, हाय हाय रे।
1: बबलू बबलू बबलू बबलू बाबा बबलू बबलू बबलू बाबा बबलू
0: होनोलुलू होनोलुलू।
2: कहां से पहुंचे और कहां चले गए होनोलुलू, कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना परिवार, फिल्म का ये गाना बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। शैलेंद्र का ये गीत और सलील चौधरी का संगीत, इस गाने के बोल एक कागज पर लिखकर देखिए और जरा सोचिए कि कैसे लिखे गए होंगे ये गाने और कैसे इनकी रिकॉर्डिंग की गई होगी। 1956 में आई थी ये फिल्म और बिमल रॉय की ये फिल्म थी और बिमल रॉय निर्मित इस फिल्म में किशोर कुमार का स्पेशल अपीयरेंस था, ये भी हमारे एक श्रोताओं हमारे कुछ श्रोताओं में से किसी एक ने कहा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोरदा किस तरह से किसी भी गाने को मज़ेदार बना देते हैं कि सुनकर बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 50-60 साल पहले लड़कियों के लिए अगर शादी ना करनी होती तो भी करनी पड़ती थी, आज की बात कुछ अलग है। एक श्रोता है जिन्होंने सारी बात को समअप कर दिया है कि शादी वो लड्डू है जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए, इसलिए शादी करना ही बेहतर है, यह उनका विचार है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर कुमार को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय सिनेमा के सबसे बहुमुखी और प्रभावशाली कलाकारों में से एक वो माने जाते हैं। एक और श्रोता का कहना यह है कि उनके 3 पसंदीदा गानों को सिलेक्ट करना जरा मुश्किल है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन आज आपने किया है, पहले तो उदास गाने बजाए और उसके बाद ऐसे मस्ती भरे गाने लगाए कि एक श्रोता कह रही है कि ऐसे गीत लाए हैं जो आज हमने इनमें से कुछ पहली बार सुने हैं। ठीक है भाई, अब जरा ये गाना सुनिए और बताइए रुपहले पर्दे पर इस गाने में कौन कौन नजर आते हैं और किशोर कुमार इस गाने में किसकी बैंड बजा रहे हैं।

0: गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: गुजरिया, ओ सवरिया,
1: ओ गुजरिया,
2: ओ सवरिया,
1: ओ गुजरिया,
2: ओ सवरिया।
3: भाई खत्म हुआ ये हुड़दंग का गाना, हाफ टिकट फिल्म का गाना शैलेंद्र के बोल। और एक श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि मध्य प्रदेश के लोग ही नहीं नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं है, इस तरह से ना करें क्षेत्रवाद। वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग ही ऐसा हुड़दंगा कार्यक्रम कर सकते हैं। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं फिल्म हाफ टिकट शैलेंद्र जी के बोल हैं। और हाँ एक चीज़ आपसे कहनी है कि कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने जोश जोश में सखी सहेली वाली या आज शाम के 4 बजे पिटारा वाले कार्यक्रम में जाके अपने कमेंट कर दिए और किशोर कुमार के फेवरेट गाने वहाँ चिपका दिए। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने जाके वहाँ पर आपके कमेंट्स देखे तो मुझे लगा ये कुछ कमेंट्स वहाँ पर क्यों हैं। तो एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई इस गाने में किशोर कुमार प्राण की बैंड बजाते हैं, क्या तो शानदार मुकाबला है दोनों महान कलाकारों का इस गाने में। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि किशोर कुमार की बहुमुखी प्रतिभा का शानदार उदाहरण है और किशोर कुमार ने ही महिला और पुरुष स्वर में भी गाया है और प्राण के स्वर में भी गाया है। और इसके अलावा और भी तमाम श्रोताओं ने अपनी बातें कही हैं लेकिन आज गाने भी ज़्यादा हैं और आप सभी के जज्बात जिस तरह से आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हौसला बढ़ाने की भी बात है। और ये भी कि किशोर कुमार के प्रति जो आपका प्रेम है वो कितना ज़्यादा है। अब एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि पहले हास्य गीतों का एक कार्यक्रम आया करता था विविध भारती पर, आज के इस कार्यक्रम ने उसकी याद दिला दी है। इसके अलावा एक श्रोता का कहना है कि जब वो हास्य गीत गाते थे तो लगता था उन्होंने गाने को किसी धागे की तरह उलझा दिया है और यही धागा उलझाना उनकी विशेषता थी। अब दो गाने बैक टू बैक आएंगे, बल्कि गानों के अंश बैक टू बैक आएंगे, आपको इनकी फिल्मों के नाम बताना है।

0: कोई बात है।
1: भाई बैक टू बैक दो गाने हमने आपको सुनवाए और सभी श्रोताओं ने अपने इन बातों के जवाब दिए। चलती का नाम गाड़ी और पड़ोसन फिल्म के ये गाने। और चलती का नाम गाड़ी के गाने के बारे में एक श्रोता लिखती हैं कि क्या तो एक्सप्रेशन है, मधुबाला के लिए गा रहे हैं पर लगा ऐसा जैसे उनके लिए उन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्या तो शानदार फिल्म है चलती का नाम गाड़ी। कितने बार आपने देखी है जरा बताइएगा तो हम ये अंदाज़ा लगा पाएं कि चलती का नाम गाड़ी हमारे आज सुन रहे श्रोताओं में सबसे ज़्यादा कि बार किसने देखी है। एक तो ये बात हो गई और दूसरी बात ये है कि आज जो मैंने इबारत लिखी थी किशोर कुमार के हुड़दंगे गानों के बारे में, क्या कोई गिनकर बता सकता है कि उस पूरी इबारत में कुल कितने गाने समाये हुए हैं। और अब किशोर कुमार का ये बेतहाशा हुड़दंगा गाना, फिल्म का नाम आपको है बता।

0: क्या तो शानदार गाना है, नई दिल्ली फिल्म का ये गाना। भाई आज की इबारत पढ़िए और जल्दी से हिसाब लगाकर बताइए कि आज की इबारत में मैंने जो शब्द लिखे हैं, गानों को जोड़कर जो इबारत बनाई है, उसमें गानों की कुल संख्या कितनी है, जरा हम देखें तो कि आप लोग सही सही अंदाजा लगा पाते हैं या नहीं, क्योंकि शब्द शब्द पर गाने समाये हुए हैं। तो कुछ श्रोताओं के जवाब आए हैं, कुल 13 गीत हैं जो कि गलत जवाब है, एक और हैं जिन्होंने 14 गीत लिखा है वो भी गलत जवाब है। तो जरा ध्यान से पढ़िए और आज का ये कार्यक्रम, एक कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा तो खत्म हो चुका है। तो एक और श्रोता है जिन्हें 16 गाने इस गाने की इबारत से मिले हैं, तो बहुत करीब पहुंच चुकी हैं वो। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भाई घर से बाहर तो आज नहीं निकल सकते क्योंकि आज हम सुरीला सफर सुन रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि हम तो अभी घर पर ही हैं, निकलेंगे तो रौनक देख लेंगे, घनश्याम भाई का नाम भी है इस गाने में। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि न्यू दिल्ली फिल्म का ये गाना शंकर जयकिशन का संगीत है। एक और श्रोता है जो देर से जुड़े हैं लेकिन इस कार्यक्रम में उनको बिल्कुल मजा ही आ गया है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बारिश भी ऐसा ही कह रही है कि भाई अरे भाई निकल के आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से। तो ये किशोर कुमार का जादू है। और अब जो गाना आ रहा है वो किचन में खाना पकाते हुए फिल्माया गया गाना है, और आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि किचन में खाना पकाते हुए सबसे बड़ा ब्लंडर आपने जो किया था वो क्या था और कब किया था, क्या पका रहे थे आप?
1: फूंक फूंक कर चूल्हा,

बोल मेरे दुखिया मन कब तक, ये चूल्हा ये चौका ये झाड़ू ये बर्तन ये आटा बटाटा ये गड़बड़ गुलाटा और ये और वो और घर तेरी की, पर सब दिल हो तन एक समान पंछी काहे होत उदास। एक

रहेंगे ये घास, भला कब तक हम खाते रहेंगे ये घास, सुखी सुखी घास, छी छी सड़ी सड़ी घास, तेरा सत्यानाश सत्यानाश सत्यानाश, रुखी सुखी रो।

हमार दिन होंगे गरीबी के जिस दिन खलास गरम गरम गरम गरम कचौरी पूरी खूब तलेगी गरम गरम कचौरी पूरी खूब तलेगी बड़ी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी बड़ी दुनिया जो देखेगी है बड़ी दुनिया।

भाई बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं और इस तेजी के साथ स्क्रीन स्क्रॉल कर रही है कि समझ नहीं आ रहा किसने क्या लिखा है। एक श्रोता है जो ये कहते हैं क्यों ना रोटियों का हम पेड़ लगा लें, आम तोड़ें, रोटी तोड़ें, रोटी आम खा लें। वाह भाई वाह वाह वाह वाह। यहां मुझे लगता है कि ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि ये जो शैलेंद्र के बोल कोट किए हैं इन्होंने, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़ें, रोटी तोड़ें, रोटी आम खा लें, ये किशोर कुमार का गाया हुआ एक गाना है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये कौन सा गाना है? जिन्होंने पोस्ट किया वो प्लीज मत बताइएगा। एक और श्रोताएं जो कहती हैं कि 19 गाने हैं आज की इस इबारत में, एक श्रोताएं जो कहती हैं कि आज की इबारत में 20 गाने हैं, एक श्रोता नाराज हैं कि सुरीला सफर की पोस्ट आते ही अपने विचार व्यक्त करता हूं पर आपको अपने सवालों में ही दिलचस्पी रहती है, शायद इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करके हमने गलती कर दी है। भाई आपका कमेंट दिखानी, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं के कमेंट्स शामिल करने की कोशिश करते हैं और देखिए कि लगातार कमेंट्स पढ़ रहे हैं गानों के बीच में। ये कमेंट दिखा और फौरन पढ़ा, एक श्रोता है जिन्होंने गाजर का हलवा बनाया और दूध की बजाय चावल पता नहीं क्या उन्होंने जोड़ दिया और हलवे की बैंड बज गई। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रही हैं कि उन्होंने चाय में नमक डाल दी थी और मेहमानों को परोस भी दी थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रही हैं कि कुछ कुकर में खिचड़ी बन रही थी, गैस चूल्हे पर रखकर भूल गया, उसका ढक्कन उड़ा, खिचड़ी जाकर दीवारों और छत पर लग गई, हे भगवान। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि पहली बार जब आटा गूंधा तो ढेर सारा पानी डाल दिया था और एक ही बार में वो गीला हो गया था। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि इस गाने के साथ मेरा भी एक किस्सा है। वैसे तो कभी कभी पापा छुट्टी के दिन खाना बना देते थे और उस दिन यही गाना गाते थे, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि हमारी दाल तो गल गई है और अब हम रोटी पका रहे हैं, वही वाह। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि भाई 18 गाने आज के इस कार्यक्रम में, आज की इस इबारत में है और ये जो किचन के ब्लंडर्स हैं ये पढ़कर बड़ा ही मजा आ गया। बल्कि एक और मजेदार किस्सा ये हुआ है कि के मुंगोचो घनश्याम जी, इस तरह की जो पंक्ति है अरे भाई निकल क्या घर से वाले गाने में, तो बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिनका नाम घनश्याम है, उनको बड़ा मजा आ गया आज के कार्यक्रम में इस गाने की इस लाइन को सुनकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और किशोर का एक और हुड़दंगा गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम आप बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आज इतने सारे हुड़दंगे गाने जो हमने बजाए उसमें से आपका पसंदीदा कौन सा गाना था, और अगर कोई भयंकर हुड़दंगा गाना हमने मिस कर दिया तो वो भी बता दीजिए।

बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए। एक श्रोता लिखती हैं कि भाई जरूरत है एक श्रीमती की, ये गाना नहीं बजाया गया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं, प्रिय प्राणेश्वरी को मिस कर रही हूं, इसके अलावा झुमरू गाना नहीं बजाया गया। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है, पर एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी तोड़े रोटी आम खा लें, ये गाना मुसाफिर फिल्म के गाने की पंक्तियां हैं। मुन्ना बड़ा प्यारा ये गाना है जिसमें इतनी सुंदर पंक्तियां आती हैं। शैलेंद्र लिखते हैं कि एक दिन वो माँ से बोला, क्यों फूकती है चूल्हा, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी आम खा लें, काहे कले लोज लोज तू ये झमेला, अम्मी को आई हंसी, हंस के वो कहने लगी, लाल मेहनत के बिना रोटी किसके घर पर पकी। ये है जादू गीतकारी का, ये है जादू शैलेंद्र का। किशोर कुमार का एक बहुत ही प्यारा गाना और उसकी बहुत प्यारी पंक्ति। शुक्रिया जिस भी किसी श्रोता ने इसका जिक्र किया है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि भाई चलते चलते ये ज़रूर बता दीजिएगा कि कुल कितने गानों से आपने इबारत सजाई थी। बहुत सारे श्रोता अलग अलग आंकड़े लिख रहे हैं, तो मैं कहूँगा तकरीबन 18 गाने तो मुझे ही नज़र आए थे। और आप लोग ढूंढ लीजिएगा क्योंकि अलग अलग शब्दों से भी गाने सज जाते हैं। तो बहुत सारे श्रोताओं को आनंद आ रहा है और खाना पकाते हुए दाल गलेगी जैसे गाने सुनते हुए किसी के दाल चावल बन गए, किसी की रोटी और किसी की हैदराबादी बिरयानी। और कार्यक्रम का आखिरी गाना, फिल्म का नाम बताइएगा और साथ में देखिए संगीतकार भी यहां बदल जाते हैं। और ये भी कि इस गाने के जरिए दुनिया को देखने की नई नजर आपको मिलेगी। सुरमा में

0: भाई आज के कार्यक्रम का वक्त यहीं खत्म हुआ। हमने किशोर कुमार को सेलिब्रेट किया और धमाधम सेलिब्रेट किया। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको बहुत पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया और किशोर कुमार की याद को हम नमन करते हैं। किशोर दास जिंदाबाद।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

ज़माना दीवाना फिल्म का नगमा आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ है विनोद राठौर की, गीत समीर का और तर्ज बनाई नदीम श्रवण ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। संसद के मानसून सत्र के बीच आज एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह समेत गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। एनसीपीआई सांसद सुदीप बंदोपाध्याय पहली बार इस बैठक में पहुंचे और उन्होंने पार्टी की एकजुटता का दावा किया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने सांसदों को सरकार की प्रमुख योजनाओं और हालिया मुक्त व्यापार समझौतों की जानकारी भी दी। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ज्ञान और निरंतर प्रयास का संदेश देते हुए एक संस्कृत श्लोक साझा किया। उन्होंने लिखा कि लगातार मेहनत और साधना से प्रतिभा निखरती है और आज देश के युवा इन्हीं गुणों के दम पर दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गीता का श्लोक साझा करते हुए ज्ञान को सबसे पवित्र बताया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज निवेश मिशन के तहत मुंबई दौरे पर रहेंगे। वे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दूरसंचार क्षेत्र के निवेशकों के रोड शो और बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान ग्वालियर में प्रस्तावित देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए निवेश आकर्षित करने पर जोर रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव निवेशकों को प्रदेश की औद्योगिक नीतियों और निवेश के अनुकूल माहौल की जानकारी भी देंगे। प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को आधुनिक और रोजगार से जोड़ने की दिशा में आज भोपाल में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का उद्घाटन राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ, जबकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर राज्यपाल डॉ. मंगूभाई पटेल ने कहा,
1: आज की यह कार्यशाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रभावी क्रियान्वयन तथा विकसित भारत 2047 की राष्ट्रीय संकल्प को गति देने का महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें उपस्थित सभी कुलगुरु, प्राचार्य, शिक्षाविद, विशेषज्ञ, अधिकारी तथा प्रतिभागियों का सहभागिता ज्ञान आधारित भारत के निर्माण के लिए जरूरी है।
0: इस कार्यशाला में देश भर के शिक्षाविद, वैज्ञानिक, उद्योग विशेषज्ञ और विश्वविद्यालयों के कुलगुरु शामिल हो रहे हैं। कार्यशाला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग, हरित ऊर्जा और कौशल विकास जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। प्रदेश में करीब 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सितंबर में छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। सरकार के इस आश्वासन के बाद अदालत ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। चुनाव होने से प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लाखों विद्यार्थियों को अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। सरकार ने सभी जिलों में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के दौरान तिरंगा यात्रा, बाइक रैली, रंगोली प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति से जुड़े कई आयोजन होंगे। लोगों को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी जिले में जुलाई से शुरू हुई खरीदी प्रक्रिया के तहत अब तक 7 निर्धारित उपार्जन केंद्रों के जरिए 2118 किसानों से कुल 7022 क्विंटल से ज्यादा मूंग की खरीदी की जा चुकी है। नर्मदापुरम समेत प्रदेश भर के जिलों में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम जीवन की स्थायी शुरुआत के लिए स्तनपान, जो कारगर है उसे मजबूत करें रखी गई है। और शिवपुरी जिले में आमजनों की समस्याओं के निराकरण के लिए 7 अगस्त से 8 जनवरी तक मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान चलाया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार, तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी, और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सदन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
3: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। 0 आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
4: MSMEs have actually benefited.
5: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल DMK के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
6: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, GDP ग्रोथ के बारे में।
0: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
7: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
8: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
0: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्री रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की CBI जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
9: ओडिशा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है, क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है, जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। IMD ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
10: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री VD सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम स्मिति एम पुलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे NewsOn AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज दलदमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज दलदमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ये घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिण किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाघ जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले फरेब फिल्म का गाना मजरू सुल्तानपुरी के बोल अनिल बिस्वास की तर्ज है।

0: छोड़ो अब क्या कहना है।
1: विविध भारती से आप सुन रही हैं सदाबहार नगमे। अगला गाना फिल्म जालसाज से है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल एन दत्ता की तर्ज, किशोर कुमार के साथ आशा।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश मन मंदिर फिल्म का गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, गीत राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: की सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। और मेरे सामने हंसती मुस्कुराती सी प्यारी सी हमारी सखी बैठी है
1: आरती श्रीवास्तव। तो सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: कैसी हो?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
0: लग रही हो?
1: जी
0: बिल्कुल। सावन का महीना लग गया है और वो जो चेहरे पर चमक आ जानी चाहिए इस मौसम में वो तुम्हारे चेहरे पर भी दिख रही है।
1: बिल्कुल। और जो शहर है वहाँ पे तो इतना पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम गांव वगैरह में जाएं तो वहाँ पे सावन के साथ में झूले जुड़े होते हैं, साथ में मेहंदी जुड़ी होती है, बहुत सारी चीजें श्रृंगार की जुड़ी होती है महिलाओं के।
0: हाँ, क्योंकि महानगरीय जो व्यवस्था है उसमें आदमी सुबह निकलता है और शाम को आता है, उसे शायद पता ही नहीं चल पाता कि प्रकृति उससे क्या कह रही है ना। लेकिन छोटे शहरों में, गांवों में, ढाणियों में, खलिहानों में, वहां इस बात का भरपूर आनंद उठाया जाता है कि भई श्रावण मास आ गया है या कोई नया महीना आ गया है और उस माह में क्या क्या किया जाना चाहिए। तो अब सावन की जब ऋतु आ गई है तो लोगों के चेहरों पर हंसी आ गई है। आपने जैसा कि कहा झूले झूलने के दिन आ गए हैं और मेहंदी तो वैसे कभी भी लगाई जा सकती है, लेकिन इस श्रावणी तीज पर खासतौर से जब मेहंदी लगाई जाती है और रक्षाबंधन का जब त्योहार आता है इस माह में, तो सोचिए कितना प्यारा समय होता है, वो उत्सव का समय कितना खास होता है।
1: बिल्कुल। ये जो सावन का महीना होता है ना, पूरा उत्सव से ही भरा होता है।
0: हाँ।
1: बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई जाती हैं, खाए जाते हैं पकवान अच्छे से अच्छे, और साथ ही जो मन होता है ना एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि हर तरफ हरियाली होती है पानी बरसने की वजह से। हर छोटी छोटी जो जहाँ पे झाड़ियां जो एकदम सूख गई होती है वो भी एकदम हरी भरी हो जाती है, और साथ ही जो खासकर जो महिलाएं वगैरह है वो इसमें बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है।
0: हाँ,
1: तरह तरह की उनके कार्यक्रम होते रहते हैं कि आज ऐसे हमें करना है, इस तरह से मनाना है।
0: और पता है इस मौसम में मन का रेगिस्तान भी हरा हो जाता है और दो प्रेमी दिल भी जवान हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल। और सावन के की खासियत यही है कि आपको हरा भरा कर देता है।
0: बिल्कुल। तो आज के विषय बता दें ताकि हम सावन का आनंद थोड़ा सा और उठा लें।
1: बिल्कुल। आज हम लेके आए हैं विषय, आज हम बात करेंगे अफवाहों से रहें सावधान, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अफवाहों की वजह से
0: संबंध खराब हो जाते हैं
1: और जो शांतिपूर्ण माहौल होता है ना वो बिगड़ जाता है।
0: बिल्कुल। और संबंध भी खराब हो जाते हैं जब आप किसी की अफवाह उड़ाते हैं और आपको पता चलता है कि भाई आरती ने मेरे बारे में ये बात कह दी है और वो अफवाह है, तो मेरा तुमसे संबंध खराब होना लाजिमी है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो ये सब चीजें भी होती है, इसलिए अफवाहों से हमेशा रहें। और कान की कच्चे कहावत है उसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए कि कान के कच्चे कभी ना हो। आपसे किसी ने कोई बात कही या आप तक कोई बात पहुंची तो उसके लिए आप उन

0: लोगों से बात करें
1: बिल्कुल,
0: कि क्या ऐसा कुछ कहा गया, ऐसा कुछ बात हुई है जो इस तरह से माहौल को बदल रही
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल, उसकी आप जांचें उसे परखें। और साथ ही अगर बहुत बड़ी चीजें हैं, जैसे कि कोई कभी कभी होता है ना कि सोशल मीडिया पे हम कोई चीज मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, तो ये सब करते समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए,
0: रखना पड़ता
1: क्योंकि ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं।
0: बिल्कुल।
1: और आज हम वैसे बात करेंगे मुहावरों के लिए, मुहावरों की दुनिया में आज हम बात करेंगे। 1 से 21 होना,
0: अरे 1 से 11 होना तो हमने सुना है,
1: ये अलग है,
0: 1 से 21 होना और भी बड़ी बात है।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए इस पर ही हमारे श्रोता, हमारी सखी और सखा इस पर विचार भेजेंगे।
1: बिल्कुल, वो अपने विचार भेजें कि वो इस मुहावरे को किस तरह से समझते हैं,
0: देखते हैं।
1: बिल्कुल। और साथ ही वो किस तरह से इसको अपने जीवन में उतारते हैं, वो क्या समझते हैं इस चीज से, इस मुहावरे से। और साथ ही हम बात करेंगे हल्की फुल्की बातें के अंतर्गत बचपन की जो यादगार हमारी शरारत होती है। वैसे तो बचपन ही यादगार रहता है पूरा, लेकिन कुछ शरारतें ऐसी होती है ना
0: जो
1: बिल्कुल याद रह जाती है।
0: तो कई बार हमारे माता पिता भी बताते हैं कि पता है जब ये छोटी थी, ये जब छोटा था तो बचपन में ऐसे करता था, इसने ऐसे कर दिया, है ना। तो बच्चों की बहुत सारी शरारतें हमें याद रह जाती हैं।
1: बिल्कुल। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अपने अपने आप शरारतें हमें बिल्कुल साझा करने में हिचकिचाइए नहीं, क्योंकि हम उसको सबके साथ में बातें करेंगे, हम भी अपनी शरारतें बताएंगे, तो अच्छा लगता है ना एक दूसरे के बारे में जानना।
0: यहाँ आरती में एक बात कह देना चाहती हूँ श्रोताओं से, हमारी सखियों और सखाओं से, कि वो बचपन की यादगार शरारत पर बंद नहीं लिखा कि वे बचपन में शरारत करते हैं, ये नहीं। आपने क्या शरारत की, आपको याद है या आपके बच्चे क्या शरारत करते हैं,
1: बिल्कुल
0: ये आप लिख सकते हैं।
1: अपना अपना बचपन या अपने बच्चों का बचपन, आप किसी का भी, या अपने पोते पोतियों का बचपन,
0: या आपके पड़ोस के बच्चे हैं, या कोई आपके घर में बच्चा आया है उसकी कोई याद आपको कि वो बच्चा इतना शरारती था और अब देखिए वो बड़ा होकर इतना डिसेंट बन गया है।
1: जी बिल्कुल। और आज हम सखी विशेष के अंतर्गत बात करेंगे मल्लिका सदानी जी की, जो संस्थापक है मॉम्स कंपनी की,
0: उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब सावन
1: को एंजॉय, आनंद उठाते हैं।
0: हाँ चले करें।
1: बिल्कुल।

0: तो कितना प्यारा गीत, सावन तो आ गया है और खैर सावन का इंतजार हम सभी को रहता भी है। और जब मौसम की बात चल रही थी तो हमें लगा कि आरती का जो चेहरा है वो बिल्कुल गुलाबी हो गया था, सावन की फुहारों से बहुत ही खुश नजर आ रही थी। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है आरती कि हम प्रकृति से बहुत खुश होते हैं, प्रकृति के माहौल में रमे होते हैं, लेकिन अचानक कई बार हमें लगता है कि कुछ ऐसी बातें जिंदगी में हमने सुन ली हैं या कुछ ऐसी बातों से घिर गए हैं जो सच नहीं होती हैं, झूठ के करीब होती हैं, जिन्हें हम अफवाह का नाम भी दे सकते हैं
1: जी।
0: तो और हम दुखी भी हो जाते हैं
1: बिल्कुल,
0: कि अरे हम किस दुनिया में फंस गए, या ये क्या हम सुन रहे हैं अपने बारे में या किसी और के बारे में, तो हमारा मन थोड़ा सा उद्विलित हो जाता है।
1: बिल्कुल, और वैसे भी ये जो युग है वो संचार का युग है, और मोबाइल फोन हो या सोशल मीडिया हो, और इससे कोई भी जानकारी जो है वो छुपी नहीं रहती है, और पल भर में कोई भी जानकारी हो, चाहे वो सच हो या झूठ हो, पूरी दुनिया में फैल जाती है। और लेकिन इस आधुनिक सुविधा के साथ में एक बड़ी समस्या भी है कि हम जो अफवाहें उससे बच नहीं पाते हैं। हमें जितनी सुविधा मिलती है फोन के जरिए, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पूरी दुनिया तक पहुंच बना सकते हैं, लेकिन वो पहुंच कभी कभी जो है ना हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान वाली भी बन जाती है, क्योंकि उससे अफवाहें फैलने का डर रहता है, और अफवाहें जब फैलती हैं तो बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं, कुछ कभी कभी दंगे भड़क जाते हैं या कुछ तरीके की चीजें होती हैं,
0: बिल्कुल सही,
1: ऐसे हादसे हो जाते हैं
0: कि बिना सत्यता के जो फैलाई गई झूठी या भ्रामक जो जानकारियां हैं वो केवल न केवल लोगों को भ्रमित करती है, बल्कि कई बार हमारे मन में भय, तनाव, हिंसा और अविश्वास का कारण भी बन जाती है। और अफवाहें जो है अक्सर जो है आधी अधूरी जानकारी कहें या झूठे संदेश हैं या संपादित तस्वीरें हैं या पुराने वीडियो या मनगढ़ंत कहानियों के रूप में फैलाई जाती है।
1: बिल्कुल, और इस तरह से उनको दिखाया जाता है या बताया जाता है कि वो पहली नजर में हमें एकदम सच लगती हैं, और लोग बिना जांच पड़ताल किए इन्हें आगे भेज देते हैं, और देखते ही देखते एक झूठ लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। और अफवाहों का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो समाज की एकता और आपसी विश्वास को भी कमजोर करती हैं।
0: बिल्कुल, कई बार किसी व्यक्ति की बात करें, समुदाय की या संस्था के बारे में जब गलत जानकारी फैलाकर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जाती है, तो स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदा, कानून व्यवस्था का या आर्थिक मामलों से जुड़ी अफवाहें लोगों में घबराहट और गलत निर्णयों को जन्म भी दे सकती हैं। आरती,
1: बिल्कुल, और इस डिजिटल युग में देश के हर नागरिक की अपनी खुद की एक जिम्मेदारी है कि वो एक जागरूक और जिम्मेदार इंटरनेट उपयोगकर्ता बने। कोई भी संदेश, वीडियो या समाचार मिलने पर उसे तुरंत आगे भेजने के बजाय उसके स्रोत की विश्वसनीयता को अच्छी तरीके से आप पहले जांच लें, परख लें, उसके बाद ही उसको आप आगे भेजें।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि अगर किसी समाचार की पुष्टि विश्वसनीय समाचार माध्यमों से या संबंधित सरकारी विभागों से नहीं होती है तो उसे आगे नहीं भेजना है। हम क्या करते हैं, तुरंत आगे भेज देते हैं। हमें लगता है पता नहीं हम क्या भेजकर क्या संदेश दे देंगे या क्या क्रांति ऐसी बना देंगे, लेकिन सनसनी फैलाने वाले जो शीर्षक हैं, भावनात्मक संदेश हैं, हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि आधिकारिक जो वेबसाइट्स हैं और विश्वसनीय समाचार स्रोत हैं उनसे हम पुष्टि करें कि भाई ये जो न्यूज़ है, ये जो समाचार है, ये जो संदेश हमें भेजा गया है वो सही है भी या नहीं।
1: बिल्कुल, और क्योंकि ये भ्रामक जो खबरें होती हैं उससे समाज में डर फैलता है, अराजकता, और साथ ही कई बार कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है कि किस तरह से हम उस जगह को शांति उसको बना के रखें। तो जरूरी है कि हम इस तरीके की अफवाहों से बचें, और

0: आने का काम ना करें उनको।
1: हाँ, आपको पता है इस तरह की अफवाहों से केवल नफरत का माहौल पैदा हो जाता है। हम इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं और हमें पसंद भी है कि हम एक अच्छा माहौल अपने आसपास बना के रखें, लेकिन इस तरह की अफवाहों से कई बार नफरत पैदा हो जाती है लोगों के मनों में। इससे हमें बहुत बचना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी सावधानी जो है समाज को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकती है। इसलिए न तो खुद अफवाहों पर विश्वास करें और न ही इन्हें फैलाने का हम खुद माध्यम बने। और जो भ्रामक खबरें हमें मिलती हैं उससे समाज में डर और अराजकता बिल्कुल नहीं फैलानी है। कई बार ऐसी बातें कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट भी खड़ा कर देती हैं।
0: बिल्कुल। और हमारे जो साथी हैं वो भी बहुत कुछ लिख रहे हैं इसके बारे में। तो हम एक हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि सत्य के विपरीत असत्य में गिने जाने वाले अफवाहें फैलती नहीं है, अभी तो ऐसा लगता है कि वो फैलाई जा रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अफवाह के मूल तक पहुंचने की आवश्यकता पड़ती है और उनके स्वरूप के तह तक जानने के लिए हर एक को अपनी बौद्धिक क्षमता और विवेक का प्रयोग करना चाहिए और उसके अनुसार ही आचरण करना अपेक्षित है और ऐसी अफवाहों से बचना ही श्रेयकर है।
1: बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी खबर या संदेश को आगे भेजने से पहले उनकी विश्वसनीय स्रोत की जांच जरूर करें। सकारात्मक दृष्टिकोण अफवाहें अक्सर समाज में अशांति और तनाव पैदा कर देती हैं। इनसे दूर रहकर मानसिक शांति बनी रह सकती है। एक जागरूक नागरिक के रूप में बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो, फोटो या टेक्स्ट को शेयर करने से हमें बचना चाहिए। गलत और भ्रामक जानकारी फैलाना कानूनन अपराध है, जिसके लिए जेल या जुर्माना हो सकता है।
0: बिल्कुल। एक हमारे साथी जो कहते हैं कि सावधान रहिए और किसी भी संदेश या खबर को आगे भेजने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। सरकारी वेबसाइट्स या भरोसेमंद समाचार चैनल की जानकारी की सत्यता परखें और बिना सोचे समझे किसी भी बात पर गुस्सा ना करें या डरें नहीं। जिस खबर के सच होने का पक्का सबूत हो और ना हो उसको आगे ना भेजें।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि सावधान रहना अच्छी बात है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा सावधान रहने लगते हैं तो स्थिति जटिल हो जाती है। ज्यादा सावधानी रखना आपको परेशान भी करता है और आपको भी देता है। लेकिन हाँ, अफवाहों से रहें सावधान। भाई, सत्य के विपरीत असत्य में गिने जाने वाली अफवाहें फैलती नहीं, अपितु ऐसा लगता है कि वो फैलाई जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अफवाह के मूल तक पहुंचने की जरूरत पड़ती है और उनके स्वरूप के तह तक जानने के लिए हर एक को अपने बौद्धिक क्षमता के विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें हम तक पहुंचाई हैं।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी जो कहते हैं कि अपने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और जो अफवाहें हैं वो अक्सर समाज में अशांति और तनाव पैदा करती हैं और एक जागरूक नागरिक के रूप में बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो, फोटो या टेक्स्ट को शेयर करने से बचना चाहिए और गलत और भ्रामक जानकारी फैलाना कानून अपराध है, जिसके लिए जेल भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा है। तो हमारे श्रोताओं ने अपनी राय हम तक पहुंचाई और वाकई अफवाहें फैलाना बहुत ही बड़ा एक अपराध है जो समाज में गलत माहौल पैदा कर देता है। चलिए, हम तो गीत संगीत के जरिए एक अच्छा माहौल पैदा करते हैं। हाँ, इस कार्यक्रम में
0: गीत सुनते हैं।

0: लगता है आरती आज तुम पूरी तरह से सावन में भिगोने वाली हो। सावन की जो बरसात है वो स्टूडियो में भी होने लग रही है ना
1: जी। और अब हम बात करते हैं अपने अगले विषय की, जो है सखी विशेष, जिसके अंतर्गत हम किसी एक महिला की बात करते हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे अपनी एक पहचान बनाई है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मल्लिका सदानी जी की।
0: तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हम किसी एक महिला की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन इस एक महिला के बहाने हम उन हजारों महिलाओं को सैल्यूट भी कर लेते हैं जो इस तरह से अपने आप को हिम्मत के साथ आगे बढ़ा रही हैं।
1: बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी ही महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बेटी को स्किन की बीमारी से बचाने के लिए, यानी अपनी अपनी बेटी को त्वचा की बीमारी से बचाने के लिए एक कंपनी की शुरुआत की और आज वो कंपनी करोड़ों की बन गई है। इन्होंने ये बात सच कर दिखाई है कि जब बच्चों के ऊपर कुछ परेशानी आती है तो माँ बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी लड़कर रास्ता निकाल लेती है।
0: क्या बात है, बहुत खूब बात कही आपने। और माँ तो हर तकलीफ की दवा है, माँ से बड़ा कौन हो सकता है। और जब हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास परिवार में जन्मी मल्लिका सदानी की, एक सैन्य परिवार में थी वो, पली बड़ी। मल्लिका का जो जीवन था आरती अनुशासन से बंधा हुआ था और उनके पिता जो एक मेजर जनरल थे, उन्होंने उनमें एकाग्रता और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने की शक्ति का संचार किया और गृहिणी माँ ने शिक्षा को सर्वोपरि माना भी
1: जी। और उन्होंने राजस्थान के कोटा से 12वीं की और उसके बाद फिर पुणे के कॉलेज से इंजीनियरिंग पूरी की। इसके बाद वो एमबीए करने मुंबई चली गई और एमबीए करने के बाद एक जाने माने बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर उनकी नौकरी लग गई। उसके बाद 2008 में उनकी शादी मोहित सदानी से हुई और शादी के बाद वो पति के साथ लंदन शिफ्ट हो गई।
0: हाँ, लेकिन जब उनकी बेटी एक साल की थी तब साल 2012 में वो इंडिया वापस भी आ गई। भारत पहुंचकर उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी बेटी को अति संवेदनशील त्वचा होने की वजह से समस्याएं होने लगी हैं। और इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने अपनी बेटी के लिए लंदन से ही उत्पाद मंगवाए, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था
1: जी। और क्योंकि लंदन से आने वाले को ना दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद लेना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं था। जब उनकी बेटी जो थी, उसका छोटी बेटी का जन्म हुआ, तब उसे सांस की बीमारी होने के कारण कई उत्पादों का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। और अपनी बेटी के लिए उन्होंने कई सारे उत्पादों को परख कर देखा जिनमें खुशबू ना आती हो, जिनकी खुशबू उनकी बेटी को उनकी बीमारी को और ना बढ़ाए।
0: बिल्कुल सही कहा जी। और हालांकि उन्हें ऐसे उत्पाद नहीं मिले, लेकिन उन्होंने खुद नए उत्पाद बनाने का निर्णय ले लिया ऐसी स्थिति में, और ऐसे उत्पाद में हानिकारक रसायन नहीं हो और जो बच्चों के लिए एकदम सुरक्षित हो, इसके लिए उन्होंने लगातार शोध करना शुरू किया। साथ ही इस शोध कार्य के लिए वो दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों से भी मिली।
1: बिल्कुल। और लगातार शोध और वैज्ञानिकों के सुझावों को प्राप्त करने में उन्हें 2 साल का समय लग गया और साल 2016 में उन्होंने अपने पति के साथ स्किन केयर ब्रांड की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने रखा था अमीशी कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, लेकिन 2017 में इसका नाम बदलकर द मॉम्स कंपनी कर दिया गया। और उनकी कंपनी के द्वारा बच्चों की स्किन को ध्यान में रखकर ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं जिनमें हानिकारक रसायन ना हो,
0: जो पूरी तरह से प्राकृतिक हो ना
1: जी। बिल्कुल। और ताकि बच्चों की जो स्किन है, जो उनकी त्वचा है, जो बहुत ज्यादा एकदम मासूम त्वचा होती है, वो प्रभावित ना हो। मल्लिका सदानी को उनके नवाचार और नेतृत्व के लिए अनेक सम्मान मिले, जिनमें प्रमुख हैं टाइम्स शी अनलिमिटेड एंटरप्रेन्योर अवार्ड, बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40 वुमेन एंटरप्रेन्योर और साथ ही मॉम्स कंपनी को फोर्ब्स इंडिया बेस्ट D2C ब्रांड सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए।
0: क्या बात है। और महिला मल्लिका सदानी का जो बैंकर से एक सफल उद्यमी का सफर था वो आसान नहीं था आरती, इतना मुश्किल काम था। और पहले से जो ब्रांड्स थे उनके बीच अपनी पहचान बनाने जैसी कई चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, लेकिन इन सब के बाद भी सफल महिला उद्यमी का खिताब उनके नाम हुआ और आज उनका नाम देश की सफल महिलाओं में लिया जाता है और आज वो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है।
1: बिल्कुल। अपने बच्चों के लिए जो उन्होंने शुरुआत करी थी आज वो बहुत ज्यादा फल फूल रही है।
0: सोचिए कितने बच्चों को इससे लाभ हुआ है ना, कितनी माताएं अपने बच्चों को उस बीमारी से बचा पाएंगी जिस बीमारी से इन्होंने अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा शोध किया और इतनी बड़ी सफल उद्यमी बन गई। चलिए गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।
2: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: 4 औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं
2: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
2: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: तो आरती तुम चौंक गई ना
1: क्योंकि गीत गीत गीत गीत आप एकदम से आपने मुझे चौंका दिया।
0: हाँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण संदेश था जिसे हमें बजाना बहुत जरूरी था, और हमने सोचा पहले इसे बजा लेते और आप सुनते हैं गीत
1: जी।

0: तो इस अंतराल के बाद हमारी सभी सिक्योर सखाओं का एक बार फिर से स्वागत है।
1: जी, और अब हम बात करें थोड़ी बचपन की।
0: अरे, बचपन की बातें तो हम हमेशा ही करते हैं।
1: वो बचपन का जमाना जब हम शरारतें किया करते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज तो आपने एक इतना खास विषय हमारे श्रोताओं के लिए चुना है कि हल्की फुल्की बातें भी हो जाएंगी और बचपन की यादें भी ताजा हो जाएंगी, है ना।
1: और हमारे साथी भी तो कितने अपने बचपन की जो किस्से हैं वो हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, साझा करें उन्होंने बहुत
0: तो
1: सारे।
0: आपने उनसे अनुरोध किया था ना कि भाई आप इस पर निबंध नहीं लिखेंगे बल्कि ये बताएंगे कि बचपन में हम क्या शरारतें किया करते थे या हमारे बच्चों ने क्या क्या शरारतें की। तो उन्होंने लिखकर आपको दिया है, पढ़ते हैं हम क्या हमारे श्रोता चाहते हैं, आज क्या लिखा है उन्होंने हमारे लिए।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि बचपन की यादगार शरारत। भाई, बचपन तो हर गम से बेगाना होता है और हम उस बेगानेपन में स्वयं को देख भी कहाँ पाते हैं। और वैसे भी कोई भी अभिनेता या और अपने अभिनय को अभिनय करते समय देख भी पाता है भला। अरे, उस काल में ही नहीं अपितु हर काल में अभिनेता के अभिनय को दूसरे ही देखते हैं। इस दृष्टिकोण से हम लोग जब अपने बाल बच्चों के अभिनय को देखते हैं तो उसमें स्वयं को ढूंढते हैं। ये तो सही कह रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि अब आप सबको अपने बचपन की दिलचस्प और मजेदार यादगार किस्सा बताता हूँ। हुआ यूं कि मैं स्कूल जाने से बहुत कतराता था। बड़ी मुश्किल से माँ हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ भी आती तो स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जल्दी से घंटी बजे और छुट्टी हो, बस इस बात का इंतजार रहता था। एक दिन तो हद ही हो गई, समय जैसे ठहर ही गया। घंटी बजे ना छुट्टी हो तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं छुट्टी होने से पहले ही बस्ता लेकर चुपके चुपके कक्षा से बाहर निकलता हूँ और स्कूल की घंटी और लकड़ी की हथौड़ी जो जमीन पर पड़ी थी उठाई और अपने स्कूल के बैग में रख के घर ले आया और अपने घर पहुंचकर घंटी निकालकर बजाने लगा। मेरी माँ ने ये सब देखा तो हैरान होकर पूछा, ये सब क्या है, ये स्कूल की घंटी घर क्यों ले आए। मैंने बताया कि स्कूल की घंटी मतलब छुट्टी हो ही नहीं रही थी, स्कूल वाले इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ये बेकार जमीन पर पड़ी थी तो मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया हूँ। ये सुनते ही माँ ने घंटी की तरह मुझे भी बजाना शुरू कर दिया और घंटी को वापस स्कूल छोड़कर माँ मेरे द्वारा की गई शरारत के लिए अध्यापकों से क्षमा मांगकर घर को लौट आई।
1: भाई, बहुत बढ़िया शरारत है। तो और हमारे साथी जो लिखते हैं कि बचपन में तो हमने काफी शरारतें की हैं, किस किस के बारे में बताऊं। पर एक बार की बात है, मेरी मम्मी हम बच्चों को दादाजी के पास छोड़कर दादी माँ और बुआ के साथ मूवी देखने चली गई और हम लोगों को बचपन से ही फिल्म देखने का बहुत क्रेज रहा है। बस क्या था, हम लोग दादाजी को परेशान करना उन्होंने शुरू कर दिया। और तो और, मैंने अपनी बुआ का एक दुपट्टा लिया और अपने गले में बांध कर दादाजी को डराने लगी कि अगर मुझे फिल्म दिखाने नहीं ले जाएंगे तो मैं उससे अपने आप को बांध लूंगी। हालांकि दुपट्टा बहुत ढीला था, ढीला ही बांधता, पर दादाजी तो डर गए। फिर उन्होंने प्रॉमिस किया कि कल मैं तुम लोगों को फिल्म दिखाने लेकर जाऊंगा। फिर जब मम्मी आई तो मेरे दादाजी बोले, लो संभालो अपने बदमाश बच्चों को। लेकिन दूसरे दिन दादाजी हम लोगों को फिल्म दिखाने ले गए।
0: और वे एक श्रोता लिखते हैं कि साल 1962 के आसपास की बात है, हमारा सुथारी का काम वर्कशॉप हुआ करता था। सभी काम हाथ से मतलब औजारों से किया जाते थे। शीशम की लकड़ी को काटते वक्त जो भूसा यानी पाउडर निकलता था, जो पाउडर निकलता था वो चाय की पत्ती जैसा हुबहू लगता था। हम बच्चे उसे इकट्ठा करके न्यूज़पेपर काटकर भूसे से भरा मस्त पैकिंग जैसे दुकानदार करता है वैसा बना लेते थे। शाम ढलने या अंधेरा होने के समय घर नजदीक के रास्ते पर डाल दिया करते थे। उस रास्ते से जो लोग जाते थे उनकी नजर उस पर पड़ती तो वो चुपके से अपनी थैली में डालकर चल देते थे। तब उन्हें देखकर हमारी खुशी और हंसी का ठिकाना नहीं रहता था। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा।

0: कुछ दिनों के बाद हमारी शरारत की शिकायत पिताजी तक पहुंच गई। अच्छा। उन्होंने हम सभी बच्चों को साथ बुलाकर कड़ी डांट के साथ जो धुलाई की वो आज भी याद है। पहले तो माता पिता धुलाई कर दिया
1: बिल्कुल आराम से
0: और बच्चे भी खा लिया करते थे। हमने भी बहुत धुलाई हुई है हमारी भी, लेकिन मुझे याद है कि थोड़े समय बाद हम फिर से बच्चे बन जाते थे, कभी भी नाराज नहीं हुए, ना हमें माता पिता पर कभी गुस्सा आया।
1: बिल्कुल। अब एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन की यादगार शरारत मैं भी बता ही देता हूँ। बचपन में मैं और मेरे घर के पास एक चाचा हम उम्र हुआ करते थे। मैंने अपने छोटे भाई के साथ प्लान बनाया कि आज रात में जब चाचा सो जाएंगे तो उनकी चारपाई के पास भूत बनकर जाएंगे और उनको डराएंगे। गर्मी के दिनों में हम अक्सर घर के बाहर चारपाई डालकर सोया करते थे। रात को मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि मैं अपने चेहरे पर लाइट जलाकर आऊंगा, तुम उनकी चारपाई हिला देना, नीचे से लगेगा कि कैसे कि कोई भूत आ गया। लेकिन जैसे ही मैं दूर से सिर्फ अपने चेहरे पर लाइट जलाकर चाचा की चारपाई के पास जाने लगा तो मेरे छोटे भाई ने कोई हरकत नहीं की, वो चुपचाप बैठा रहा। मैं जब पास पहुंचा तो उससे पूछा कि तुमने चारपाई को हिलाया क्यों नहीं, तो छोटे भाई ने कहा कि आपको देखकर मैं खुद ही बहुत डर गया था, लगा कि सच में सामने भूत आ गया है। उस समय उसका डरा और सहमा हुआ चेहरा देखने लायक था। उस समय मुझे बहुत तेज हंसी आ गई और सच में बचपन की घटना मुझे अभी तक याद।
0: हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, कई बार हम कोई ऐसा स्वांग रच लेते हैं लेकिन हमारे छोटे भाई बहन जो होते हैं डर जाते हैं ना। हाँ, एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि हल्की फुल्की बातें बचपन की यादगार बात ये है कि मैंने एक शर्त की थी बचपन में जो बाद में मुझे और मेरे माता पिता दोनों को ही तकलीफ दे गई। एक जो मेरी गलती नहीं थी, एक जिसमें मेरी गलती थी, तो मैं आपको वो बताती हूँ जिसमें मेरी गलती ये थी जिसमें मेरी गलती नहीं थी, वो ये दोनों बातें बता रही है। उसमें ये हुआ कि मेरे पेट में अचानक से सीटी बजते बजते सीटी घुसे पेट के अंदर, लेकिन मतलब इस तरह का कोई उनको दर्द हुआ होगा, लेकिन भगवान की कृपा थी कि मैं बच गई। और एक जिसमें मेरी गलती थी कि मेरे ड्रेस में कुछ मोती लगे हुए थे, तो एक दिन हमें कहीं जाना था, ड्रेस पहनी हुई थी, मम्मी तैयार हो रही थी और मैंने क्या किया कि ड्रेस की मोती को निकालकर नाक में घुसा लिया और उसके कारण कई प्रकार के मतलब दिक्कत हो गई। नाक के अंदर जाकर वो फंस गया, मोती अटक गया कहीं और नाक के द्वारा हमें पता चला कि सब कुछ ठीक तो है, लेकिन उस समय मेरे माता पिता बहुत डर गए और आज भी मुझे ये बात याद आती है। बच्चे इस तरह का करते थे, पहले पेंसिल घुसा लेते थे, बर्तन नाक के अंदर डाल लेते थे, है ना, सिक्का भी कई बार गिटक जाते थे बच्चे, 1 रुपए का 50 पैसे का सिक्का या चवन्नी जिसे हम 25 पैसे कहते थे ना, कई बच्चे निगल गए। ऐसी स्थितियां भी कई बार स्कूल्स में टीचर्स को फेस करनी पड़ती है।
1: तो ये कभी कभी शरारतें बहुत भारी पड़ जाती
0: हैं। हाँ, शरारतें भी हो, कई बार नासमझी में भी बच्चा कर देता है और उसका भुगतान माता पिता को करना पड़ता है।
1: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि बचपन की वो बात याद आती है जब हम किसी के बागान और अहाते में फूल फल तोड़ लेते थे। सरकारी जो क्वार्टर होते थे उसमें बहुत सारे बगीचे में फूल लगे होते थे। हम लोग किसी के घर जन्मदिन में गए, सब लोग भीतर में कुछ तैयारी चल कर रहे थे और हम लोगों ने भर भर के फूल तोड़ लिए। अब उन फूलों को कैसे लेकर जाएं, उसे हम लोगों ने क्यारी में ही छुपा दिया। चलने के समय जब हमारे जो गार्जियन जो साथ में थे तो हम उसको नहीं ले पाए। दूसरे दिन बाबूजी जब शाम के टाइम में ऑफिस से लौटे तो उन्होंने शिकायत की, बच्चों ने फलाने जी के यहाँ से बहुत फूल और फल तोड़ के बर्बाद किए हैं। मार तो नहीं पड़ी बट डांट बहुत पड़ी और बाबूजी ने कहा कि तुम लोग कहीं भी ले जाने लायक नहीं हो। उसके बाद से हम कहीं जाते भी कोई जान पहचान फंक्शन में तो एक या दो भाई बहन ही जाते थे, मतलब सब लोग नहीं जाते थे क्योंकि सारे भाई बहन जब इकट्ठा हो जाते हैं ना तो शरारते
0: तांडव हो जाता है एक तरह से सभी बच्चों का। तो और माता पिता वाकई कहते थे कि भी नाक कटा दी तुमने ना,
1: हमारे करते हैं ना कि सबको मत लेके जाओ, एक आध
0: लेके जाओ। और उस घर में जो पीछे वाले बच्चे रोआ करते थे ना, वो भी दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है आरती
1: कि हमें नहीं लेके जा रहा
0: है। हमें नहीं लेके गए हैं। और कई बच्चे तो देखा सड़क पर ही लेट जाते थे जिद के कारण, ऐसे बच्चे भी देखे हैं जहाँ माता पिता बड़े शर्मिंदा होते थे कि बच्चे क्या क्या हरकत कर लेते हैं, लेकिन ये बचपन है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी बुआ का घर मेरे घर के ही पास था, उनका बेटा मेरे बराबर ही था, हमारे माता पिता ने हम दोनों को एक ही स्कूल में नाम लिखा दिया। हम दोनों का ही पढ़ने में मन नहीं लगता था, क्लास की खिड़की बड़ी और सीधी थोड़ा नीची थी, जब टीचर पढ़ा रही होती थी ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके तब हम दोनों उस खिड़की से बाहर निकल जाते थे, फिर इधर उधर घूमते थे, पकड़े जाने पर डांट खाते थे। वैसे भी हम दोनों अक्सर ऐसे ही बाहर बिना बताए निकलकर घूमा करते और फिर बहुत डांट खाया करते थे। लेकिन अब आपको लगता होगा ना कि वो शरारत आपको महंगी भी पड़ गई होगी, आपने पढ़ाई में ध्यान
1: नहीं दिया, डांट भी पड़ी होगी, कभी मार भी पड़ी होगी जी। अच्छा मंदाकिनी जी, हम लोगों ने बचपन की बातें बहुत की, एक गीत सुने
0: चलिए सुन लेते हैं।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: तो हमारे और श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती?
4: बहुत कुछ लिख रहे हैं। एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि एक पड़ोसी दादाजी के जी घर के बाहर ठेला गाड़ी पर रात को सोते थे। देर रात हम मोहल्ले के बच्चे जो होते थे उनका ठेला गाड़ी धकेल कर दूर छोड़कर आ जाते थे और सुबह नींद खुलती थी तो दादाजी ठेला गाड़ी वापस धकेल कर घर पर लाते और हमें बहुत ज्यादा बोलते थे।
3: बच्चे मन के सच्चे है ना, यूं ही नहीं कहा गया। बच्चे इतनी शरारत करने के बाद, जब कल परसों एक छोटी सी बच्ची से मिली, वो थोड़ी देर पहले तो बहुत तेज रोती भी आई और जस्ट 5 मिनट बाद वो उतनी ही तेजी से हंसती भी आई।

0: मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि देखिए बच्चे वाकई अद्भुत होते हैं, और तभी कहा गया है कि बच्चे मन के सच्चे, उन्हें पता ही नहीं कि अभी मैं पल पहले क्या कर रही थी 2 मिनट पहले और अब मैं किस रूप में आई हूँ। एक श्रोता लिखती है कि मुझे आज भी याद है, मम्मी जब भी बाहर जाती थी कहीं तो हमें जाने को बोलती थी, लेकिन हम सभी भाई बहन उनके साथ नहीं जाते थे। ऐसा इसलिए कि हम अकेले घर पर रहकर सभी अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ घर घर खेलते थे। लेकिन एक दिन खेल खेल में हमारे पड़ोस के एक बच्चे को मेरे बड़े भैया से आंख में कैंची लग गई। माँ तो घर में थी नहीं, अड़ोस पड़ोस के सभी लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए। समय रहते इलाज हुआ और आंख बच गई। माँ घर आई और सुना हम सभी भाई बहनों की समूह में कुटाई हुई, लेकिन जब पापा आए तो मेरा भाई जिसकी कैंची लगी थी उसकी एक्स्ट्रा कुटाई हुई। ये बात भी सही है, आज जब ये बातें याद आती है तो उस बच्चे को कैंची लगने वाली बात से दिल धक से रह जाता है।
1: जी बस बहुत ही ज्यादा कभी कभी खतरनाक हो जाती है।
0: हाँ, ये बात तो आरती हमारे साथ भी होती थी कि जब हम खेलते थे और गिर के आते थे तो हमारी माँ 2 थप्पड़ और लगाती थी, कितना मना किया था तुम्हें, फिर भी तुम कहना नहीं मानते।
1: बिल्कुल,
0: तो ये सब चीजें बचपन की हैं। और क्या लिखते हैं श्रोता?
1: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि 2 या 3 में पढ़ रहा था, गाँव के खेतों की पगडंडियों से स्कूल का रास्ता था और बड़े भाई साहब के साथ स्कूल जाते थे। माँ ने बताया कि एक बार स्कूल से घर आया तो मेरे दाहिने पैर का नाखून उखड़ा हुआ था और बहते खून को देखकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो तब मैंने अपने तोतले अंदाज में कहा भैया कहे दौड़ तो दौड़ा और गिर गया।
0: बिल्कुल, बचपन में तो गिरना और उठना यही है। और एक श्रोता लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे, न कोई फिक्र थी ना जिम्मेदारी थी, बस हर वक्त कोई न कोई नई शरारत सूझती रहती थी। आज बचपन की उन्हीं खट्टी मीठी यादों की गलियों में फिर से घूम आते हैं। घंटी बजाओ और भाग जाओ, डिंग डोंग डिच, ये हम सबका सबसे पसंदीदा खेल हुआ करता था। दोपहर के समय जब पूरा मोहल्ला सो रहा होता था तब दबे पांव किसी के घर जाना, जोर से घंटी बजा देना और फिर सांस रोककर ऐसे भागना जैसे पीछे पुलिस पड़ी हो। छुपकर मकान मालिक का गुस्सा देखना अलग ही रोमांच देता था। और नकली भूत का डर जो था डराना, कंबल या सफेद चादर उड़कर छोटे भाई बहनों को डराना, दोस्तों को डराना, कभी कभी खुद ही उस माहौल से डरकर मम्मी के पीछे छुप जाना, और स्कूल में चौक और डस्टर की चोरी, क्लास खत्म होते ही ब्लैक बोर्ड साफ करने वाला डस्टर छुपा देना या रंग बिरंग चौक के जो है जेब में भर लेना, तो लगता है जैसे बहुत बड़ा जो है खजाना हमारे हाथ में लग गया हो। तो ये बचपन की यादें इन्होंने साझा की है।
1: बिल्कुल, अब हम बचपन की यादों से बाहर निकले, थोड़ा
0: निकलना पड़ेगा और हमें मुहावरों की दुनिया में जाना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि हमने आज का मुहावरा रखा था 1 से 21 होना। अब 1 से 11 होना तो हमने बहुत सुना है।
0: बिल्कुल।
1: अब हम लेकर आए 1 से 21 होना।
0: हाँ,
1: तो यानी कि हमने उन्नति करी ना।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं,
1: ये उन्नति तो है। 1 से 21 होना यानी कि उन्नति करना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है?
1: हमारे श्रोता भी बहुत कुछ लिख रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि 1 से 21 होना अर्थ है बढ़ना, उन्नति करना या फलना फूलना, बहुत अधिक प्रगति करना या संख्या लाभ में वृद्धि करना। आम दैनिक जीवन में इसका उपयोग इसे आशीर्वाद के रूप में, तरक्की के रूप में करते हैं। और जैसे कि तुम पर कृपा बनी रहे, 1 से 21 हो, जब से उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया है 1 से 21 हो गया है उनका व्यापार, तो यानी कि उन्नति करते जाने को कहते हैं 1 से 21 हो जाना।
0: हाँ, बहुत अच्छा एक मुहावरा आप लेकर आई है हमारे श्रोताओं के लिए। अक्सर क्या होता है 1 और 11 का तो हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन 1 21 होने वाली जो बात है, 1 से 21 होना वाला, ये जो बहुत कम प्रयोग में आता है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो उतना ही गहरा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हर मुहावरे का उपयोग, इस खास मुहावरे का उपयोग तब किया जाता है जब 2 चीजों में मुकाबला हो और एक चीज दूसरी चीज से हर महीने में श्रेष्ठ हो, हर मायने में श्रेष्ठ हो, तब इस चीज को दर्शाने के लिए इस मुहावरे का उपयोग किया जाता है। और हम सबकी जिंदगी में कई बार होता है, लेकिन मेरा कहना है कि इस मुहावरे का उपयोग हमें करना चाहिए जब एक दूसरे के बीच कभी कोई तुलना नहीं करनी हो, बल्कि उसे बढ़कर ही कहना हो, वही कि जब उन्नति करनी हो तब इसका प्रयोग किया जाता है।
1: बिल्कुल, एक हमारे साथी जो कहते हैं कि 1 से 21 होना, भाई ये भी कोई मुहावरा है? हाँ। और अगर है भी तो पहली बार सुन रहे हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ 1 और 1 11 या फिर 9 2 11 जैसे मुहावरे चलते हैं यहाँ। और 1 और 1 11 का तात्पर्य संघ शक्ति से ही है, क्योंकि मतलब कि शक्ति में, यानी कि 1 और 1 मिलता है तो 11 बन जाते हैं, तो वो शक्ति बन जाती है। तो 1 से 21 होना भी आप नया जो मुहावरा है आप सुन लीजिए, नया नहीं है ये। हाँ। पुराना ही मुहावरा है। हाँ, लेकिन हमने सुना कम है।
0: हाँ,
1: ये प्रयोग कम होता है,
0: कम प्रयोग में आता है, इसलिए हमें थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भी 1 और 1 11 होना तो हमने सुना है, या हम 9 2 11 भी जानते हैं, लेकिन ये 21 होना क्या है? 1 से 21 होना
1: जैसे
0: तो मतलब
1: एक है, 1 से सीधे हम
0: बिल्कुल सही बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि 1 का 21 हो जाना यानी संख्या स्थिति में बड़ा फायदा होना, उन्नति करना, फलना फूलना या किसी स्थिति में अचानक बहुत सुधार होना, व्यापार में सही फैसला

0: लेने से मोहन का कारोबार कुछ दिनों में 1 से 21 हो गया। इन्होंने इसका प्रयोग करके भी बता दिया है, जैसे हम अपनी कॉपी में लिखा करते थे वैसे ही इन्होंने भी बताया है कि ये ऐसे प्रयोग में आता है मुहावरा।
1: एक और साथी जो इसी तरह से बात बता रहे हैं कि इसका मतलब है आशीर्वाद रूप से कहा जाता है इसे, और आप अपने जीवन में खूब प्रगति करें, खूब आगे बढ़ें और एक एक मतलब करके आप 21 गुना ज्यादा प्रगति करें, यानी कि और ज्यादा बढ़ोतरी करें।
0: हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि मुहावरा 1 से 21 होना का अर्थ है बहुत अधिक लाभ होना, तरक्की करना या गिनती में बढ़ जाना। ये मुहावरा गणितीय और व्यवहारिक संख्या बल पर आधारित है, जहाँ संख्या एक अकेलेपन और कमजोरी को दर्शाती है, वही 21 एक बड़ी और शुभ संख्या मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति या संस्था अपनी स्थिति को बहुत कम समय में कई गुना बेहतर कर लेता है तो उसे 1 से 21 होना कहा जाता है।
1: जी बिल्कुल, और हम और भी हमारे जो साथी हैं वो भी इसी तरीके की बात कह रहे हैं कि उन्नति करना इसका मतलब है, आशीर्वाद देने में इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि 1 से 21 हो जाए, यानी कि आप अपने जीवन में उन्नति करते रहें। इसी तरीके की बातें लिखी हमारे बाकी साथियों ने भी। अब एक गीत सुने।
0: हाँ, गीत सुनेंगे, लेकिन हमारे श्रोता जो कहना चाह रहे हैं वो कह देते हैं और कार्यक्रम का आखिरी गीत होगा ये आरती।
1: जी, बात तो सही कही आपने।
0: तो देखिए, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि जब एक ही चीज दूसरी चीज से हर महीने में, हर मायने में, महीना लिख रखा है हमारे श्रोताओं ने, हर मायने में श्रेष्ठ हो, तब इस बात को दर्शाने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है 1 से 21 होना। और वहीं हमारे श्रोता जिन्होंने अभी हमारा पिछला सेगमेंट था ना, हल्की फुल्की बातें में बचपन की यादगार जो शरारत, उसमें भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी शरारतें अभी तक हमें लिख भेज रहे हैं। वो लिखते हैं, पढ़ दो तुम कहो तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: वो लिखते हैं कि हमारी बेटी का भी यही हाल था, एक दिन हमने बहुत कुछ बनाया, ननद आने वाली थी और सबको समझा दिया कि ये सब एकदम सर्व करेंगे तभी पता चलेगा, पर बेटी कहां मानने वाली थी, आते ही बता दिया। और एक बार हम दूध रखकर भूल गए और बर्तन भी थोड़ा जल गया, तो हमने बच्चों से कहा कि पापा को आते ही ऐसी बात नहीं बताएंगे, पर क्या उसने आते ही बताया पापा ऐसा हो गया। और तो और मम्मी को भी ये बताने के लिए उन्होंने मन बना लिया। तो इस तरह की शरारतें हम बचपन में,
1: अक्सर ऐसा होता है जब हम बच्चों को कोई बात मना करते हैं ना कि ये बात आपको नहीं कहनी है, तब तो जरूर उस बात को कहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी शैतानियां तो बहुत है, लेकिन बात है गर्मी की छुट्टियों की, जब हमारे घर के बड़े आराम किया करते थे और हम सब दोस्त पास के एक झरने में नहाने भाग जाते थे, और वहां नहाने के लिए सब अपने कपड़े उतारते, पानी में कूदते, तभी मैं और मेरा दोस्त उनके कपड़े उठा के भाग जाते थे और आधा किलोमीटर उनको दौड़ा दौड़ा के ही कपड़े दिया करते थे।
1: एक छोटा सा एक हमें संदेश भेजा तो वो भी हम पढ़ देते हैं। एक हमारे साथी जो कहते हैं कि जब मैं छोटा सा था, 6-7 साल का रहा होगा, तो उस समय मैं स्कूल बंक करके, स्कूल को अपने पीरियड छोड़ करके, मैं अपने नेबर के हाउस में, अपने पड़ोसी के घर में जाकर छुप जाता था, वहां पे मतलब बैठा रहता था, वहां नहीं जाता था, स्कूल नहीं जाता था। तो इस तरह की शरारतें भी हैं।
0: वाकई बहुत आज मन खुश,
1: और आज वो एंजॉय कर रहे हैं अपना रिटायरमेंट, सोचिए।
0: अच्छा, आज वो अपना मतलब उनका रिटायरमेंट हो गया है और वो बचपन की यादों को भी ताजा कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: बहुत खूब। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आरती, सुन लेते हैं गीत।
1: हाँ,

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आरती, अभी देखिए हमारे एक श्रोता लिखती है, हमारी सखी, कि आज विषयों पर बढ़िया जानकारियां, मधुर गीतों के साथ, बढ़िया प्रस्तुति के साथ सखी सहेली कार्यक्रम आपने पेश किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हैं।
3: बिल्कुल। और एक हम अपने साथी का छोटा सा भर देते हैं, उन्होंने अपनी शरारत जो लिखी है, लिखती है कि बचपन की शरारतें कितनी मासूम होती है। इसका सबसे प्यारा किस्सा हमारी बेटी का है। जब वो स्कूल जाती थी तो कई बार बस वाले भैया से कह देती, हमारी छोटी बहन आज स्कूल नहीं जा रही है, आप चलिए। असल में स्कूल बस हमारे घर से थोड़ी दूर एक मोड़ पर आती, हमारी बड़ी बेटी पहले ही वहां पहुंच जाती और हम छोटी बेटी को पीछे पीछे लेकर आते। उसकी ये छोटी सी शरारत में बार बार हंसा देती थी और आज भी जब वो याद आती है तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है।
2: बिल्कुल सही कहा आरती, बचपन की जो बातें हैं वो कभी भी हमें हंसा देती हैं और गुदगुदा देती हैं। लेकिन अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और हंसे और गुदगुदाएं। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
3: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
2: नमस्कार।
3: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ तनिष्ठा चटर्जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: जी थैंक यू।
1: तनिष्ठा, कैसा लग रहा है विविध भारती में आके और ऑल इंडिया रेडियो से आपका किस तरह का कनेक्शन है यादों का, ये भी बताइए सबसे पहले तो।
2: अभी तो मैं फिलहाल जो रीसेंट कनेक्शन मेरा बना कुछ घंटों पहले या कुछ एक्चुअली मिनट्स पहले, उसके बारे में बात करना चाहूंगी कि यूनुस जी, आपने जो यहाँ के लाइब्रेरी का टूर दिया, जहाँ जो LPs और CDs जो आप स्टोर करते हैं, मतलब वो देख के तो मैं हैरान हो गई हूँ और बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज हूँ कि इस खूबसूरत ढंग से इनको आर्काइवल जो चीजें हैं आप स्टोर करके रखते हैं। मुझे अगर पहले पता होता तो मेरी एक बेटी है जो 10 साल की है, उसने जिंदगी में कभी ये सब चीजें देखी नहीं है, तो मैं लेकर आती और मैं दोबारा यहाँ आऊंगी उसको लेकर।
1: कितनी मजेदार बात है कि जब आप देख रही थी तो बड़ी पुरानी पुरानी फिल्में नजर आई, जैसे कि आपने चोरी चोरी का रिकॉर्ड देखा।
2: हाँ जी,
1: है ना। फिर 78 RPM का एक रिकॉर्ड देखा, फिल्म थी यास्मीन।
2: वाओ,
1: 1955।
2: मुझे पता भी नहीं है, वो तो मैंने ब्लाइंड निकाल दिया और आप मतलब आप एनसाइक्लोपीडिया है, इसलिए आपने मुझे समझाया कि ये यास्मीन है, तो इसका जो ये गाना है हम सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, आज के इस प्रोग्राम में वो गाना भी हम जरूर बजाएंगे, लेकिन पहले अभी जरा यादों की तरफ चलते हैं। आप कहाँ पैदा हुई थी और बचपन कहाँ बीता आपका?
2: मैं एक्चुअली पुणे में पैदा हुई थी
1: जी,
2: और मैंने कुछ साल पहले एक मराठी फिल्म की, डॉक्टर रखमाबाई, जो इंडिया की फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर हैं
1: जी,
2: उनके जीवन पर, और मैंने डॉक्टर रखमाबाई का किरदार निभाया, तो लोगों को ऐसा लगा कि मैं शायद, मतलब है मेरा नाम चैटर्जी लेकिन मैं महाराष्ट्रीयन नहीं हूँ।
1: वाह वाह वाह।
2: क्योंकि वो मराठी में फिल्म थी और पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। लेकिन मेरी पैदाइश पुणे की हुई, उसके बाद हम लोग बाहर चले गए जब मैं 6-7 महीने की थी।
1: जी जी।
2: हम लोग, मेरे पिताजी जो है उनको सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम मिला, तो हम जापान में थे, केन्या में थे, इंग्लैंड में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, अलग अलग बाहर देशों में। उसके बाद हम दिल्ली आए, और तो मैं अपने आप को दिल्ली वाली मानती हूँ, क्योंकि जो मेजर मेरा जो चंक है ना, जो आपका एजुकेशन है, टीनेज ईयर्स है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये सब जो है मैंने दिल्ली में किया,
1: तो दिल्ली जो है वहां दिल बसता है आपका। एक मजेदार बात यह है कि ये जो हमारे बनने के दिन होते हैं, जब टीनेज के बाद इंटरेस्ट शुरू होते हैं और जिंदगी की एक थोड़ी सी राह कहीं दिखती है या ख्वाब बनने शुरू होते हैं, जाहिर है आप दिल्ली में थी और ये बहुत मजेदार जमाना था 80s 90s का। मैं जानना चाहता हूं उन सुहाने दिनों की यादें आपसे।
2: तो ऑब्वियसली दिल्ली मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है, क्योंकि वहां से मुझे हर चीज, जो शिक्षा है वो सिर्फ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं, उससे पहले मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में मैंने हाफिज अहमद खान साहब से, शांति हिरानंद जी से तालीम ली। उससे पहले बचपन से मम्मी ने मुझे गंधर्व महाविद्यालय मुझे भेजते थे हिंदुस्तानी क्लासिकल का जो बेस है वो सीखने के लिए, और म्यूजिक से जो है इंडियन कल्चर का एक जो वास्ट मतलब समुंदर है, वो जो पोएट्री है उसका पूरा इंट्रोडक्शन मेरे लिए म्यूजिक के साथ शुरू हुआ। और जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो उस समय क्या होता था, स्पिक मके करके एक प्रोग्राम होती थी जहां बड़े बड़े आर्टिस्ट, मतलब चाहे वो आप अली अकबर खान साहब को ले लीजिए, अमजद अली खान साहब, जाकिर हुसैन, सब आते थे और फ्री,
1: बिल्कुल
2: फ्री में वो स्टूडेंट्स को मतलब परफॉर्म करते थे और सिखाते भी थे।
1: वो तो मकसद ही सोसाइटी ऑफ
2: बिल्कुल कि
1: वो युवा
2: एजुकेशन, हाँ एजुकेशन जो है, आप उनको कॉनोसियर्स बनाएं, हर कोई जो है वो ऐसा नहीं है कि वो म्यूजिशियन ही बन जाए, लेकिन श्रोता हो और हमारे कल्चर को वो आगे बढ़ाए। तो उसमें मतलब फैंटास्टिक केलुचरण महापात्रा से लेकर यामिनी कृष्णामूर्ति, डांस भी जो है सोनल मानसिंह, सबको मैंने लाइव परफॉर्मेंसेस भर भर के देखा है।
1: क्या बात है,
2: वो एजुकेशन जो है मैं अपने बेटी को इस ढंग से नहीं दे पाती हूँ यहाँ पे, और मैं

0: वो बहुत मिस करती हूँ। दिल्ली में उस माहौल में मैं पली बड़ी, जहाँ मंडी हाउस और जो विंटर्स, बिल्कुल विंटर्स में, और बाद में वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, ये सब त्रिवेणी कला संगम, सब जगह जो है कुछ ना कुछ होल विंटर चलता रहता था। और हमारे बीच में मतलब मम्मी को कभी कभी ये होता था कि क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, मार्च में जाके आपके एग्जाम्स होते थे, हम लोग सब CBSE के पढ़े हैं, और ये नवंबर दिसंबर जैन, लेकिन हमको ये सब कुछ देखना ही है और पढ़ाई की भी तैयारी करनी है ये कॉन्फ्लिक्ट चलता था हमेशा। लेकिन हमने अपने आप को कल्चरली जो है, क्योंकि दिल्ली में एम्बेसीज भी सारे हैं, तो फिल्मों के रेट्रोस्पेक्टिव्स, जब कॉलेज में मैं गई तो वो सब भी शुरू हो गया कि वहाँ आप जितना फ्रेंच न्यू वेव है, इटालियन सिनेमा है, जितना डेसिका से लेकर ब्रेसों, सब एलन डेलों की फिल्में, सब मैंने इस रिपोर्ट या फ्रेंच एम्बेसी या इटालियन एम्बेसी में रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, रशियन सिनेमा का रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, पोलिश सिनेमा, मतलब आंद्रे वायदा, किशलोव्स्की, सब कुछ, मतलब कॉलेज तक ना सब देख लिया मैंने। मैं बंबई जब आई मुझे ऐसा लगा कि अब आगे मैं क्या करूं।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही है, मैं समझ सकता हूँ कि ये जब एक बहुत ही कल्चरल माहौल आपने दिखा है तो एक दूसरे शहर में जाने का बहुत फर्क पड़ता है। आपने बताया कि बचपन से आपको क्लासिकल म्यूजिक की तरफ जोड़ दिया गया, तो क्या घर पर उस तरह का माहौल था, घर में भी कोई गाता था?
0: नहीं, एक्चुअली मेरे मम्मी और पापा दोनों ही, उन्होंने वेस्ट बंगाल 70s में अलग अलग, मतलब वो मिले थे दिल्ली में, बट इन द 70s वो मूव आउट कर चुके थे वेस्ट बंगाल से। तो मम्मी पढ़ने के लिए गई थी पॉलिटिकल साइंस, वो पढ़ने के लिए दिल्ली गई, और पापा इंजीनियरिंग के बाद नौकरी के लिए चले गए वहां। तो मेरे पिताजी वेरी अनलाइक मोस्ट अदर बंगालीज, वो बिल्कुल हार्डकोर कॉर्पोरेट गए थे और इंजीनियर और कॉर्पोरेट बस। और क्योंकि मम्मी का डिस्प्लेस्ड था तो वो, इवन दो शी लव्ड कल्चर एंड म्यूजिक एंड आर्ट और ये सब, लेकिन वो खुद कभी ज्यादा कर नहीं पाई थी, तो इसलिए उन्होंने हमको एक्सपोजर दिया। और गाने का ये था कि मैं जब 4-5 साल की थी तब हम लोग नैरोबी में रहते थे और किसी के घर, मतलब जहां कोई गा रही थी उनके घर पे, वो गाना सुन के मैं गुनगुना रही थी, और उन्होंने मेरी मम्मी को कहा कि अरे इसमें तो बहुत धुन है, इसको सिखाओ। तो तब से मम्मी ने सोचा कि चलो इसको गाना सिखाते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है। देखिए, आपको म्यूजिक की तरफ मोड़ दिया गया, ये बहुत ही अच्छी बात है, और अब इस प्रोग्राम को म्यूजिक की तरफ मोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि आज पहला गाना जो है वो कौन सा सुनाएंगी आप, ये गा के ही बताएं।
0: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा चला गया। सुनते हैं।
1: क्या बात है, ये हम दोनों फिल्म का गाना, और साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा था और जयदेव की तर्ज थी। सुनते हैं ये गाना। जी।

0: बहुत ही मजेदार बातें चल रही हैं। आपने बताया कि पहले तो आपको जो बुनियादी शास्त्रीय संगीत है वो सिखाने के लिए गंधर्व भेजा गया, और उसके बाद आपने अपने गुरु के साथ तालीम ली। वो कैसे दिन थे और कितनी दिलचस्पी बढ़ रही थी म्यूजिक में आपकी?
1: हाँ, म्यूजिक में तो बढ़ ही रही थी। इसके साथ साथ मेरे मतलब हफीज अहमद खान साहब, उन्होंने हिस्ट्री में एमए किया हुआ था, तो वो हमेशा बहुत सारे किस्से भी सुनाते थे।
0: हिस्ट्री में एमए क्लासिकल म्यूजिक सिखाने वाले, वाह
1: या तो वो मतलब क्लासिकल म्यूजिक की हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट्स की हिस्ट्री, लैंग्वेज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, फिर जो हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो मिश्रण होता है लैंग्वेजेस का, कि ब्रज में शुरू होके उर्दू के कपलेट्स थाई में जाती है, ये सब जो चीजें हैं, इन सब चीजों को लेकर जो चर्चा बातें होती थी, तो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। फिर मैं शांति हीरानंद जी के पास सीखने गई ठुमरी दादरा में स्पेशलाइज करने के लिए, और शांति जी बेगम अख्तर की शागिर्द रह चुकी थी, और शांति जी ने एक बार मुझे बहुत कमाल की चीज कही। उस समय मैं मतलब स्कूल और कॉलेज में ही थी, तो गाना मैं बहुत अच्छे से गाती थी, और वो मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि भाव क्या है, और वो उस समय नहीं समझ में आता था इतना
0: मजेदार है ये।
1: बहुत साल बाद मुझे एक बात उनकी समझ में आई कि उन्होंने ये कहा कि क्योंकि तब उनकी उम्र हो चुकी थी, जब गाती थी मैं तो तब पिया नहीं था, क्योंकि ठुमरी दादरा में हर मतलब बंदिश में यही बात होती है कि the aching pain of separation, कि पिया जो है वो छोड़ के चला गया। तो वो कहते थे कि जब पिया था तो गाना मतलब सीख रहे थे, और अब गाना आता है तो पिया के बारे में मतलब क्यों उम्र हो चुकी है, तो अब वो पेन रहा नहीं है। तो दोनों साथ में हुआ नहीं कभी। She used to, you know, say that.
0: ये उस समय, बात है, बिल्कुल।
1: Yeah, I never understood that. Much later I understood कि भाव जो है वो मतलब कहाँ से आती है, कि आप जिंदगी में कुछ चीजें सहन करते हो, दर्द आता है, तभी आप कुछ क्रिएट कर पाते हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, चाहे वो फिल्म हो, आप का क्रिएशन जो है। कल एक्चुअली मैं कैफी आजमी साहब के एक इवेंट पे गई थी, जहाँ उनके सेंटेनरी पे पोस्टल स्टैम्प रिलीज हुआ, और जावेद साहब यही कह रहे थे कि हम ट्रेजेडीज के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने कहा सैराट इतनी बड़ी ट्रेजेडी फिल्म है लेकिन फिर भी हिट हुई, एंड ही सेड कि नहीं, ट्रेजेडीज हमेशा होती है क्योंकि पेन से लोग रिलेट करते हैं ना, एंड वही चीज हम बात करते हैं, जब तक आपको जिंदगी में पेन नहीं मिलेगा आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, ये क्रिएशन की ट्रेजेडी है।
0: क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मैं वापस दिल्ली वाले दिनों की तरफ जा रहा हूँ। शांति हीरानंद से जब आप सीख रही थी तो वो तो हिंदुस्तानी बंदिशें सीख रही होंगी, तो कोई बंदिश याद है?
1: बिल्कुल तो मुझे जैसे मांड सिखाती थी, तो मुझे
0: वाह वाह वाह,
1: तो मैं एक सावन की ही कोशिश में, हाँ

0: सावन की बदरिया।
1: क्या बात है, मैं तो यही कहूंगा कि सचमुच सावन की बदरिया घिर घिर आए और खूब घिर घिर आए।
0: बिल्कुल, ये हमारी ख्वाहिश है।
1: बिल्कुल, यहाँ एक गाने की जगह बनाई जाए।
0: हाँ
1: सुनते हैं।

0: संगीत चल रहा था तो अभिनय की तरफ रुझान कैसे हुआ था?
1: एक्चुअली संगीत के वजह से हुआ
0: जी,
1: क्योंकि स्कूल में फिर कॉलेज में जहां भी हम लोगों के म्यूजिकल प्लेज होते थे वो मुझे इसलिए कास्ट कर लिया जाता था कि मैं गा सकती हूँ।
0: वाह, और अलग से गाने की परफॉर्मेंसेस नहीं करती थी?
1: नहीं, वो तो कॉलेज में एक्चुअली मैं गाना ही मतलब रेंडेवू IIT के जो फेस्टिवल्स थे, फिर बिट्स पिलानी में, सब में मैं मतलब कॉलेज को रिप्रेजेंट करती थी गाने में। और स्कूल में जब थी तो मैं वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत गाती थी, विटनी ह्यूस्टन। मुझे इतने छोटे छोटे ऐसे कर्ली ऐसे बाल थे और सब मुझे कहते थे कि यू नो इंडियन विटनी ह्यूस्टन।
0: क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो वेस्टर्न से भी कनेक्शन रहा?
1: मराया कैरी, विटनी ह्यूस्टन, ये सब गाती थी मैं।
0: वाह वाह वाह। पहली बार अभिनय कब किया था?
1: स्कूल में। स्कूल के जो हाउस कंपटीशन के प्लेज नहीं होते थे और दुर्गा पूजा
0: हमारे तो
1: बंगाली जो क्या होता है कि मतलब वो पूरा महीना जो हम लोग रिहर्सल करके फिर दुर्गा पूजा में परफॉर्मेंस, तो मेरा एक्चुअली पहला नाटक जिसमें मैंने मेन रोल मतलब सोलो रोल किया फुल प्ले में, वो दुर्गा पूजा का एक नाटक था, वो बंगाली में था।
0: अरे वाह वाह, तब क्या उम्र रही होगी आपकी?
1: 10 साल।
0: क्या बात है। हाँ, इतना सारा
1: म्यूजिक उससे पहले से चल रहा था जिंदगी में, बट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई मतलब हाँ एक्टिंग का इंट्रोडक्शन हुआ।
0: और कब ये लगा कि इसे करियर चॉइस के

0: रूप में रखा जा सकता है।
1: ये भाई एक्सीडेंट हुआ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी।
0: और आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी
1: जी। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रोफेशन बनाऊंगी, क्योंकि क्या होता है इंडियन मिडिल क्लास होम्स में कि आप ये सब हॉबीज रखो, लेकिन प्रोफेशन, क्योंकि मेरे फादर भी इंजीनियर और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे और माय मदर यूज्ड टू टीच, तो वो उनका यही था कि हाँ मतलब आप कल्चरली एक वेल राउंडेड एजुकेशन आपका होना चाहिए और ये हॉबीज हो सकती है, लेकिन प्रोफेशन तो आपकी साइंस या इंजीनियरिंग यही कुछ होगा। तो ये ना बाय एक्सीडेंट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं म्यूजिक को या एक्टिंग को प्रोफेशनली करूं कुछ। लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तो एक बहुत बड़ा जर्मन प्रोडक्शन यहाँ पे मतलब आया था इंडिया में, और उन लोगों ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जो उनके प्रोडक्शन का पार्ट, और मैं सिलेक्ट हुई थी। और उस समय मतलब बहुत नामी नामी एक्टर्स जो एनएसडी के ग्रेजुएट्स हैं एंड ऑल, वो पार्ट थे उस प्रोडक्शन का।
0: वाह।
1: तो दैट एक्चुअली चेंज्ड माय मतलब दिमाग खराब हो गया।
0: अच्छी खासी लड़की जो एकेडमिक्स से जा रही थी,
1: मतलब साइंस की जो है बैंड बज गई।
0: क्योंकि आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी।
1: बिल्कुल। और वो उस वर्कशॉप के बाद फिर मैंने बैरी जॉन के साथ और एक वर्कशॉप करा और कांड हो गया, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में समर वेकेशंस में और एक वर्कशॉप किया, और उसमें और इतना ज्यादा मजा आया, मतलब ठंड, एक तो मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है।
0: अच्छा।
1: ठंड में किसी कोल्ड यूनिवर्सिटी में यूएस में जाके मैं लैब में बैठ के रिसर्च करूंगी, और ये देखो मतलब स्टेज पे हम गाना गा रहे हैं और एक्टिंग, क्या मजा है।
0: वाह वाह। जब ये बात घर वालों को पता चली तो क्या रिएक्शन थे टीचर मम्मी जी और कॉर्पोरेट पापा?
1: उनको मतलब हार्ट अटैक आया। और उसका पूरा, लेकिन मैं बिगड़ चुकी थी तब तक।
0: तब तक तो काम पूरा।
1: और द थिंग वाज कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो 100% स्कॉलरशिप, तो इसीलिए मेरे पिताजी और मम्मी ये नहीं कह सकते थे कि तुम्हारे एजुकेशन के लिए हम तुमको पैसे नहीं देंगे।
0: पैसे तो वहाँ ऑलरेडी आ रहे थे।
1: तो वो फुल स्कॉलरशिप मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी बंद हो गई। कहती एक बिगड़ गई है, दूसरे को नहीं बिगड़ने देंगे।
0: तो वो सीधी राह पे चली गई।
1: अरे वो अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है।
0: क्या बात है। हाँ, क्या बात है। हाँ,
1: वो मतलब शी इज एक्सट्रीमली ब्राइट एंड वो कमाल की है, बट वो भरतनाट्यम सीख रही थी, उसने रंगेट्रम किया, लीला सैमसन जो बहुत ही नामी और कला क्षेत्र के हेड भी रह चुके हैं, उस समय वो दिल्ली में थे और उनसे सीख रही थी, और बहुत सीरियसली डांसर बनना चाहती थी, और मतलब लेकिन वो अभी भी कहती है कि अरे तुमने दीदी को करने दिया लेकिन मुझे नहीं।
0: क्या बात है, क्या कितनी सुनहरी यादें हैं लेकिन इन तमाम चीजों की, कि आप जिंदगी में पढ़ते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, और फिर होता कुछ और है।
1: और फिर एनएसडी के बाद मेरे पिताजी हर दो साल में ये कहते थे कि अच्छा चलो ये हो गया, अभी तुम एमबीए कर लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग मिक्सचर है कि केमिस्ट्री के बाद तुमने यू नो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इन सब में तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और मैं एक्चुअली जीमैट के लिए पढ़ती भी थी।
0: अच्छा।
1: जैसे मैं सीरियसली कोई एग्जाम देने बैठूंगी ऐसा लगता था कि अभी बैठ जाऊं, एक बहुत अच्छी फिल्म मिल जाती थी। फिर पापा को मैं कहती थी अरे मॉम पापा अभी देखो ये मिल गया है, अब ये करते हैं। फिर मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी बीच में 5 साल के लिए, ब्रिक लेन करके एक फिल्म की मैंने, और उसमें मुझे ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला, जूडी डेंच, एन हैथवे, इन सबके साथ मेरा भी सेम प्लेटफॉर्म में नॉमिनेशन था। तो उस समय मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो गई कुछ सालों के लिए, वहाँ वेस्ट एंड में एक म्यूजिकल प्ले भी किया था इंग्लैंड करके। तो उस समय मैं गई थी लंदन बिजनेस स्कूल में ये पता करने के लिए कि चलिए अभी MBA किया जाए, पापा, हाँ पापा ने ऐसा। तो मैं वहां जब गई और उनके काउंसलर से मिली, तो मेरा करियर ग्राफ और ये सब देख के और मुझसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे स्टूडेंट्स को आकर एक इंस्पिरेशनल टॉक दे दो। तो मैंने कहा हाँ, मतलब मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए। नहीं नहीं नहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है,
0: आप यहाँ पढ़ो मत।
1: तो मैं लंदन में वेरियस बिजनेस स्कूल्स में इंस्पिरेशनल टॉक दे के अपने पॉकेट मनी कमा रही थी।
0: वाह वाह वाह, वहां भी पढ़ने वाला मामला तो बना ही नहीं।
1: नहीं, और मेरे पास एक वर्क परमिट था, सो आई वाज लाइक, मैंने पापा को कहा कि पापा मुझे एमबीए करने की जरूरत नहीं है, वो 20 स्कूल्स तो मुझे बुला रहे कि आप यहाँ आके इंस्पिरेशनल टॉक्स दो।
0: फिर मामला टल गया।
1: फिर हाँ, परमानेंटली मामला टल गया।
0: मतलब ये है कि ये माना जा सकता है कि डेस्टिनी आपको दूसरी तरफ खींच रही थी।
1: हाँ, ऐसा, दैट इज द थिंग दैट वो आई रियली बिलीव दैट लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू यू व्हाइल यू कीप मेकिंग प्लान्स।
0: राइट।
1: तो मैंने कोई प्लान नहीं बनाई। अभी तो मैंने एक फिल्म भी बनाई है जो इस वक्त हम लोग फेस्टिवल्स वगैरह में टूर कर रहे हैं,
0: बट उस फिल्म का नाम है फुल प्लेट।
1: फुल प्लेट। अब उसको लेकर भी मैंने कोई प्लान नहीं बनाई थी, वो भी अचानक ही बन गई। इनफैक्ट जो फिल्म मैं 3 साल से लिख के बैठी हुई हूँ, जिसको मुझे बनाना है, वो अब तक मुझे उसका फंडिंग नहीं मिला है।
0: और ये बन गई,
1: मतलब ये अचानक से किसी ने मुझे कहा कि हमारे पास इतने पैसे हैं, बना दो। और मैंने कुछ लिखा भी नहीं था उस समय।
0: हाँ,
1: तो तब मैंने लिखना शुरू किया और विद इन अ पीरियड ऑफ 3.5 मंथ्स हम लोग फ्लोर पे थे।
0: क्या बात है। तो ये होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, कैसे क्या काम करता है।
1: एक चीज है कि ये शायद मुझे ट्रेनिंग ऑफ एक्टिंग ने दी है। नसीर सर के क्लासेस जो है, नसीरुद्दीन शाह, जिनको मैं बहुत बहुत अपना गुरु मानती हूँ एक्टिंग में। मतलब मेरे बहुत गुरुज हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। रॉबिंदा है, बज्जू भाई है, अनामिका अक्सर है, अनुराधा कपूर है। और थर्ड ईयर में जाके एक जो कल्मिनेशन होता है ना, उसमें टुवर्ड्स द एंड नसीर सर आए और उन्होंने उन सब चीजों को एक बहुत साइंटिफिक वे से स्टूडेंट्स को समझाने की। और एक्टर ना बहुत अच्छे हैं हमारे देश में, लेकिन टीचर जो इतने कमाल के एक्टर हैं और इतने कमाल के टीचर है, वो सिर्फ नसीरुद्दीन शाह है।
0: वाह, क्या प्यारी बात
1: कर। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और एक वो चीज जो कहते है ना कि हियर एंड नाउ और डोंट थिंक, जस्ट रिस्पॉन्ड टू द मोमेंट एंड लिसन टू योर को एक्टर एंड रिस्पॉन्ड। उसके प्रैक्टिस करते करते करते करते जिंदगी में भी ये हो जाता है कि आप कुछ भी आगे का प्लान मत करो, जो हो रहा है उसी के फ्लो में आप करते रहो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। मैं पंडित रविशंकर से एक बार मिली थी, क्योंकि अनुष्का मेरी दोस्त भी है, उनकी एक्स हस्बैंड है जो राइट, उनके साथ मैंने एक फिल्म किया था एना कारेनिना, उसमें अनुष्का ने एक गाना कंपोज किया था जो मैंने गाया था। उसी दौरान मैं पंडित जी से एक बार मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि जा हार ता हबे।
0: वाह,
1: ये उन्होंने टैटू में लिख दिया था।
0: क्या बात है, क्या बात है। और वो तो कितनी मीठी बांग्ला बोल,
1: जा हार ता हबे।
0: वाह, कितना सुंदर ये वाक्य है। यहाँ एक गाने की जगह बनाई जाए। अब जब पंडित रविशंकर का जिक्र है,
1: हाँ जी,
0: तो आप, एक सजेशन करता हूं।
1: आप, हाँ, बिल्कुल वही सजेशन जो आप मुझसे कह रहे थे।
0: हाँ,
1: अलाउद्दीन खान साहब का
0: वो बजा सकते हैं,
1: या
0: माता सरस्वती शारदा, जिसका कनेक्शन उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से है, और वहां से वो रचना उनके शिष्यों से होते हुए जयदेव जी के पास जाती है और फिर वो फिल्म आलाप में आती है।
1: बिल्कुल,
0: ये सुनते हैं। ये समर्पित है उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब को, मैहर घराने के संस्थापक, और पंडित रविशंकर
1: शंकर जी को।
0: सुनते हैं माता सरस्वती शारदा।

0: एक बार फिर वापस एनएसडी की तरफ चलते हैं। आपका एनएसडी में एडमिशन हो गया है और आप अपने ड्रीम को परस्यू करने निकली हैं। पीछे की तरफ केमिस्ट्री है।
1: हाँ, तब तक भी ड्रीम नहीं, मतलब तब तक मैंने फिर भी तो, मतलब जब एनएसडी में भी मैं गई तब भी मुझे ये पता नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है या डिजाइनिंग करनी है या
0: डायरेक्शन करना है।
1: हाँ, डिजाइन और डायरेक्शन। और एक्चुअली फर्स्ट ईयर के बाद मैंने सोचा था मैं डिजाइन और डायरेक्शन ही करूंगी, क्योंकि आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाई द सिनेमा दैट आई वॉज वॉचिंग। और मतलब चाहे वो इंडियन सिनेमा हो, कि संत तुकाराम हो या राजा हरिश्चंद्र, जो हमारे पुराने जैसे इंडिया में सिनेमा की जो बिगिनिंग थी, या फिर वो फ्रेंच न्यू वेव हो, पोलिश सिनेमा हो, ये सब देख के दिमाग एकदम
0: हिल गया।
1: हाँ, सत्यजीत रे और मृणाल सेन और मतलब और इंडियन कमर्शियल फिल्म्स भी। और हमारी जो टीचर हुआ करती थी, जो फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स करवा रही थी हमें, गायत्री चैटर्जी, वो FTII में भी पढ़ाती थी, वो इतने अच्छे से मतलब समझाती थी और एनालिसिस मतलब करती थी। सो आई वाज सो मच इन लव विथ। और हमको इंटरनेशनल प्रोडक्शंस देखने को मिलते थे थिएटर में। फिलिप जॉन्ते, मतलब उनका प्रोडक्शन देख के मेरा दिमाग हिल गया था।
0: बिल्कुल।
1: पीना बाउश, ये सब जो थिएटर प्रोडक्शंस हैं। और हमारे एनएसडी में एक रशियन डायरेक्टर आए थे, एक पोलिश डायरेक्टर आए थे हमारे साथ काम करने के लिए। तो जो इंट्रोडक्शन हमें वर्ल्ड थिएटर से भी मिला और इंडियन क्लासिकल फॉर्म से, डांस से, कथकली, ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि यार डिजाइन डायरेक्शन में बहुत इंस्पायर हो गई थी। लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद जब हमें चूज करना होता है तो हमें बच्चू भाई और सब मेरे जो जितने टीचर्स थे उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, तुम एक्टिंग करो। डिजाइन डायरेक्शन कभी भी कर सकते हो बाद में, अगर तुम्हें मन किया तो कर लोगे, पर अभी एक्टिंग लो। तो मैंने अपने गुरु जो है सब उनकी बात मानी
0: और एक्टिंग की तरफ आगे बढ़ती गई। एनएसडी के आपके बैच में कौन कौन लोग थे? आपके बैच में
1: बहुत लोग थे और वो लोग सब मतलब थिएटर कर रहे हैं अपने रीजन्स में। अभी मैं फुल प्लेट लेकर केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई थी।
0: जी जी।
1: और वहाँ बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था और मेरे दो बैचमेट्स जो थे उन्होंने मुझे बताया नहीं और वो ऑडियंस में बैठे हुए थे।
0: वाह वाह।
1: और बहुत साल बाद उनसे मुलाकात हुई और स्क्रीनिंग के बाद वो आए और मैंने कहा ओ माय गॉड, एंड दे फेल्ट सो गुड कि मैंने एक फिल्म बना दी।
0: बिल्कुल।
1: और एक्चुअली ये फिल्म बनाना बहुत मुश्किल भी रहा है फॉर एवरी विच वे, क्योंकि जब मैं इनिशियली मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना तो हमेशा ही मुश्किल होता है। शूटिंग के दौरान भी दिक्कतें आईं, फाइनेंशियल दिक्कतें आईं। जब बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने फाइनली फिनिशिंग फंड्स लेकर, एक और को प्रोड्यूसर लेकर हम फिनिश करने वाले थे, एडिट खत्म हुआ, देन आई गॉट डायग्नोस्ड ऑफ अ टर्मिनल इलनेस। और उसके दौरान मैंने पिक्चर खत्म की, पोस्ट प्रोडक्शन किया उसका। So it was a very difficult process, but then like I said, ki

0: आई थिंक नो पेन नो गेन।
1: और इन तमाम मुश्किलों को, उतार चढ़ावों को सहित कर और उनसे पार होते हुए ये फिल्म पूरी। क्या ये आपका पहला डायरेक्शन था?
0: नहीं, मैंने रोम रोम में करके एक फिल्म बनाई थी,
1: इससे पहले बना चुकी
0: इससे पहले हाँ। और
1: नवाज थे उसमें,
0: नवाज था उसमें, और नवाज और मैं एक फिल्म शूट कर रहे थे लायन करके, एक बहुत अच्छे ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर हैं गार्थ डेविस, एंड लायन ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है। तो हम दोनों कलकत्ते में साथ में शूट कर रहे थे उसको एक्टर्स। तो फ्री टाइम पे बात हो रही थी, मैंने कहानी ऐसे उसको सुनाई कि यार ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ वेनिस में। उसको बहुत इंट्रीगिंग लगी, उसने कहा यार तनिष्ठा ये इसको लिखो यार, बहुत कमाल की कहानी है। तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर हम लोग मिलते रहे। नवाज और मैंने एस्को एक्टर्स पहले भी काम किया है और वो मेरे सीनियर भी हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। हाँ, तो हम मिलते रहे और मैं लिखती गई और फिर उसको मतलब ही रियली लाइक्ड इट।
1: क्या हुआ था आपके साथ रूम में?
0: सुपर नेचुरल स्टोरी थी,
1: सुपर नेचुरल।
0: हाँ, मतलब वो एक्सपीरियंस। खैर, देन मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इसको मैं बनाऊंगी।
1: Right.
0: मैंने सोचा था हम लिखते हैं, हम दोनों एक्टिंग करेंगे और किसी को देते हैं मतलब। बट ये नवाज ने मुझे कहा कि यार तूने जैसे लिखा है ना, ये तेरे दिमाग से आया है, ये कोई नहीं और नहीं बना सकता। मैंने कहा बट मैंने कभी फिल्म बनाई नहीं है। सो उसी ने मुझ में ये कीड़ा इंसर्ट किया।
1: पहले एक्टिंग का कीड़ा ऑलरेडी था, उसके बाद ये एक और आ गया।
0: फिर बनाई ये पिक्चर हम लोगों ने।
1: शुरुआती दिक्कतें क्या थी?
0: कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इरोस तब बहुत बड़ा स्टूडियो था, वो ऑन बोर्ड आ गया था। दिक्कत बाद में हुई क्योंकि उसके बाद जब हमने फिल्म बना ली, फिल्म बनाने के बाद अगेन बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, लेकिन उसके बाद इरोस वेंट थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। तो उनका, दे हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन द फिल्म, बट दे वर मतलब सबसे बड़ा स्टूडियो आप सोचो, फिर दे वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। उसके बाद पैंडेमिक आ गई, सब कुछ बंद हो गया। सो लोगों की वो स्ट्रगल होती है कि फिल्म बनाने में, ये बनने में इतनी मुश्किल नहीं हुई, बट आई कुडंट डू एनीथिंग विद द फिल्म लेटर। मतलब दो तीन फेस्टिवल्स में गई, उसके बाद रिलीज नहीं कर पाए हम।
1: अभी
0: पता नहीं। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म जो है, एक एंथोलॉजी सीरीज अमेज़न के लिए अनपॉज्ड करके उसका एक सेगमेंट रैटाटैट, वो डायरेक्ट किया मैंने। और फुल प्लेट मेरी सेकंड फीचर फिल्म है, जिसको हमने बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अगेन वर्ल्ड प्रीमियर किया, वहाँ मुझे विजनरी डायरेक्टर अवार्ड मिला। फिर फ्रांस में वसूल में हमें पीपल्स चॉइस अवार्ड और क्रिटिक्स स्पेशल मेंशन मिला। केरला, मैंने बताया केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल धर्मशाला, इसमें हमने स्क्रीनिंग की। अभी शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रही है और सेंट जॉन्स मिनियापोलिस में हमने यूएस प्रीमियर की उस फिल्म की।
1: इतना सारा नाम आपकी फिल्म कमा रही है, कैसा लगता है?
0: बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बहुत ही मुश्किल थी ये फिल्म बनाना।
1: इसका आइडिया कहां से आया था? वो तो एक वेनिस की सुपरनेचुरल कहानी है, आपने बताया। बस इतना ही एक क्लू छोड़ा आपने, इसका मामला क्या था?
0: ये एक लूजली एक रियल पर्सन पे ही है। जो मतलब मैं क्लियरली उतना नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाएगी। पर मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया इनको, और लेकिन मैंने कुछ लिखा नहीं था। मेरे दिमाग में था कि यार ये बहुत कमाल है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इस कहानी में। पर जब मुझे मेरे जो फर्स्ट प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया अचानक कि छोटी बजट की कुछ भी, किसी को भी लेना है ले लो, जो भी बनाना है बना लो, तब मैंने लिखना शुरू किया। मुझे लगा कि यार ये तो कभी हो नहीं सकता आज के तारीख में, क्योंकि आज आप किसी भी स्टूडियो के पास जाओगे तो उनके मैंडेट्स हैं कि वो किस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं, आपको वो लिखना पड़ता है।
1: यहाँ तो पूरी आजादी है।
0: और कल हम लोग एक्चुअली इस इवेंट में भी यही बातें कर रहे थे कि पहले ना कमर्शियल सिनेमा भी जब बनती थी, वो उस समय सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है या सोसाइटी जिस चीजों से गुजर रही है, राइटर्स उनका रिफ्लेक्शन ऑडियंस तक लेकर आते थे। मार्केट प्रेशर की, मार्केट ये चाह रही है इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ये नहीं होता था। पर अब वो नहीं है क्योंकि स्टूडियो सिस्टम जो अमेरिका में बहुत सालों से है वो यहाँ फुल्ली आ गया है,
1: कुछ अलग ही रूप में आया है।
0: हाँ, वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है तो वो एल्गोरिथम से हमें बताया जाता है कि यार जो है ना, मतलब लोग ये चाह रहे हैं तो ये लिखो, ये बनाओ। आजकल हम ये चाह रहे हैं, आजकल थ्रिलर्स चल रहा है, आजकल रोम कॉम्स चल रहे हैं, आजकल यू नो यूथ पे ऐसे फिल्में चल रही है, आज ये सोशल ड्रामा नहीं चलेगा या म्यूजिकल्स नहीं वर्कआउट हो रहा है, ये सब एल्गोरिथम्स बता रही हैं आपको, और उस हिसाब से आप तो जो फ्रीडम होती है आर्टिस्ट के एक्सप्रेशन की, वो कहीं पे यही बात हो रही थी, हम अपने आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी कैसे इसमें बरकरार रखें। क्योंकि अगर हम आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें एक पैसा भी नहीं मिलेगा,
1: बिल्कुल,
0: बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट। और मुझे लगता है कि इन फिल्मों के लिए ऑडियंस है, बहुत है, क्योंकि हमारे देश के जो डाइवर्सिटी है उसमें इन फिल्मों के लिए बहुत बड़ा ऑडियंस है, लेकिन जो गेट कीपर्स हैं, जो हमें मदद करते हैं उन तक पहुंचने में, वो पहुंचने नहीं देते हैं।
1: बिल्कुल सही है। यहाँ एक गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल।
1: गाना कौन सा होगा?
0: बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई।
1: मजा आ गया, आपकी आवाज क्या शानदार है
0: जी,
1: और आपकी चॉइस भी। रेशमा की आवाज, फिल्म हीरो।

0: फिर से एनएसडी की तरफ चलता हूँ, इसलिए क्योंकि एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया, हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई है ना। अब बात ये है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं।
1: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
0: अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो
1: जी है। जी जी, और उन्होंने एनएसडी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ, सहजोजी के साथ, वहां उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
0: ओके।
1: और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते थे
0: गाना,
1: क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
0: अरे अरे।
1: और हम गांव में मतलब रह रहे थे, इतना मजा आया था ना राजस्थान के गांव में। और शाम में मतलब 6:30 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर और पूरी रात हम गाना गाते थे। और सुबह 4 उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6:30-7 से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, उनको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया। वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज, एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में, बस यूं ही करके। और फिर मुझे

0: बस यूं के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने दो पिक्चरें की, बस यूं ही और बारह आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर उनकी फिल्म।
1: ऑडिशन से मिली थी?
0: ऑडिशन से, बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी।
1: ओहो हो।
0: हाँ, और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के लिए,
1: जिनके नाम हम नहीं लेने चाहेंगे।
0: मुझे लगा था कि यार, मतलब वो बड़े, बहुत बड़े स्टार्स थे। मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन, बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिपसिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का, एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वांटेड अ सिंगर। तो मैंने वही पे स्कोर किया।
1: क्या बात है
0: कि, और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था, एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो I had to sing for that film.
1: You have to sing.
0: Okay. আমি লাশময়ী তোমার চোখে কামনার ফুল যে ফোটাই তবু

0: তোমার নই, তোমার নই, তোমার নই।
1: क्या सुंदर तो बोल है, मतलब अद्भुत, क्या लाइन है वो, कामना के फूल।
0: हाँ।
1: क्या बात है, क्या बात है, सुंदर।
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे
2: मध्य प्रदेश है। 5 बजे हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में और समय है इस घंटे की खास खबरों का।
3: लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। यह विधेयक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है। प्रदेश में उच्च शिक्षा में इस साल छात्राओं ने नया रिकॉर्ड बनाया है। ई प्रवेश सत्र 2026-27 में हर 100 छात्रों पर 171 छात्राओं ने दाखिला लिया है, जिससे जेंडर पैरिटी इंडेक्स 1.71 पर पहुंच गया है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। सरकार ने सभी जिलों में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के दौरान तिरंगा यात्रा, बाइक रैली, रंगोली प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति से जुड़े कई आयोजन होंगे। प्रदेश में करीब 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव

जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना जरूरी है। चार लोगों की फिक्र छोड़कर अपनी भी सुनना जरूरी है। नहीं समझेगा हर कोई हमारे इन ख्वाबों को, इसलिए खुद ही खुद की काबिलियत पर भरोसा करना जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति मीना और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। साथियों, आज का कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया एक ऐसा विषय जो आज हम सभी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मोबाइल, इंटरनेट और तकनीक ने हमारी दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका हमारे भविष्य और देश के विकास से क्या संबंध है? इन्हीं दिलचस्प पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। साथ ही चर्चा होगी सतत विकास और युवा की। जानेंगे कि सतत विकास क्या है, यह क्यों जरूरी है और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। और हाँ, साथ ही सुनेंगे कुछ सदाबहार फिल्मी गीत और जानेंगे रोजगार सूचना। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए बिना देर किए ट्यून इन करते हैं आज की शाम का पहला गीत।

साथियों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके मोबाइल में एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो सबसे पहले किस चीज़ की परेशानी होगी? शायद किसी को ऑनलाइन पेमेंट की, किसी को पढ़ाई की, किसी को ऑफिस के काम की, तो किसी को अपने दोस्तों और परिवार से जुड़ने की। यही तो है डिजिटल इंडिया का असर, जिसने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। दोस्तों, डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य था तकनीक को सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित ना रखकर देश के हर नागरिक तक उसकी पहुंच बनाना, ताकि सरकारी सेवाएं हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो या फिर बैंकिंग, हर काम आसान, तेज और पारदर्शी बन सके। आज हम घर बैठे बिजली का बिल भर सकते हैं, बैंक का काम कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, ट्रेन या बस की टिकट बुक कर सकते हैं और सरकारी दस्तावेज भी कुछ ही मिनटों में डाउनलोड कर सकते हैं। यानी पहले जिन कामों में घंटों लगते थे, वे अब कुछ क्लिक्स में पूरे हो जाते हैं। लेकिन साथियों, डिजिटल सुविधा के साथ डिजिटल जिम्मेदारी भी आती है, इसलिए हमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखनी चाहिए, मजबूत पासवर्ड बनाना चाहिए और किसी भी अनजान लिंक या कॉल पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। याद रखिए, डिजिटल इंडिया तभी सफल होगा जब हम जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। तो आइए, इसी के साथ अब बैठते हैं अगले शानदार गीत की ओर।

साथियों, एक बात बताइए, अगर हमें अपने आने वाले कल को बेहतर बनाना हो तो क्या सिर्फ आज का ही विकास काफी होगा, या फिर ऐसा विकास जरूरी है जिससे आने वाली पीढ़ियों की जरूरतें भी पूरी हो सके। यही सोच हमें सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ले जाती है। सरल शब्दों में कहें तो सतत विकास का मतलब है ऐसा विकास जिसमें वर्तमान की जरूरतें भी पूरी हों और भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों से भी कोई समझौता ना हो। यानी विकास भी हो, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग हो और समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। साथियों, आज जलवायु परिवर्तन, जल संकट, बढ़ता प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का लगातार कम होना पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में सतत विकास हम सभी की साझा जिम्मेदारी है, और जब बात बदलाव की आती है तो युवाओं का नाम सबसे पहले आता है। आज का युवा नई सोच रखता है, नई तकनीक को अपनाता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता भी रखता है। चाहे पानी हो, बिजली की बचत हो, प्लास्टिक का कम उपयोग करना हो, पेड़ लगाना हो, स्वच्छता को बढ़ावा देना हो या लोगों में जागरूकता फैलानी हो, हर छोटा कदम एक बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। यही नहीं, आज कई युवा पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, स्टार्टअप और सामाजिक नवाचार के माध्यम से भी देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि विकास के साथ साथ प्रकृति का भी सम्मान करेंगे और अपने छोटे छोटे प्रयासों से एक स्वच्छ, हरित और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएंगे। इसी सकारात्मक संदेश के साथ अब समय हो गया है अगले खूबसूरत गीत का।

साथियों, अब वक्त हो चला है रोजगार सूचना का। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी IBPS क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के माध्यम से देश के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में नियुक्तियां की जाएंगी। योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए IBPS की आधिकारिक वेबसाइट IBPS.in पर विजिट कर सकते हैं। आशा है आप इस जानकारी का जरूर लाभ उठाएंगे। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, एक बार एक व्यक्ति ने एक बुजुर्ग माली से पूछा, बाबा आप ये पौधे क्यों लगा रहे हैं? इनके बड़े होने तक तो शायद आप रहेंगे भी नहीं। माली मुस्कुराया और बोला, मैंने भी तो उन पेड़ों की छांव पाई है जिन्हें किसी और ने लगाया था। अब मेरी बारी है आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ जाने की। साथियों, यही सोच सतत विकास की असली पहचान है। आज हम जो छोटे छोटे अच्छे काम करते हैं उनका लाभ सिर्फ हमें नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है। चाहे एक पेड़ लगाना हो, पानी बचाना हो, तकनीक का सही उपयोग करना हो या किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता क्योंकि बदलाव हमेशा एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। तो आइए आज हम सब एक छोटा सा संकल्प लें कि हम अपने जीवन में ऐसे काम जरूर करेंगे जिन पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सकें। इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: तुझे सोचूं तो फूट जाता हूं।
1: साथियों, खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। जल्द ही फिर मुलाकात होगी नई जानकारी और मधुर गीतों के साथ। तब तक के लिए आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति मीना को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

0: ये था कार्यक्रम युवाणी और ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।
1: FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम संगीत सरिता।

0: परवेज मेहंदी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे मुनीर नियाजी की लिखी ये गजल। संगीत परवेज मेहंदी का था।
1: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
2: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
3: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
1: बात बन जाए।
3: 287 मेरी चाय।
0: संगीत सरिता कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पार्वती खान से इब्राहिम अश्क की लिखी ये गजल। संगीत पार्वती खान का है।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। सोमवार दिनांक 10 अगस्त 2026 को प्रातः 8:30 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बिंदिया के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम हेलो सखी की रिकॉर्डिंग कल बुधवार दिनांक 5 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे से की जाएगी। श्रोता अपने कॉल लगाकर कार्यक्रम में सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। कॉल करने के लिए फ़ोन नंबर है 240-845। सागर का एसटीडी कोड है 07582। कार्यक्रम का प्रसारण दिन और समय सोमवार 10 अगस्त 2026 प्रातः 8:30 से बिंदिया कार्यक्रम में हेलो सखी। सूचना समाप्त हुई।

हसरत जयपुरी का कलाम अभी आप सुन रहे थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में। संगीत सरिता कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं नीना और राजेंद्र मेहता से कुमार शैलेंद्र की ये गज़ल। संगीत महेंद्रजीत सिंह का है।

0: कुमार शैलेंद्र की नज़्म अभी आप सुन रहे थे नीना और राजेंद्र मेहता की आवाज़ों में। संगीत महेंद्रजीत सिंह का था। इस नज़्म के साथ ही संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6 बजने हुए हैं, अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारत में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा करार दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत

0: योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल अब शून्य हो गया है। उन्होंने कहा कि ये योजना लोगों को सशक्त बना रही है। ये योजना भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 25,000 से अधिक केंद्रीय सरकारी भवन और 81,000 से अधिक राज्य सरकारी भवन अब छतों पर लगे सौर पैनल से संचालित हो रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार को बनाए रखा है। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए LPG और LNG की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सरकार परीक्षण अवसंरचना को और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल शुरू करेगी। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली में कहा कि ऐसी अवसंरचना से नमूनों के परीक्षण की लागत और कम होगी, इससे सटीकता और पता लगाने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल DY पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों, विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक कम होकर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापोल थोंगसा नला और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम के पहले भाग में हमने किशोर कुमार पर केंद्रित गीत आपको सुनवाए और अब सुनिए नए गीत।

शान की आवाज में आप सुन रहे थे प्यार में कभी कभी फिल्म से ये गीत। विशाल राज कौशल ने इसे लिखा, विशाल शिराज सम्राट का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, तराने नए पुराने।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में आप सुन रहे थे तेरे नाम फिल्म का ये गीत, समीर के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत। कार्यक्रम तराने नए पुराने विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, कार्यक्रम तराने नए पुराने।

सुखविंदर सिंह का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। उनके साथ कुछ साथियों की आवाज भी इस गीत में आपने सुनी। मीनाक्षी फिल्म के इस गीत में संगीत ए आर रहमान का। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, तराने नए पुराने।

0: कलयुग फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम तराने नए पुराने विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय,
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने।

देवदास फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। पंडित बिरजू महाराज, कविता सुब्रमण्यम और माधुरी दीक्षित की आवाजें, पंडित बिरजू महाराज के बोल और उन्हीं का संगीत। इसके साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6:30 हो चुके हैं। पेश हैं सदाबहार गीत।

किशोर कुमार की आवाज में जवानी दीवानी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत आर टी परमन का। सदाबहार गीतों के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में तेरे मेरे सपने फिल्म का गीत। गीतकार नीरज हैं, संगीत एस टी परमन का है।

तेरे मेरे सपने फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। सदाबहार गीतों के कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में आरडी परमन के संगीत में ये गीत। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी। फिल्म का नाम है आ गले लग जा।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में साहिर लुधियानवी का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीत आर डी बर्मन का था, फिल्म का नाम था आ गले लग जा। इस गीत के साथ ही सदाबहार गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

0: लोकरंग कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बाबूलाल मस्ताना से ये लोक शैलीबद्ध गणेश वंदना।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
2: तो मिलेगी ना,
1: पर कैसे?
2: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
3: लोक रंग कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पुरुषोत्तम लोधी से ये लोक भजन।

केशव सुलेरे के गाए इसी वर्षा गीत के साथ लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7 बजने को हैं हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छुपा नहीं सकते।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि ये संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है और न ही वो मंच पर व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन करती है। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से अधिक परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का लाभ मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है। ये भारत

को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में भी गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी

0: धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डी वाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक लुढ़ककर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री मांडविया ने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापोल थोंगसांगना और चालो एम्पोन चारोइन केतामोर्न को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको जानकारी देते हैं आज के बाकी कार्यक्रमों की, साथ ही कल के मुख्य कार्यक्रमों की। शुरुआत करते हैं आज के बाकी कार्यक्रमों से। अब से कुछ ही देर में यानी 7:10 पर होंगे प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से। लोक संगीत कार्यक्रम 7:20 पर होगा। 7:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कार्यक्रम होगा किसानवाणी। संसद समीक्षा दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत 8:15 पर। संगीत सरिता कार्यक्रम 8:30 से। समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से 8:45 पर और 9 बजे होंगे आपकी फरमाइश के फिल्मी गीत। कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत। 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण होगा दिल्ली केंद्र से रात्रि 10 बजे से। हिंदी में समाचार दिल्ली से 11 बजे और 11:05 पर। अंग्रेजी में समाचार और 11:10 पर हमारा आज का प्रसारण समाप्त होगा।

आइए अब एक नज़र डालें कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ 6:30 से 6:40 पर होंगे भूले बिसरे गीत। रोजाना का क्रम सुबह सुबह 7 कृषि संकेत 7:05 पर। 7:20 पर होंगे मनचाहे गीत और संगीत सरिता कार्यक्रम होगा 7:45 से। लोक संगीत कार्यक्रम का वक्त होगा 8:15। चित्रपट संगीत 8:45 से। स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन ये प्रायोजित कार्यक्रम सुबह 10:05

इंटरनेट पर होगा। फोन करें कि सुनेगा पुनः प्रसारण सुबह 10:10 से। 11 बजे से होगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी 5:02 पर भोपाल केंद्र से। संगीत सरिता 5:30 से। कल शाम 6:30 पर सदाबहार गीत लोकरंग कार्यक्रम 6:45 पर। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा कार्यक्रम ग्राम सभा कल शाम 7:30 से। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा, चित्रपट संगीत 8:15 पर और संगीत सरिता 8:30 से। कल रात्रि 9 बजे होगा कार्यक्रम मन चाहे गीत। तो ये थी जानकारी आज और कल के कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। FM बैंड 102.6 MHz पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से होंगे थोड़ी ही देर में।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसद के मानसून सत्र में फिर हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित। प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, स्वास्थ्य, खेल और डिजिटल सेवाओं से जुड़े बड़े फैसले। कवच योजना समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मुंबई दौरा। ग्वालियर में प्रस्तावित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए निवेशकों से किया संवाद। और गायक किशोर कुमार की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र में आज भी हंगामा जारी रहा, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही बुधवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष नीट पेपर लीक और जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने सांसदों को सरकार की प्रमुख योजनाओं और हालिया मुक्त व्यापार समझौतों की जानकारी भी दी। गृह मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2019 से अब तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया है, जिनमें आतंकवाद, गैंगस्टर, आर्थिक अपराध, मादक पदार्थ तस्करी, हत्या, दुष्कर्म और पॉक्सो मामलों के आरोपी शामिल हैं। सरकार ने बताया कि 2019 से 2026 के बीच भगोड़ों की 17,874 रुपये की संपत्ति जब्त की गई और 18,762 करोड़ रुपये की राशि वापस हासिल की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में किसानों, स्वास्थ्य, खेल और डिजिटल सेवाओं से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सहकारिता विभाग की कवच योजना को मंजूरी मिली, जिससे करीब 5,000 किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 2026 से 2031 तक 12,517 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश में खेल सुविधाओं के विकास के लिए करीब 2,500 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई। स्टेट डाटा सेंटर के उन्नयन के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपये और मलेरिया नियंत्रण के लिए करीब 1,700 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया,
1: जनजाति कार्य विभाग में शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना भी प्रारंभ हो रही है। जो सहायक शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं और उच्च श्रेणी के या फिर माध्यमिक शिक्षक, इनको 30 वर्ष की सेवा के बाद तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलने जा रहा है।

0: स्कूल शिक्षा विभाग और अन्य विभागों में पहले से ही चौथा समयमान वेतनमान प्राप्त उनको हो रहा है, इसलिए जनजाति कार्य विभाग में भी 1 जुलाई 2023 या उसके बाद 35 साल की सेवा पूर्ण करने पर चौथे क्रमोन्नत वेतनमान देने का प्रस्ताव रखा गया है।
1: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज निवेश मिशन के तहत मुंबई पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दूर संचार विनिर्माण क्षेत्र के निवेशकों की पहली रोड शो और निवेशक बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में ग्वालियर में प्रस्तावित देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से सीधे संवाद कर प्रदेश की औद्योगिक नीतियों और निवेश अनुकूल माहौल की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इस दौरान देश की कई प्रमुख दूरसंचार कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
3: बदलते दौर में राज्यों के बीच भी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए मध्यप्रदेश ने कई रिकॉर्ड बनाए। मध्यप्रदेश सरकार कोशिश कर रही कि सभी प्रकार के अनुकूलता के अवसरों को यथार्थपरक योजनाओं के बलबूते पर उनको भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए राज्य को नंबर वन के राज्य में ले जाएं। तो आइए हम सब मिलकर के आज के इस अवसर का लाभ लें।
1: स्वर सम्राट किशोर कुमार की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे दिन समाधि परिसर में उनके सदाबहार गीत गूंजते रहे और संगीत प्रेमियों ने उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। समाधि स्थल पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों ने किशोर कुमार के लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने केक काटकर जन्मोत्सव मनाया। अब से कुछ देर बाद किशोर नाइट का आयोजन होगा, जिसमें गायक पी गणेश और प्रीति जोशी प्रस्तुति देंगे। दतिया उपचुनाव में हार के बाद भाजपा में मंथन तेज हो गया है। आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निवास पर हुई बैठक में हार के कारणों और भीतरघात की शिकायतों पर चर्चा हुई। भाजपा ने हार की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति बनाई है, जो जमीनी रिपोर्ट तैयार करेगी। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि अनुशासन तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को अगस्त और सितंबर की राशन सामग्री 31 अगस्त तक हितग्राहियों को देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक राशन का 100% उठाव कर उचित मूल्य दुकानों पर भंडारण पूरा किया जाए। अंत्योदय योजना के परिवारों को 35 किलो और प्राथमिकता के परिवारों को 5 किलो प्रति सदस्य राशन दिया जाएगा। दोनों श्रेणी के हितग्राहियों को 1 किलो नमक भी मिलेगा। राशन वितरण के समय POS मशीन में 2 बार बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। राशन परिवहन की GPS से निगरानी होगी और गड़बड़ी मिलने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रीवा एयरपोर्ट पर 9 अगस्त से नई विमान सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। अब रीवा से कोलकाता और भोपाल के लिए 72-सीटर विमान उड़ान भरेंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात कर शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नई उड़ान सेवाओं से विंध्य क्षेत्र में व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का राजा स्वरूप में विशेष श्रृंगार किया गया। वहीं रिमझिम बारिश के बीच समर्पण कांवड़ यात्रा निकली, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। त्रिमणी घाट से शुरू हुई यात्रा में भक्त मां शिप्रा का जल लेकर महाकाल मंदिर पहुंचे और जलाभिषेक किया। भस्म आरती में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में फिलहाल मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। पिछले 4 दिनों से प्रदेश में कहीं भी तेज बारिश नहीं हुई है और ज्यादातर इलाकों में सिर्फ बादल छाए रहने या हल्की बूंदाबांदी का दौर चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल ऐसा ही मौसम बना रहेगा। हालांकि 6 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में फिर से तेज बारिश शुरू हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिले के विभिन्न विकास खंडों में 10 से 14 अगस्त तक रोजगार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ के जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 अगस्त कर दी गई है। अशोकनगर जिले की आदिवासी बस्ती बमनावर के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज बाल चौपाल का आयोजन किया गया। राजगढ़ में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन 9 अगस्त को किया जाएगा। मंडला में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत आगरमालवा जिले में 7 अगस्त से विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण में नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। तुम भी अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत।

लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राधा खरे से ये सावन गीत। आइए अब सुनते हैं जगदीश कुमार जोशी से ये चौकड़िया।

0: जगदीश कुमार जोशी के गाए इसी चौकड़िया के साथ लोक संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7:30 होने को हैं। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: समाचार समाप्त भए। बुंदेली समाचार।
2: और लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। हमारे सभी श्रोता और कृषक भैया बहनों को दो ही हाथ जोड़ के राम राम। हम हैं अमृता जैन, आज की ई किसान वाणी कार्यक्रम में आपकी अपनी साथी। भैया बहनों, किसान वाणी कार्यक्रम प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आकाशवाणी भोपाल केंद्र से संजा के 7:30 से 8 बजे तक प्रस्तुत करो जे है, जी में हम बातें करेंगे खेती किसानी की तथा मौसम की, और ऐसी बातें जो हमारे कृषक भैया बहनन के लाने लाभकारी हो। कार्यक्रम में बातें हुई है जो आपके लाने अत्यंत महत्वपूर्ण हो तथा संगे संगे जो सरकारी योजनाएं हैं और अन्य खेत खलिहान से जुड़ी सभी चर्चाएं हम अपने कार्यक्रम किसान वाणी में करेंगे। तो भैया बहनों, जब आज के ये अंक में आप सबसे जुड़ गए हैं तो सबसे पहले

0: ले हम चर्चा करेंगे कृषि में सेंसर तकनीक पे। आज हम सब देख रहे हैं कि खेती करवे के लाने हमें केवल मेहनत नहीं करने हैं, बल्कि सही तकनीकों को अपना के आधुनिक व सटीक खेती करने हैं, जिसे हमारी कृषि उन्नत बने। और ऐसी ही तकनीक है कृषि में सेंसर तकनीक। अब बात करें कि जब तकनीक के द्वारा हम कैसे लाभ ले सकते हैं और का का फायदे हैं, तो हम आप लोगों को बता दें, इस तकनीक के द्वारा हम मृदा में नमी और तापमान कैसो है इसकी जानकारी ले सकते हैं। हमारी मृदा में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है और कौन से पोषक तत्व भरपूर मात्रा में है इसकी जानकारी हमें मिलत है, जिसे हम इन जानकारी के माध्यम से आवे वाई जो हमारी फसल है वह हमें कौन सी लगाने हैं और इन पोषक तत्वों के आधार पे कौन सी फसल है जो हमें उन्नत और अच्छी आय देगी, जहाँ हम जान सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब फसल अच्छी हुई है, लागत कम हुई है, खेत लहलहाएंगे, तो हमारे कृषक भैया बहन तरक्की करेंगे, उन्नत बनेंगे। अब भैया बहनों बात करें जा तकनीक काम कैसे करते हैं, तो भैया बहनों कृषि सेंसर तकनीक के कछु प्रकार हैं, जैसे कि मृदा सेंसर, मौसम सेंसर और फसल सेंसर। ये तकनीकें कृषकों को कब पानी और खाद देने हैं जो बताते हैं। हम यदि इन अलग अलग सेंसरों के बारे में बात करें, तो भैया बहनों मृदा सेंसर से हम मृदा की नमी और आर्द्रता नाप सकते हैं, जिसे हमें कब सिंचाई करने हैं इसकी हम सही योजना बना सकते हैं। इसके अलावा मौसम सेंसर से हम हवा की नमी, तापमान और वर्षा व मौसम के बदलाव की जानकारी ले सकते हैं। और यदि बात करें हम फसल सेंसर की, तो इसे पौधों की बीमारी और वृद्धि पे नजर रखी जा सकते है। मतलब कि जो कहें कि इस तकनीक से पानी को सही उपयोग होते है, पोषक तत्वों व खाद की कितेक मात्रा हमें खेतों में डालने हैं जो हमें पतो लगते हैं, और फसलों की अच्छे से देखभाल भी होते हैं। तो ये तकनीक के बारे में यदि आपको और जानकारी लेने हैं, तो आप नजदीकी कृषि केंद्रों पे जाके जानकारी ले सकते हैं। अब भैया बहनों अपन बात जब हम तकनीकों की कर रहे हैं, तो हमें जो भी देख रहे हैं कि हमारे कई कृषक भैया बहनों ने सोयाबीन फसलों की बुवाई करी है, और अबे जो सावन को मौसम जो वर्षा ऋतु चल रही है इको देखत भए हमारी फसलों पे कई कीट व अन्य समस्याएं आ सकत हैं। तो चलो आज जानत है कि कैसे सोयाबीन फसल में समन्वित कीट व व्याधि प्रबंधन करके हम अपनी फसल को बचा सकते हैं, और ई के बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र पाटिल, और उनसे भेंट कर रही हैं हमारी बहन पूनम सरावगी। तो सुनत है जा भेंट वार्ता।
1: हमारे किसान भाई बहनों ने अपने खेत में सोयाबीन की बुआई कर दी है। पौधे इस समय फूल आने की अवस्था में हैं। ऐसे में सोयाबीन में समेकित कीट प्रबंधन किया जाना बहुत ही जरूरी है। इसके लक्षण पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए बिना कीटों की संख्या को आर्थिक रूप से क्षति स्तर के नीचे रखना आवश्यक है। इसके लिए हम कौन से उपाय कर सकते हैं, कौन सी हम विधियां अपना सकते हैं, इसी विषय पर हमने और जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर देवेंद्र पाटिल को। आप कृषि विभाग भोपाल में स्टेट कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
1: सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सोयाबीन में समेकित कीट प्रबंधन एवं व्याधि प्रबंधन क्या है और इसका क्या महत्व है?
2: सोयाबीन फसल में अगर हम समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन की बात करें, तो आम तौर पर किसान साथी केमिकल या पेस्टिसाइड दवाइयों का उपयोग करते हैं
1: जी।
2: पर जब हम कीट एवं रोग प्रबंधन की बात करते हैं, तो उसकी तीन या चार प्रकार की जो विधियां होती है उनको अगर हम एक साथ प्रयोग करके कीट या बीमारी नियंत्रण के लिए करते हैं, तो हम उसी को समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन करते हैं, जिसमें भौतिक क्रियाएं होती है, मैकेनिकल कंट्रोल होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, और अंत में जो साइन पर जाने की बात आती है। तो इसी विषय में आज हम किसान साथियों से बात करेंगे कि हम सर्वप्रथम हमारी जो जैविक विधियां होती है कीट नियंत्रण की या बीमारी नियंत्रण की, उनका पहले हम उपयोग करें, और परिस्थिति अगर ऐसी हो कि अगर हमारी जैविक विधियों से या कल्चरल जो हमारी विधियां हैं उनसे अगर कीट नियंत्रित नहीं हो रहे हैं, तो अंत में जो अनुशंसित की गई कीटनाशी है हम उनका उपयोग करें। तो इसी को हम समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन करते हैं, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि हम आज सिर्फ रासायनिक दवाइयों से अगर कीटों को नियंत्रित करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी को भी नुकसान हो रहा है, हमारे पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। तो इसका उद्देश्य यह है कि पर्यावरण की सुरक्षित रखने के हिसाब से भी हम समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन की बात करते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि सोयाबीन की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट कौन कौन से हैं और उनकी पहचान हम कैसे करें?
2: देखिए, सोयाबीन की फसल कीट एवं रोगों के प्रति बहुत ही हाईली सेंसिटिव फसल होती है और जब फसल अंकुरित होता है तब से ही इसमें कीट एवं रोगों का प्रकोप चालू हो जाता है। खास तौर पर जब ये सोयाबीन 15 से 20 दिन या 25 दिन की अवस्था पर पहुंचता है
1: जी।

0: तो उस समय इसमें तना मक्खी, सफेद मक्खी, कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। इसके बाद जैसे ही हमारी सोयाबीन की फसल जैसे बढ़ती है, उसके बाद सेमिल ऊपर एक इल्ली होती है, इल्ली का प्रकोप होता है। उसके बाद अलसी की इल्ली होती है, तो अलसी की इल्ली भी सोयाबीन में देखने को मिल रही है। इसके अलावा तम्बाकू की इल्ली, तो ये तमाम प्रकार के जो कीट हैं ये हमें सोयाबीन की फसल में देखने को मिलते हैं।
1: जी, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तना मक्खी और चक्रभ्रंग सोयाबीन को किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं और इनका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं?
0: जैसे आपने बताया, तना मक्खी एवं गर्डल बीटल को ही हम चक्रभ्रंग कहते हैं
1: जी।
0: तो ये दो बहुत ही मुख्य कीट हैं सोयाबीन की फसल में, और ये दोनों कीट फसल की शुरुआती अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले तना मक्खी की बात करता हूँ। तना मक्खी का जो कीट होता है, तो इसकी खी ना होके इसकी सबसे पहले एक छोटी सी इल्ली होती है, बहुत बारीक महीन होती है, पीले कलर की होती है। यह तने के अंदर सुरंग बनाकर तने के अंदर रहती है और वहीं पर अपना ये जीवन चक्र पूरा करती है। अंदर ही अंदर अंडे देके अंडे से इल्ली बनती है और वहीं पूरे तने को खोखला कर पूरे पौधे को सुखा देती है, जिससे कि हमारा जो है कि पौधा नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम गर्डल बीटल की बात करें, तो गर्डल बीटल चक्रभ्रंग पौधे के अंदर दो प्रकार की कट बनाता है, रिंग बनाता है ऊपरी सिरे पर, और ऊपरी सिरे से रिंग बनाकर पौधा वहां से मुरझा जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा पौधा धीरे धीरे जो है कि इसमें गर्डल बीटल में भी सूख जाता है। तो अब इसको हम इस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं कि सबसे पहले हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें जो हमारी सस्य क्रियाएं होती है या हमारी बायोलॉजिकल विधियां होती है, इनका हमें सबसे पहले इनके प्रबंधन की बात करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम हम जब बीज बोने की बात करते हैं, तो बीज हमारा जो है कि स्वस्थ बीज होना चाहिए, कीट एवं रोग से मुक्त होना चाहिए, ऐसे बीज का चयन करें। इसके साथ ही साथ बीज उपचार सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर शुरुआती अवस्था में अगर हम बीज को उपचारित कर देते हैं, तो बाद में कीट एवं रोगों से हम हमारी फसल को मुक्त कर सकते हैं। स्टिकी ट्रेप अगर हम एक एकड़ में 6 से 8 स्ट्रिप्स लगा दें, तो उसपे क्या होता है कि पीले कलर की स्ट्रिप्स जो होती है तना मक्खी और सफेद मक्खी के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, और उस पीले कलर पर अट्रैक्ट होकर उस ट्रेप पर जाके बैठ जाती है। तो अगर हम ऐसे एक एकड़ खेत में अगर 6 से 8 स्ट्रिप्स लगाते हैं, तो हमारे सोयाबीन की फसल में जितने भी सफेद मक्खी है या तना मक्खी है, तो उस पर आकर बैठेंगे। तो इस प्रकार से हम इनको नियंत्रित कर सकते हैं। अंत में अगर इनसे भी अगर हमारा अंतर नहीं हो रहा है, तो जो अनुशंसित की गई दवाइयां हैं, जिसमें थायमेटोक्सम प्लस लिम्बडा साइलोथ्रिन की 50 ml मात्रा प्रति एकड़ उपयोग करें, या फिर बीटा साइप्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड की 140 ml मात्रा प्रति एकड़ उपयोग करें, या फिर आइसोसाइफ्लोसोरम की 200 ml मात्रा प्रति एकड़ करें, इनमें से किसी एक दवाई का उपयोग करके तना मक्खी एवं गर्डल बीटल चक्रभ्रंग को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।
1: सर, ये बताइए, तंबाकू की इली और सेमी लूपर से सोयाबीन को क्या नुकसान होता है और इनका प्रबंधन कैसे किया जाता है?
0: जब हमारी फसल फूल के बाद वाली अवस्था में जैसे ही पहुंचती है, तब सेमी लूपर और तंबाकू की इली का प्रकोप हमें देखने को मिलता है। तो यह हमारी सोयाबीन की जो फसल में जो पत्तियां होती है, पत्तियों को खाती है, और उसके बाद जब फली में दाना बैठने लगता है, दाना आने लगता है, तो उस समय दाने को भी खाती है। तो इस प्रकार हमारी सोयाबीन की फसल को ये बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। और इनके नियंत्रण के लिए हम अगर बात करें कल्चरल विधियों में, तो किसान साथियों को इसके लिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई अपने खेतों में कराना बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा फेरोमेन ट्रैप आता है, जो कि जैविक विधियों के अंतर्गत हम उसका उपयोग करते हैं। फेरोमेन ट्रैप में अलग अलग जब हमारी इल्लियां होती है, उसका अलग अलग लेयर मिलता है। तो ऐसे ही अगर एक एकड़ में हम 4 से 6 फेरोमेन ट्रैप अगर हम लगा देते हैं, तो इल्ली बनने के पहले की जो उनकी अवस्था होती है, फ्लाई रहती है, तो मक्खी उस फेरोमेन ट्रैप में अट्रैक्ट होकर एक जगह उसे इकट्ठी हो जाती है। तो ऐसे पूरे खेत में अगर हम लगाते हैं, तो इस प्रकार से भी हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें अगर इससे भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब हम अनुशंसित जो कीटनाशी उन पर जाएं। इसके साथ ही साथ हम अपने खेत में किसान साथी इसमें टीब आकार की जो खुटियां होती है, उनको भी अगर हम खेत में 8 से 10 खुटियां प्रति एकड़ अगर लगा देते हैं, तो जो पक्षी होते हैं, पक्षी उस टी आकार की जो खुटियां होती है उस पर आकर बैठेंगे, और उनको जो इल्ली दिखती है, तो इल्ली को खाते हैं। तो इस प्रकार से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी सर, ये बताइए, सोयाबीन में सफेद मक्खी से हमें क्या नुकसान होता और इसका पीला मोजेक रोग से क्या संबंध है?
0: सफेद मक्खी शुरुआती अवस्था से ही सोयाबीन या अन्य फसल जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, उसमें पत्तियों से रस चूसती है, और रस चूसने के उपरांत जो उसका क्लोरोफिल होता है पौधे के पत्तियों में, खत्म हो जाता है और पौधा पीलेपन की ओर चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पौधे को पूरा पीला कर देती है रस चूसकर सफेद मक्खी। और जब हम इसकी संबंध की बात करें मोजेक रोग से, तो मोजेक फैलाने का काम भी क्या करती है, सफेद मक्खी करती है, क्योंकि मोजेक जो बीमारी है यह वायरस

0: से होती है वो, और वायरस फैलाने का जो काम करता है वो सफेद मक्खी करती है, क्योंकि एक पौधे से अगर उसने रस चूसा और वहां पर उस वायरस मोजेक अगर बीमारी से ग्रसित है पौधा, तो वहां से वो दूसरे पौधे पर जब जाएगी तो वहां का जो मोजेक वायरस है वो दूसरे पौधे पर ले जाके छोड़ेगी। इस प्रकार ये मोजेक रोग से इसका सीधा सीधा संबंध है।
1: जी सर, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पीला मोजेक का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं?
0: पीला मोजेक बीमारी का जो प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं, तो सर्वप्रथम इसमें हम हमारा जो बीज का चयन करते हैं वो स्वस्थ बीज होना चाहिए, बीज रोग रहित होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जब हम बुआई करते हैं, तो बुआई जब करते हैं तो कई किसान साथी आवश्यकता से अधिक बीज दर का उपयोग करते हैं, या बुआई की दूरी है वो बहुत पास कर देते हैं, तो जो खेत के अंदर पौध संख्या होती है वो आवश्यकता से अधिक होती है, तो हम जो अनुशंसित की गई बीज दर है उस बीज दर के अनुसार बुआई करें, जो अनुशंसित की गई बुआई दूरी है हम उसी बुआई दूरी के अनुसार बुआई करें। इसके अलावा जो जैसे मैंने बताया था कि हम फेरोमेन इसका एलो स्टिकी ट्रैप का उपयोग करें, और इसके साथ ही साथ जो अनुशंसित की गई जो दवाइयां हैं, जैसे मैंने पूर्व में बताई थी कि थायमेटोक्सम प्लस लेमड़ा साइलोथ्रिन या बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड, इन दवाइयों का अगर हम इसमें स्प्रे करते हैं तो इसको आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।
1: जी अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कॉलर रोग का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है?
0: कॉलर राइट बीमारी जब बुआई होती है उसके करीब 8 से 10 दिन के उपरांत ही हमें खेत में देखने को मिल जाती है। पौधा जर्मिनेट होकर जैसे बाहर निकलता है तो जिस लाइन में हमने सोयाबीन का बीज बोया था उसी लाइन में क्रमशः हमें पौधे सूख के गिरते हुए देखने को मिलते हैं। ये इसका प्रमुख लक्षण है कॉलर राइट का, और ये मुख्यतः शुरुआती अवस्था में देखने को मिलता है। तो इसका सबसे सटीक जो उपचार है या सटीक अगर प्रबंधन है तो वो है बीज उपचार, क्योंकि अगर किसान साथी इसका बीज उपचार सही ढंग से या सही तरीके से करते हैं तो यह जो कॉलर राइट बीमारी देखने को नहीं मिलती है। अगर उसके बाद भी अगर हमें देखने को मिलता है इस बीमारी के लक्षण, तो एक फफूंदनाशी जो होता है कार्बेंडाजिम, तो इसकी 200 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के दर से अगर हम इसका छिड़काव करते हैं तो कॉलर राइट को नियंत्रित किया जा सकता है।
1: जी सर, चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सोयाबीन में कीटनाशक और फफूंदनाशक का प्रयोग करते समय हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि किसान साथियों को जानना बहुत आवश्यक है कि हम जो भी कीटनाशी या फफूंदनाशी या अन्य दवाएं चाहे खरपतवार नाशी हो, जब भी हम इनका उपयोग करते हैं तो इसके साथ जो पानी की मात्रा है उसकी भी अनुशंसा की जाती है, क्योंकि कई बार हमें ये देखने को आता है कि कई किसान साथी अनुशंसा से कम पानी की मात्रा का उपयोग करते हैं, तो उस स्थिति में हमारी फसलों पर उस दवाई का विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। तो हमारी फसल जो किसान साथियों की जो फसल होती है उस पर उसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे फसल जलने लगती है या सूखने लगती है। तो ये सब चीजें ना हो उसके लिए किसान साथियों को मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जो अनुशंसित की गई पानी की मात्रा है 100 से 150 लीटर प्रति एकड़ मात्रा पानी की उपयोग होना चाहिए, और जो दवाइयां हैं कीटनाशी है या फफूंदनाशी उनकी दक्षता या उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए जो अनुशंसित किया गया नोजल है होलोकोन नोजल का उपयोग करें। होलोकोन नोजल मतलब बहुत बारीक फुहार वाला नोजल होता है, अगर उसका उपयोग करते हैं तो हमें इन दवाइयों का जो हम उपयोग करना चाह रहे हैं तो उसके हमें बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, और उसकी जो दवाइयों की उपयोग क्षमता या दक्षता है वो भी हमें अधिक देखने को मिलेगी।
1: तो सर बड़ी ही अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान श्रोता अपने सोयाबीन की फसल को बेहतर बनाने में इस जानकारी का अवश्य इस्तेमाल करेंगे। आप हमें जानकारी दे रहे थे सोयाबीन की फसल में समन्वित कीट प्रबंधन इस विषय पर। डॉक्टर पाटिल, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे किसान भैया बहनों को इतनी बढ़िया जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो भैया बहनों देखो, अब अपन ने जानी सोयाबीन फसल में समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन की जानकारी डॉक्टर देवेंद्र पाटिल से, जिनने बहुत अच्छे से हमें सभी बातें बताई हैं, और उनसे भेंट कर रही थी हमारी बहन पूनम सरावगी। उम्मीद है डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई जब महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लाने लाभकारी रहे है, और आप सभी इन बातों को ध्यान रख के अपनी खेती में जो कीट व रोगों के जो भी प्रकोप हो रहे हैं उनसे बचाव हेतु सही उपाय करेंगे। अब भैया बहनों देखो, अपनी चर्चाएं हो रही हैं, भेंट वार्ता सुन रही, और आप सोच रहे हुई हो कि अमृता बहन जानकारी तो बड़ी नौनी दे रही हैं, मनो कछु मनोरंजन हो जाए तो आनंद ही अलग हुई है। सो भैया बहनों हम भी जय बात सोच रहे हैं, चलो तो सुनत है एक सावन गीत जी, एक गाँव है दया भार्गव और उनकी साथियों ने।

एक मधुर लोकगीत के संगे अब आप लोगन से एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करवो और चाह रहे हैं, और जो विषय है स्वच्छ पेयजल। अब देखो भैया बहनों, जब बात ही हमने पेयजल की करी, मतलब के पीवे के पानी की, और जो आप और हम सबको जान वो बहुत आवश्यक है, स्वच्छ व साफ पानी पे सभी को अधिकार है। हम जो भी जानत हैं कि दूषित पानी पीवे से अनेक बीमारियां होते हैं और जो हमें आगे चल के हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं दे सकत है। इसे हमें दूषित जल से बचाव करने चाहिए और स्वच्छ जल को उपयोग करने चाहिए। और अबे देखो, वर्षा ऋतु चल रही है तो ऐसे में हम जानते हैं कि संक्रमण वाली बीमारियां बहुत जल्दी होते हैं, संक्रमण जल्दी होते हैं। तो खास तौर पे ये मौसम में डायरिया, टाइफाइड, दस्त, उल्टी और पेट से जुड़ी अनेक समस्याएं बहुत जल्दी से हो जाते हैं, और यदि हम साफ जल को उपयोग करेंगे तो हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। तो हम तो जो ही कहेंगे कि पानी को उबाल लें और अच्छे से ठंडो करें, फिर यदि हम इको उपयोग करते हैं तो जल हमारे लाने अत्यंत लाभकारी हुई है। अच्छा भैया बहनों, बात हमने अपनी करी कि हमें स्वच्छ जल पीने हैं। मानो हमारे पशु हैं जो हमारे बाड़े में बने हैं, जो हमारी गौशालाओं में हैं, उनके लाने भी हमें स्वच्छ जल की व्यवस्था करने हैं, जिसे कि बेबी स्वस्थ रहें। और भैया बहनों, कथ है ना, पहलो सुख निरोगी काया। तो स्वच्छता से जुड़े और स्वच्छ जल ही पिए। अबे हम जो चर्चाओं के माध्यम से जो फसलों की बातें कर रहे हैं, तो हमारे कई कृषक भैया बहन ऐसे भी हैं जो बागबानी फसलें लगावे की

0: सोच रहे हैं या लगावे को उन्हें प्रबंधन भी कर लो हुई है। तो आज हम डॉक्टर कुंवर जी सिंह से जानेंगे कि बागबानी फसलों में सामायिक कार्य कैसे करने हैं, कौन कौन से करने हैं, इस विषय पे भी आज हम एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। सुनत है उनकी जानकारी।
1: किसान भाइयों, आज बात करेंगे बागवानी ध्यान की फसलों के लिए सामूहिक सलाह। देखिए किसान भाई, आप भी जानते हैं कि रोपाई द्वारा लगाई जाने वाली जो भी बागवानी फसलें हैं, जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन, गोभी के लिए नर्सरी की तैयारी महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए हमें 3-3.5 मीटर लंबा और करीबन 1.5 मीटर चौड़ा और जमीन से कम 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनी रहनी चाहिए। और खास तौर से इन सब्जियों के, जो टमाटर, मिर्च, बैंगन, गोभी की हम बात किए हैं, इनके संकर किस्मों की जो मात्रा आती है 10 ग्राम प्रति क्यारी के दर से हम बीज लगाते हैं। और एक हेक्टर के लिए इस तरह से अगर टमाटर की नर्सरी तैयार करना है तो 15 क्यारी लगेंगी टमाटर के लिए, बैंगन के लिए करीबन 20 क्यारियां की जरूरत पड़ेगी और गोभी के लिए करीबन 30 क्यारियों की आवश्यकता होगी। इस समय नींबू फसलों में फल जो बढ़ रहे हैं, जो है काम के टिकोड़े के बराबर, या कहना चाहिए कि बड़े बड़े नींबू के फल लगे हुए हैं, वो उस समय गिरते हैं। तो इनको गिरने से बचाने के लिए हमें तो 1.5 ग्राम 2,4-D या इसी के बराबर जिब्रेलिक अम्ल आता है, यानी दोनों में से कोई भी एक 2,4-D या जिब्रेलिक अम्ल जो है 1.5 ग्राम लगेगा। और 100 ग्राम कार्बेंडा जिम, ये फफूदनाशक है, ये 100 ग्राम। और 1 किलो यूरिया को 100 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो नींबू के जो फल गिरने की जो शिकायत है ये कम हो जाएगी और हर तरह से उसमें बीमारी और कीड़ों का प्रकोप भी कम रहेगा। इस समय हम देख रहे हैं कि आम के पेड़ों पर बगीचे लगाए हैं उसमें एक बंधा रोग है जिसको हम अंग्रेजी में माल फॉर्मेशन कहते हैं। ये आप लोग भी पहचानते हैं, जहाँ उसका जो गुच्छा बनता है, जहाँ आम के जो, तो वो गुच्छे में ही वो एक माइट होता है, कीड़े के बराबर है। हालांकि हम लोग कीड़े के ही नाम से जानते हैं, लेकिन वो हमारी भाषा में उसको हम माइट बोलते हैं, जिसको मकड़ी के कट ग्रुप में आता है। इसके जो ग्रसित हो जाती है तो पौधे दूसरे टहनियों में भी फैलाता है उस कीड़ के द्वारा, जिसको कि हम माइट बोलते हैं। या तो ऐसे जो ग्रसित पौधे हैं इस समय, उसको जरूर आप रोग ग्रसित जो शाखाएं हैं या फूलों को है जो काट करके उसको अलग कर दे। नींबू वर्गी में आप लोग भी जानते हैं, इस समय नींबू की तितली, खूब रंग बिरंग की तितली उड़ती है, वो अंडे रखती है और अंडे से ही एक इली निकलती है जो पत्ती को खा जाती है। शुरू में तो ऐसा लगता है कि चिड़िया ने बीट कर दिया, बीटता है, लेकिन वो इली है और वो इली मुलायम पत्तियों को खा करके बहुत नुकसान करती है। क्लोरोपाइरीफास भी जानते हैं, 25 cc का, ये 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़क देंगे तो इसका नियंत्रण होगा। किसान भाई, आप भी बहुत कुछ समझदार हैं और जानकारी रखते हैं, अनुभव है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बड़ी समस्या से आप राहत पा सकते हैं।
0: ई बागवानी फसलों में सामायिक कार्य विषय की जानकारी के बाद हमारे जो सभी भैया बहन हैं उन्हें महत्वपूर्ण कृषि सलाह दी जा रही है। आपने यदि अपने खेतों में सोयाबीन, धान व अन्य खरीफ फसलें लगाई हैं तो अपनी फसलों की निगरानी करें व ध्यान रखें कि उन पे कोई भी तरह के कीट व रोगों को प्रकोप न हो पाए। और यदि ऐसे कछु प्रकोप देखवे मिलत है तो मौसम साफ हो तो ऐसे में जैविक उर्वरक और कीटनाशकों को उपयोग करें। अपने भैया बहनों को हम और बता दें कि यदि आप अपनी फसलों को अधिक पैदावार देके बढ़ावो चाहते हैं तो आप फसल चक्र अवश्य अपनाएं। तो जाहती खेती किसानी से जुड़ी आज की सलाह। और भैया बहनों, अब किसान वाणी कार्यक्रम में आज ते कई, आपको आज को कार्यक्रम कैसो लगो और हमें का कछु नव अपने कार्यक्रम में करने चाहिए, आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पतो लिख लें, किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल, पिन कोड है 462002। भैया बहनों, अब ले रहे हैं आप लोगों से विदा। आप सबको ये चलती विरिया अमृता बहन की राम राम।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहा है?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, उष्णा अपने

0: बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहा,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए आप सुनते हैं संसद समीक्षा, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। उच्च सदन की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकदी और कीमती सामान की चोरी का मुद्दा उठाया, जिसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी बात रखने के लिए कहा। खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की कथित चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों पर लगे आरोपों की जाँच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति की अनुमति से बोलते हुए कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है, उसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब ये दल चंदा चोरी के मुद्दे पर नाटक कर रहे हैं। इस बीच द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सदस्य तिरुचि शिवा ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में ले जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच शून्यकाल में दो सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने देश में परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परिवहन आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन समय की आवश्यकता है। भाजपा की ही गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में कौशल विकास केंद्र खोलने की मांग करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं तथा शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि औरैया में बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। हंगामे के बीच ही सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू कराया। कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न भी पूछे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनके जवाब भी दिए। प्रश्नकाल के दौरान लगातार नारेबाजी और शोर शराबे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश की अनुमति से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और

चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने माना कि देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण नागरिकों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विलंब से जन्म और मृत्यु पंजीकरण कराने से होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि जिन बच्चों का जन्म किसी अन्य देश में हुआ है ऐसे बच्चों का भी जन्म भारत में दिखाया जाए और इसके लिए कानून की खामियों का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने आगाह किया कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी सही व्यक्ति के लिए कोई रोक नहीं है तथा इस प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में 3.5 लाख से अधिक पंजीकरण केंद्र हैं। उन्होंने सदन को सूचित किया कि देश में जन्म पंजीकरण स्तर 2014 में 86.6% था जो 2024 में बढ़कर 99.8% हो गया है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः 72.5% था जो बढ़कर 99.4% हो गया है। राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से देश और लोकतंत्र के साथ धोखा किया था। मंत्री ने कहा कि सरकार जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जन्म या मृत्यु होने के 2 वर्ष के बाद यदि सूचना दी जाती है तो ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही रजिस्ट्रार पंजीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में जन्म और मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर सूचना देने वाले मामलों में जो पुराने प्रावधान लागू हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने 2 साल से अधिक की अवधि वाले मामलों के लिए प्रावधानों में बदलाव करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि देश चाहता है कि भारत माता की गोद में पैदा होने वाली हर संतान का रजिस्ट्रेशन हो। ये मोदी सरकार का संकल्प है। साथ ही जिसकी मृत्यु हो जाती है और वो भूत बनकर तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का मतदाता बना रहता है ऐसे भूतों से देश छुटकारा चाह रहा है। राय ने कहा कि इसलिए समय से मृत्यु का पंजीकरण भी अत्यंत आवश्यक है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। उच्च सदन में ये विधेयक पारित होने के बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामा थमते न देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने आज विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। हालांकि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शोर शराबे के बीच ही सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के कारण पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा तो विपक्षी के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मैं आप सभी को बोलने का अवसर दूंगा लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्न उत्तर होते हैं और सभी से अनुरोध है कि कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मैंने कल भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों से ये अनुरोध किया था। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और चर्चा एवं संवाद के लिए है। ये नारेबाजी करने और तख्तियां लेकर आने का मंच नहीं है। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे।
सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि ये महत्वपूर्ण विधेयक है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए।

इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विपक्ष के जिन सदस्यों ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पेश किए जाने के विरोध में बोलने के लिए नोटिस दिया था, उन्होंने आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया। इस विधेयक का उद्देश्य संदाय एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करते हुए उन्हें सरल, स्पष्ट और अधिक प्रभावी बनाना है। ये मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। आयकर अधिनियम 2025 तथा आयकर अधिनियम 1961 में कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत कर निर्धारण, अपील, दंड और अभियोजन से संबंधित प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और सरल बनाया गया है। कुछ मामलों में दंड की राशि बढ़ाने तथा कुछ मामलों में कर की दरों का युक्तिकरण करने का प्रस्ताव है। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिस्थितियों में दंड एवं अभियोजन से राहत का दायरा बढ़ाया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल भले ही नहीं चल सका, लेकिन सरकार ने कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वर्ष 2024 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में 254 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने जानकारी दी कि इन लोगों के कब्जे से 40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। मंत्री के अनुसार 103 विदेशी नागरिक अनिवार्य किराएदार सत्यापन के बिना किराए के मकानों में रह रहे थे। इस मामले में 63 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक अन्य लिखित उत्तर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एनक्रिप्टेड संचार एप्लीकेशन तथा डार्कनेट के माध्यम से संचालित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने के लिए खुफिया जानकारी आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि डार्कनेट आधारित मादक पदार्थ तस्करी तथा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होने वाले लेन देन की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल संबंधी विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सभी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में समर्पित डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी सेल स्थापित करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, उन्नत तकनीकों तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से साइबर सक्षम संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देशभर में इस वर्ष 1 मार्च से अब तक लू के कारण 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4,853 मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में लू से सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जबकि तेलंगाना में सबसे अधिक मामले सामने आए। राय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय ने 2026-31 अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन कोष SDRF तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष NDRF के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों के अंतर्गत लू और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब SDRF और NDRF के माध्यम से राहत सहायता प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही लू से बचाव और उसके प्रभाव को कम करने से संबंधित परियोजनाओं को भी आपदा न्यूनीकरण निधियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हालिया गिरावट का मुख्य कारण भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश की वृद्धि है। उनके अनुसार शुद्ध FDI वर्ष 2024-25 में घटकर 1 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया, जबकि ये 2023-24 में 10.2 अरब डॉलर तथा 2022-23 में 28 अरब डॉलर था। जितिन प्रसाद ने कहा कि शुद्ध FDI प्रवाह में हालिया रुझान भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेश की बढ़ती वापसी से जुड़ा हुआ है। जितिन प्रसाद ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ से देश का निर्यात 2025-26 में 11

0: 8% बढ़कर 16,36,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि एसीजेट की क्षमता का बेहतर उपयोग करने, निवेश आकर्षित करने तथा उन्हें घरेलू आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न कदम उठाती रहती है ताकि इन निर्यात क्षेत्रों की परिचालन दक्षता में वृद्धि हो सके। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण लगातार 12वें दिन आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आप सुन रहे थे संसद समीक्षा, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 8:15 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

आक्रमण फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अगले गीत से पहले श्रोताओं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। सोमवार दिनांक 10 अगस्त 2026 को प्रातः 8:30 बजे से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बिंदिया के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम हेलो सखी की रिकॉर्डिंग कल बुधवार 5 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे से की जाएगी। श्रोता अपने कॉल लगाकर कार्यक्रम में सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। कॉल करने के लिए फ़ोन नंबर है 240-845। सागर का एसटीडी कोड है 07582। कार्यक्रम का प्रसारण दिन और समय सोमवार 10 अगस्त 2026 प्रातः 8:30 से विद्या कार्यक्रम में हेलो सखी। सूचना समाप्त हुई।

किशोर कुमार की आवाज में अनोखी अदा फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसके साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 8:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम संगीत सरिता।

0: गुलाम अली की आवाज में सागर सिद्दीकी की लिखी गजल भी आप सुन रहे थे।
1: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
2: तो मिलेगी ना,
1: पर कैसे?
2: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तन मन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तन मन डिटर्जेंट पाउडर।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।
4: देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। सोमवार दिनांक 10 अगस्त 2026 को प्रातः 8:30 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बिंदिया के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम हेलो सखी की रिकॉर्डिंग कल बुधवार दिनांक 5 अगस्त को सुबह 11 बजे से की जाएगी। श्रोता अपने कॉल लगाकर कार्यक्रम में सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। कॉल करने के लिए फ़ोन नंबर है 240-845, सागर का एसटीडी कोड है 07582। कार्यक्रम का प्रसारण दिन और समय सोमवार 10 अगस्त प्रातः 8:30 से बिंदिया कार्यक्रम में हेलो सखी। सूचना समाप्त हुई।
2: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
3: तो मिलेगी ना,
2: पर कैसे?
3: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
4: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
5: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
6: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
4: बात बन जाए।
6: 287 मेरी चाय।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में निदा फाजिली की ये गजल।

0: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई इसी गजल के साथ संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। एफएम पेंट पर यह आकाशवाणी सागर है, समाचार संध्या थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
3: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए।

0: करके एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्सटेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
2: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
1: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
3: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं? कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में

0: बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश भर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। यूपीआई ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
3: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर्ड करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के बोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देश भर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार।

0: बार फिर संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9 बजे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम मन चाहे गीत। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज हमने उन पत्रों को शामिल किया है जिनमें किशोर कुमार की आवाज़ के गीतों की फरमाइश थी।

नास्तिक फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत, माफ कीजिएगा, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। इस गीत की फरमाइश हमसे की है आप सभी ने। नेपाल पैलेस सागर से पत्र मिला है, सुनने वाले हैं तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा, शारदा, तामिनी और उनका परिवार। यहीं से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत, विरजेंद्र और वीरेंद्र सारथी, इनका पत्र मिला बेमेतरा से। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप और उनका परिवार। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। मनचाहे गीतों के कार्यक्रम में अगली गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुई आप सभी की। छत्रपति संभाजी नगर से पत्र मिला, सुनने वाले हैं राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और शीतल राजेश। पांठर कपड़ा से सुनना चाहते हैं अनिल बुरांडे, उषा, प्राची, अनुश्री और धनश्री बुरांडे। बल्लाशाह से ये पत्र प्राप्त हुआ, सुनने वाले हैं सूरज जी, प्राची और एकलव्य। सनावत मध्य प्रदेश से सुनना चाहते हैं दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता, मुस्कान, जितेंद्र, धर्मेंद्र और मालाकार परिवार। आप सभी सुनना चाहते हैं बंदिश फिल्म का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मंच है गीतों के कार्यक्रम में। आइए अब सुनते हैं तपस्या फिल्म का गीत। आवाज किशोर कुमार की है, गीत एमजी हसमत का है, संगीत रविंद्र चैन का। इस गीत की फरमाइश हमसे की है आप सभी ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से पत्र मिला दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं अभिजीत गफ्फानकर, सरिता प्रिंस और एकांश गफ्फानकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गफ्फानकर, प्रणीता और अर्जुन। आकर हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गफ्फानकर, सुमित कुमारी ध्वनि गफ्फानकर परी और उनका पूरा परिवार। आप सभी की फरमाइश पर तपस्या फिल्म का ये गाना।

मनचाहे गीतों के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सिलसिला फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीत जावेद अख्तर का है, संगीत शिव हरि का। इस गीत की फरमाइश पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई आप सभी की। लक्ष्मीपुरा सागर से सुनना चाहते हैं एनआर श्रीवात्री, केशर, हेमंती, योगेश, कैलाश, निशा, सुनीता।

विनीता अभय आभा अनिमेश आयुष और उनका परिवार वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमा खत्री मोहम्मद अल्तमश खत्री रमेश गौड़ और मोहम्मद शाबाद खत्री आप सभी की फरमाइश पर सिलसिला फिल्म का ये गाना

सिलसिला फिल्म का गीत भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। मनचाहे गीतों के कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं सौतन फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत सावन कुमार का है, संगीत उषा खन्ना का। इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है अनारकली बाजार चकराओं से सुनील पाठक, कमल दीपिका काव्या, सुच्चा सिंह पाठक और उनके परिवार ने। ये पत्र मिला है शाजापुर मध्य प्रदेश से। सुनना चाहते हैं मनमोहन राजावत, राज, मधु, राशि, चित्रंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, स्वीटी, रिया, रीत और ऋषभ राजावत। बड़वाह से सुनना चाहते हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना आदित्य शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। आप सभी की फरमाइश पर सौतन फिल्म का यह गाना।

सौतन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में। गीत सावन कुमार का था, संगीत उषा खन्ना का। इस गीत के साथ ही मनचाहे गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 9:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है भारतीय सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक और संगीतकार किशोर कुमार को।

तारीख यानी इतिहास में अपना वो स्थान बनाया कि उस ऊंचाई को किसी और कलाकार के लिए छू पाना लगभग नामुमकिन सा है। उनकी टाइमिंग, नाटकीयता, भूमिका की समझ और अदायगी, सब कुछ अद्भुत। सच तो ये है कि किशोरदा अपने आप में अभिनय और गायन की एक संपूर्ण संस्था।

मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जन्मे किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। उन दिनों आभास कुमार गांगुली के बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा का एक स्थापित नाम बन चुके थे। परिवार के सदस्य अब नियमित रूप से मुंबई आने जाने लगे थे। मुंबई में किशोरदा की नई पारी की शुरुआत हुई किशोर कुमार के नाम से। 1946 में आई फिल्म शिकारी में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। इसके दो बरस बाद सन 1948 में आई फिल्म जिद्दी में उन्हें पार्श्व गायन का मौका मिला।

सन 1951 में किशोर दा ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन में नायक की भूमिका निभाई। इसे निर्देशित किया था फणी मजूमदार ने। इसके बाद सन 1957 में किशोर दा

ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया। यह फिल्म ऋषि दा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। लगभग उसी दौर में फिल्म नौकरी में किशोर दा ने एक गीत गाया जिसे पहले हेमंत कुमार गाने वाले थे, लेकिन बाद में सलिल दा ने फिल्म नौकरी का वो गाना किशोर दा से गवाया।

किशोर दा की अभिनय यात्रा जारी थी। अभिनय के साथ साथ फिल्मों के लिए गायन भी जारी था। अपने आप पर फिल्माए गए गीत तो उन्होंने गाए ही, वहीं देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए भी गीत गाए। उस दौर में संगीतकार सचिन देव बर्मन ने उनसे कई फिल्मों में गीत गवाए। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटूश, 9 2 11 और पेइंग गेस्ट।

किशोरदा की प्रतिभा अनूठी थी। उनकी फिल्में आज हिंदी सिनेमा की अमूल्य निधि हैं। अपने गीतों में भी स्वरों से वो अभिनय किया करते थे।

0: जात अर एक चतुर नार बड़ी होशियार।
1: हास्य व्यंग पर किशोरदा की गहरी पकड़ थी, लेकिन गंभीर भूमिकाओं को भी किशोरदा ने बखूबी निभाया। सुनिए उन्हीं पर फिल्माया गया

0: वो।
1: किशोरदा खुद एक मंजे हुए शानदार अभिनेता थे, इसलिए जिन अभिनेताओं के लिए उन्होंने पार्श्व गायन किया उन अभिनेताओं के अंदाज को अपनी गायकी में बड़े असरदार तरीके से उतारा और दिलकश अंदाज में पेश किया। फिर चाहे वो धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन।

अपने करियर के शुरुआती दौर में किशोरदा ने गायन को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया। सन 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना। फिल्म आराधना से भारतीय सिनेमा के आकाश में उदित हुए पहले सुपरस्टार के रूप

फिल्म आराधना, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और गायक किशोर कुमार के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। इस फिल्म से किशोरदा के करियर में एक रचनात्मक बदलाव की भी शुरुआत हुई और बाद के दशकों में फिल्म संगीत की दुनिया में किशोरदा ने गायन की बुलंदियों को छुआ। किशोरदा ने कई दिलचस्प फिल्मों का भी निर्माण किया, इनमें से कुछ के नाम हैं, दूर गगन की छाव में, दूर कराही, दूर वादियों में कहीं, झुमरू, जिंदगी, चलती का नाम गाड़ी, शाबाश डैडी और बढ़ती का नाम दाढ़ी। आज किशोरदा की बनाई फिल्में अभिनय के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। किशोरदा की फिल्मों में जहां हास्य का अपना रंग था, वहीं उतनी ही गहरी संवेदना भी। उनकी फिल्म का ये गीत जितना अर्थपूर्ण है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी।

0: एक कलाकार के रूप में किशोरदा बेमिसाल थे, हर फन मौला थे। उनके कद्रदानों ने उन्हें नट सम्राट भी कहा। उनकी प्रतिभा के रचनात्मक आयाम एक से कहीं ज्यादा थे। उनके भीतर हास्य व्यंग्य का एक चितेरा, एक दार्शनिक, एक नटखट बच्चा, एक बेहद संवेदनशील इंसान और एक शानदार कलाकार समाहित था, जिसने अपने अभिनय और गीतों से हमें जाने कितनी बार हंसाया और गुदगुदाया।
1: हाँ, कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया।

0: गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।
2: 13 अक्टूबर सन 1987 को किशोर दा ने सांसों की सरगम पर अपना अंतिम गीत छेड़ा और फिर चले गए महायात्रा पर।

किशोर दा को अनेक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फिल्मी गैर फिल्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किशोर दा भारतीय संगीत के अनमोल रत्न थे और रत्न रहेंगे। एक अभिनेता, गायक, संगीतकार और फिल्मकार के रूप में किशोर दा ने भारतीय सिनेमा में जो अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए फिल्म जगत, फिल्मों के दर्शक और उनके गीतों के श्रोता सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

0: कोई लौटा दे।
1: श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत के महान कलाकार किशोर कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
2: आज के फनकार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सबसे गहरा प्यार वो होता है जब जिसे चाहो उसे खबर ही ना हो। सबसे सुनहरे प्यार का सफर वो होता है जब कभी जिसे चाहा उसे इजहार ही न किया जाए। जिसे चाहो उसे खबर ही ना हो कि कोई प्यार करता है उससे। आत्मा से उपजा सबसे पवित्र प्यार वही होता है जब नदी के दो किनारों की तरह एक साथ दूर दूर चलते रहो, निहारते रहो, लेकिन मिलन की तमन्ना ना हो और पता ही ना हो उसे कि कोई बड़ी शिद्दत से करता है प्यार।

0: पाक।
1: ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए, हर बार एनओसी के नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार इथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay.

0: मिल गया है। नदी लयबद्ध होकर गुनगुना रही है। आज चिनार के पेड़ पर बैठी चिड़िया महीन महीन आवाज में कुछ नई बोली बोल रही है। पहाड़ों पर जब गिरी बर्फ तो मन उठ चला बर्फीली वादियों में। वादी में गूंजा प्यार का तराना लहरों में जैसे जादुई संगीत है।
1: छलके तेरी आंखों से

की तरह और कोई प्यारा नहीं लगता। तुम्हारे होने से जिंदगी के तमाम लम्हे खुशगवार हो जाते हैं। तुम्हारे इंतजार में बगीचे में गिरी पत्तियों को हथेली पर लेकर हवा में उड़ाया है कई बार। खिलते फूलों को देखकर मुस्कुराकर अपनी हथेली पर लिखा है तुम्हारा नाम। गिरी हुई पत्तियों और फूलों को बटोरकर बनाया है गलीचा और उस पर बैठकर गिनी है घड़ियां तुम्हारे आने की।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। दिल ढूंढता है वो लाल फूल जिसे देखकर तुम्हारा चेहरा लाल हो जाए। दिल वो नगमा ढूंढता है जो तुम्हारे लिए गाया जा सके। दिल ढूंढता है वो नदी जिस पर प्यार की कश्ती तिरा दो। दिल ढूंढता है संसार का वो कोना जहां सिर्फ तुम्हारा साथ हो।

जहाँ तक है धरती आसमान का विस्तार, वहां तक प्यार का है आलम। प्यार का रंग बड़ा चटक होता है, मुश्किल है इस रंग को फीका करना। मन के झील में ठहर गया एक चेहरा, तब से पानी की सतह पर प्रेम का गुलाबी रंग झिलमिला रहा है लगातार।

0: जीवन की इस आपाधापी में बस थोड़ी मोहलत मिल जाए जरा से प्यार के लिए, थोड़ा सा साथ मिल जाए, थोड़ी सी हो गुफ्तगु, थोड़ी सी हो नोक झोंक, थोड़ी हो छेड़छाड़, थोड़ी सी खिलाए मुस्कान। दरकार है मुस्कान की, दरकार है प्यार की, दरकार है फुर्सत के लम्हात की।
1: चल

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
0: ढलती जाए रात।

गीतों के लिए प्यारी।

साथ में रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त

0: बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जाँच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार एथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 today. Following the passage of the bill, the lower house was also adjourned for the day. Earlier, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Taxation and Other Laws Amendment Bill.